0: मोड़ी साहब हो दया कृपा करे तां साई कार कुरैसी सौ सेवक सेवा करे कुसुन हुक्म मनाएसी हुक्म मना होवे प्रमाण तां कसने का महल पाईसी कसने पावे सो करे मन हो चुक्या सो फल पाईसी तां दरगे पैंदा जैसी तां दरगे पैंदा जैसी
1: गावे रघुनाथ बेदी बांत कर नहीं हर हर

0: अंतर पूजा पढ़े कते बा संजम तुरका भाई छोटे ने पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने कहनी वा।

तो सी सोने सी सूफिया ना कलाम इस नाल ही साडी आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दी पंजाबी सभा दी पहली सभा इत्थे समाप्त हुंदी है। साडे अगले ऐलान दा इंतजार करो।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुध रहा 9870 किलोहर्ट्ज से तेखा सवाई तव आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश से बुध सकंदा। प्रोग्राम शुरू थी चुका है, डिटेल्स कुछ न तरह प्रोग्राम में तव हमेशा भगत करम साहब जन के सदाबहार आवाज में कलाम बुधंदा। तेखा पोए एक नंढी तकरीर पेश कंदी, उनवान है भारत में आलमी नौजवान डी की अहमियत, पोए कुछ हुब वतनी गीत पेश कया वेंदा। यहां प्रोग्राम जी विचूड़ तव आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुध रहा। हिंसर अचो तो भगत कौराम साहब जन के मिठड़े आवाज में कलाम बुधूं।

तमाम भगत कोराम साहब जन मिश्र आवाज में कलाम बुध रहा यह आकाशवाणी की सिंधी सर्विस है। हिंसर पेश एक नंढी तकरीर उनवान है भारत में आलमी नौजवान डी की अहमियत। बैन अवी नौजवान जो डी हर साल 12 अगस्त से मल्हा वो ही डी नौजवान के काबिलियत समाज लाइ कयल संदन खिदमत ए संदन नवन ख्याल के सुणप लाय वक्फ है। यो आलमी मौको न फकत इन कामयाबियों के सारण लाय है पर इन पेश पवंदड़ ललकार के उजागर करण लाय पिण खास अहमियत रखे तो। बैन अवी नौजवान जो डी नौजवान के बा अख्तियार बनाने जो सड है। ये डी संदन हौसला अफजाई तो करे तो हु दुनिया के अहम मसलन ते पेंजो आवाज उथारिन रहनुमाई कन एक बेहतर मुस्कबिल के तामीर में पेंजो किरदार अदा कन। नौजवान जा ख्याल नवा इनकलाबी ए उम्मीदू भरिया हूं जन हिम्मत मौको ए गाइडेंस दिनों वे तो न फकत पेंजो फ्यूचर चेंज कर सकना है पर पूरे समाज के रुख के बदलाए सकना है। वर्ल्ड यूथ डे एक आलमी जशन है जो नौजवान के जज्बे उम्मीदन ए काबिलियत की सुणप है। यह डी सिर्फ खुशी जो मौको ना बल्कि समाजी तब्दीली की राह ते नौजवान के किरदार के तस्लीम करण जो सड है। भारत में जिते दुनिया की सब खां वड़ी नौजवान की आबादी मौजूद है इन डी की तमाम घनी अहमियत है। यह वक्त है जडे असी हिन्दुस्तानी नौजवान के तवानाई ख्वाबन ए मुल्क के फ्यूचर ते इनके असर ते गौर करियूं। वर्ल्ड यूथ डे की शुरूआत ईसाई बिरादरी पारा नौजवान ईमानवार गड करण लाय शुरू थी हुई पर अज ही डी आलमी ए मजहबन का मथाओं एक उत्सव बणजी चुको है। भारत में ही डी वसी मौजून ते ध्यान छिकारे तो नौजवान की वाखाण सकाफती वरसे की हिफाजत जुद्दत ए समाजी खिस्मत भारतीय नौजवान के आलमी सतह ते पेंजू कहानियों शेयर करण जो मौको तो दे। सागे वक्त माहौलियाती तब्दीली तैलीम ए अमन जड़न सब्जेक्ट्स से गौर ए वाचार लाय हिमथाए तो। हिन्दुस्तान की अद खां वधीक आबादी 25 वरिन खां घट उम्र के नौजवान की है जैं करे नौजवान सिर्फ अंगन अखरन में न पर कौमी तरक्की की असल सरमाया तैलीम कारोबार ज़रायत फन ए समाजी तहरीकों में अहम रोल अदा कर सकन था। वर्ल्ड यूथ डे नौजवान के अंदर के सलाहतन की सुणप लाय एक आईने जहां कम तो करे ही नौजवान के पेंजे

अंदर जाती ॾियण, पंहिंजा उसूल तय करण ऐं मुस्तक़बिल जे हिंदुस्तान लाइ पंहिंजो तस्वर बयान करण जी दावत थो ॾिए। हिंदुस्तानी नौजवाननि वटि अमीर सकाफ़ती वरसो मौजूद आहे जंहिंखे हू नवनि अंदाज़नि सां पेश करे रहिया आहिनि। छो जो हिकु नौजवान सिंधी ॿोलीअ में रुहानी लिखणियुनि खे तर्जुमो ॾिए थो या वरी रवायती कहाणियुनि खे जदीद स्टेज ते आणे थो, इहे सभु सकाफ़ती शौर ऐं नए तख़लीक़ जी अलामत आहिनि। वर्ल्ड यूथ डे इन तख़लीक़ी जज़्बे खे साराहे थो। भारत में गुज़िरियल घणनि सालनि दौरान नौजवाननि पारां मक़ामी ॿोलियुनि, लोक कहाणियुनि ऐं फ़नो लतीफ़ जे हिफ़ाज़त लाइ सदन मंझि ख़ासि दिलचस्पी ॾिसण में आई आहे, जंहिं न सिर्फ़ इलाक़ाई फ़ख्र वधायो आहे पर नसलुनि विच में राब्ते जा नवां रस्ता पिण खोलिया आहिनि। नौजवाननि जे सलाहतनि जे बावजूद हू केतिरनि ई ललकारनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। से आहिनि बेरोज़गारी, ज़हनी दबाउ, तइलीमी फ़र्क़ ऐं समाजी ॾाढायूं। वर्ल्ड यूथ डे इन्हनि हक़ीक़तनि खे पधरो थो करे ऐं हमदर्दी, पॉलिसी ते बहस ऐं असलाहत जे ॻोल्हा लाइ मौक़ो थो पैदा करे। हीउ ॾींहुं हुकूमत, तइलीमी इदारनि ऐं समाज खे इन ॻाल्हि ते सोचण लाइ मजबूर थो करे त नौजवाननि लाइ न फ़क़त वसीलनि खे बहितर बणायो वञे पर ज़हनी सिहत, महारतनि जी तरबियत ऐं शराकती तरबियत ते पिण ध्यानु ॾिनो वञे। क्लाइमेट चेंज जी ॻाल्हि कई वञे त नौजवान माहौल में ईंदड़ तब्दीली खे मुंहुं ॾियण जूं कार्रवाइयूं हलाए रहिया आहिनि, नयूं कंपनी शुरू करे रहिया आहिनि ऐं समाजी अदम मुसावात जे ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं करे रहिया आहिनि। वर्ल्ड यूथ डे नौजवाननि जे कोशिशुनि खे हिमथाए थो ऐं नौजवाननि जे आवाज़ खे बुलंद थो बणाए। सोशल मीडिया नौजवाननि जे कार्रवाइयुनि लाइ हिकु नओं पहलू आहे। इन प्लेटफॉर्म ते हू शौर पैदा करे, मदद हासिल करे ऐं इंसाफ़ लाइ आवाज़ उथारे था सघनि। हिन नए दौर जे नौजवाननि जे जदोजहद खे वर्ल्ड यूथ डे जे रोशनी में ॾिसणु घुर्जे। जेकॾहिं भारत जे मुस्तक़बिल जी ॻाल्हि कई वञे त वर्ल्ड यूथ डे हिकु ॾींहं जो जशन न बल्कि नौजवाननि जे सपननि खे हक़ीक़त में तब्दील करण जो मौक़ो आहे। इहे तइलीमी इदारनि, हुकूमतनि, एनजीओस ऐं ख़ानदाननि खे गॾे अहिड़े माहौल ठाहिण जी नींड था ॾियनि जिते नौजवान अॻिते वधंदे तरक़ी करे सघनि। भारत जे फ्यूचर जी तस्वीर आहे त नौजवान अहिड़ा हुजनि जेके रुहानी तौर ते मज़बूत, इल्मी तौर ते ॻोल्हा कंदड़, समाजी तौर ज़िमेवार ऐं तख़लीक़ी तौर बहादुर हुजनि। इहो सफ़र वर्ल्ड यूथ डे जहिड़नि ॾींहनि सां शुरू थो थिए। आख़िर में चइबो त भारत जहिड़ी ज़मीन ते जिते ॾंद कथाऊं जिदत सां मिली वञनि, जिते सदियूं पुराणियूं रवायतियूं जदीद टेक्नोलॉजी सां जुड़ी वञनि, उते भारतीय नौजवान हिकु ज़बरदस्त मोड़ ते बीठा आहिनि। वर्ल्ड यूथ डे इन मोड़ खे सुञाणप थो मैसर कराए। अॼु हर नौजवान खे अॻिते वधी ॻाल्हाइणु घुर्जे ऐं अमल करणु घुर्जे। इहो सभु कुझु कंहिं ॿिए जे लाइ न पर पंहिंजे लाइ, पंहिंजे समाज लाइ ऐं पंहिंजे क़ौम लाइ करणु घुर्जे। भारत जी दिलि नौजवाननि जे धड़कनि सां धड़कंदड़ आहे ऐं जॾहिं नौजवान सुजाग थी उभरनि था त क़ौम बुलंद थींदी आहे। तव्हां भारत में आलमी नौजवान ॾींहं जी अहमियत हीअ नंढी तकरीब ॿुधी रहिया। हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर पेश आहिनि कुझु देशभक्ति गीत।

यह आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है। हिंदर संजय प्रोग्राम जो वक्त पूरा सी रहा है। वरी अवन सा गडजानी थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे तेसी तीन मोकल सदाई घट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रूपये जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पेरू में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार पर्यटक प्रसिद्ध नाजका लाइंस को देखने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। ये प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें पेरू के मूल निवासियों ने सदियों पहले रेगिस्तान में बनाया था। ये विमान पेरू की एयरलाइन एरोडियाना द्वारा संचालित किया जा रहा था।

और इसने पास के शहर इका से उड़ान भरी थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगांस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10.15 हुए हैं और अब वक्त है कार्यक्रम संगीतिका का। संगीतिका कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अंजलि भारद्वाज से भजन। इसमें आप सुनेंगे मीराबाई की रचना। संगत कलाकार हैं बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, तबले पर संगत कर रहे हैं राशिद नियाजी और सितार पर खालिद मुस्तफा। आइए सुनते हैं मीराबाई की ये रचना।

0: अभी आप संगीतिका कार्यक्रम में अंजलि भारद्वाज से भजन सुन रहे थे, जिसमें आपने सुनी मीराबाई की रचना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही
4: उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
5: आई नो ना,
4: आज लाइक करता है
6: तो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

केदारनाथ फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अमित त्रिवेदी की आवाज में। वाकई क्या ही सुंदर प्रस्तुति। शिव का नाम लेने से ही मन में एक अलग ही शांति, एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। फिलहाल है सावन का महीना और भाई शिव जी के गीत ना हो तो फिर क्या ही बात है। जी हाँ, शिव की स्तुति सुनते हैं।

Sa ni da pa ni da pa ma da pa ma da.

दोस्तों भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाले हैं, सरल और दयालु देव हैं। उनकी भक्ति में डूबे इन गीतों का आप आनंद ले रहे हैं। और भाई आजकल तो सावन का महीना है और कांवड़ियों का तातावाना लगा हुआ है, वो जल लेने के लिए हरिद्वार और गंगा जल लेकर भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। और नज़ारा कुछ अलग ही है, अलग ही दृश्य लग रहा है। जी हाँ, और आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और भाई संगीत जब भक्ति से जुड़ जाता है तो वह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि साधना बन जाता है। जी हाँ,

देवों के देव महादेव, जिनके मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में माँ गंगा और कंठ में विश्व और हृदय में समस्त संसार के लिए असीम करुणा है, ऐसे भोलेनाथ को सादर प्रणाम करते हैं।

वाकई दोस्तों, जब हर हर महादेव का उद्घोष होता है तो मन उत्साह से भर उठता है।

0: वाकई बहुत ही जोशीला ये गीत। और इसी के साथ श्रोताओं, भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। सुख शांति और समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे एक नई संगीतमय प्रस्तुति के साथ। और इसी के साथ गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और 8 बजने को है और अब वक्त है समाचार प्रभात का, तो आइए सुनते हैं।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ 1 माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमरीका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
4: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद

0: सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1705 मामले दर्ज किए और 1710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है।

0: राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले दो दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जम्प में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जोयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जम्प में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण, 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल। रिकॉर्ड शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम, नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है कांग्रेस जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए, ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है। पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक

0: पॉट में सेंधमारी कर रही हैं। डब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to 4th position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. More from our correspondent.
3: Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations and more than 125 spiritual organizations will also join the program virtually. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. The activities will include sports events, walkathons, meditation sessions, cultural programs, awareness campaigns, Nukkad Natak's, discussion forums, art competitions and community engagement programs. The initiative aims to inspire youth to stay away from substance abuse and encourage them to become ambassadors of positive social change in their communities. With Soumya Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said the potential of youth becomes a driving force only when they find the right opportunities and the right direction to dream big with confidence to realize their goal. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Center, Vivek Smarak, in Mysuru, Karnataka yesterday. The Prime Minister highlighted that today the youth in India are leading the world's third largest startup ecosystem, Atmanirbhar Bharat Mission and Make in India initiative.
4: Aaj koi bhi sector ho, Bharat ka yuva apna dam kham dikha raha hai. Aaj chote se chote vyavsay mein laga yuva Bharat ki digital economy ko aage badha raha hai. Wo mudra loan ke zariye nayi shuruaat kar raha hai. वो देश की स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा है. आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, इसकी सफलता के पीछे भारत के युवाओं की ही ताकत है.
2: Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has reviewed the preparedness for the national

0: been missing. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahi, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Rajasthan, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. The IMD forecast heavy rainfall conditions over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh during the next 2 days. Meanwhile, the weather agency has also advised fishermen not to venture into parts of the North Arabian Sea till tomorrow and few parts of the East Central Arabian Sea from 3rd to 6th of this month. The government has approved the advance release of 2,117.85 crore rupees from the central share of the State Disaster Response Fund or SDRF to support the states affected by floods during the ongoing southwest monsoon. Out of the 7 affected states, Himachal Pradesh, Odisha and Nagaland had earlier received the first installment of SDRF for the financial year 2026-27. Other states include Arunachal Pradesh, Assam, Gujarat and Maharashtra. The Home Ministry has underlined that this approval aims to strengthen the ongoing relief and response measures of the flood-affected states. United States President Donald Trump has threatened to intensify military action against Iran, warning that American strikes will continue until Tehran halts attacks on shipping and returns to negotiations. The U.S. State Department has issued a fresh security advisory urging Americans in the West Asia to consider leaving the region or be prepared to depart if the conflict worsens. Meanwhile, Iran has warned that it is ready to strike key Israeli infrastructure and American energy facilities across the West Asia if it comes under attack. Iranian state media quoted senior Iranian security officials saying Tehran has prepared plans to target critical installations in Israel and U.S. energy assets across the region if any military action is launched against the country. The official also said Iran's armed forces had demonstrated their capability during the recent 40-day conflict and subsequent military engagements. India climbed to fourth place in the Commonwealth Games 2026 medal standings in Glasgow following winning 16 medals across four disciplines on a memorable day 10th. This third brought India's tally to 39 medals comprising 13 gold, 17 silver and 9 bronze. The boxing team led the charge with 10 medals. India's athletes added 2 medals each in the men's para shot put and men's triple jump, while 1 each in judo and athletics. A report.
1: Indian boxers delivered a historic performance at the Commonwealth Games, securing unprecedented 7 gold medals, highest by any nation in single edition of the Games, along with 3 silver medals. This marks India's best ever boxing campaign at the Commonwealth Games. Boxers Priti Pawar, Jasmine Lamboria, Sakshi Chaudhary, Priya Ghangas, Arundhati Chaudhary, Sachin Sivaj and Ankush Pankhal clinched the gold medals, while Jadumani Singh, Lavlina Borgohain and Narinder Berwal won silver medals in their respective weight categories. India also enjoyed success in para-athletics, producing a memorable 1-2 finish in the men's 557 shot put event. Soman Rana claimed the gold medal, while Shubham Joyal secured silver. The athletics contingent added 3 more medals. In the men's triple jump, Praveen Chitravel won silver and Selva Prabhu Tirumaran took bronze, while long distance runner Gulveer Singh earned his second medal of the games by clinching bronze in the men's 5000 meter final. Judoka Unnati Sharma also added to the glory by bagging bronze medal in the women's 63 kg event. Rupesh Rathor for Akashwani News.
0: Ahmedabad will officially receive the Commonwealth Games flag and the host button during the closing ceremony of the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated all the athletes for their outstanding performance in the Commonwealth Games. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
2: Thank you, Shagun. Modi credits youth with driving India's all-round progress, headlines Hindustan Times. The Pioneer quotes the Prime Minister saying, "Youth must power India's rise," also called on to support nation-building to service, education and discipline. The Times of India reports, monsoon hope as World Meteorological Organization sees an El Nino counter, adding the risk of overall monsoon rainfall being below normal continues to loom over India due to a strengthening El Nino. Manhunt in valley as terror attack claims too. TRP link being probed leads the Indian Express. Railway line through Key Tiger Corridor gets in-principle approval with a rider informs the Indian Express. And finally, the Financial Express writes, Indian holidays taking the trail less traveled, trekking. hiking fast turning into mainstream travel. What was once a niche pursuit for seasoned mountaineers is fast becoming a mainstream travel segment. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Kerala. Weather department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across six districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to fourth position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शमीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए मुल्क की नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। तेलंगाना पुलिस ने बच्चा मजदूरी और ट्रैफिकिंग के खात्मे की गरज से शुरू की गई एक महीने तक जारी मुहिम के बाद 6,000 से ज्यादा बच्चों को बचा लिया है। गुजरात, उड़ीसा और केरलम में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। महकमा मौसमियात ने आज गुजरात के 6 जिलों में तेज और इंतहाई तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शिद्दत इख्तियार करने की धमकी दी है। ईरान ने अहम अमरीकी और इसराइली तवानाई के बुनियादी ढांचों पर जवाबी हमले से खबरदार किया है। और ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत चौथे मकाम पर आ गया है। एक ही दिन में मुक्केबाजों ने रिकॉर्ड सोने के 7 तमगे जीते हैं, जिससे तमगों की तादाद बढ़कर 39 हो गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का आगाज करेंगे। इसके साथ ही मनुष्यात के इस्तेमाल के खिलाफ 100 हफ्तों पर मुश्तमिल मुल्क गीर जन भागीदारी मुहिम शुरू हो जाएगी। इस प्रोग्राम में मुल्क भर के 10,000 से ज्यादा मकामात से नौजवान हिस्सा लेंगे। इसके अलावा माई भारत के रजाकार, नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकार, नौजवानों के क्लब, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, गैर सरकारी तंजीमें, सनती अंजुमनों के नौजवानों के शोबे और 125 से ज्यादा शराकत दार रूहानी तंजीमें भी वर्चुअल तौर पर इस प्रोग्राम में शामिल होंगी। इस मुहिम के तहत मुल्क भर में हर इतवार को मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा, ताकि अवाम में मनुष्यात के नुकसानात से मुतालिक आगही पैदा की जा सके और मनुष्यात से पाक मुआशरा बनाने के लिए अवामी शिरकत को फरोग दिया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौजवानों की सलाहियत सिर्फ इसी सूरत में एक मुतहर्रिक कुव्वत बनती है जब उन्हें सही मौके और सही सिमत मिल जाए, ताकि वो पूरे एतमाद के साथ बड़े ख्वाब देख सकें और उनकी तामीर तलाश कर सकें। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक के इफ्तिताह के बाद उन्होंने खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि आज भारत में नौजवान दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप निजाम आत्मनिर्भर भारत मिशन और मेक इन इंडिया स्कीम को आगे लेकर चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के नौजवानों की सलाहियतों ने भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन मार्केट में तब्दील कर दिया है और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, नेज इख्तिरात में और प्राइवेट सेक्टर खलाई मिशन में नई नई कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने नौजवानों को अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने और दुनिया भर में तमगे जीतने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है।
4: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम

0: काम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट नीट पीजी 2026 की तैयारियों का जायजा लिया, ताकि इम्तिहानात को बिला रुकावट पूरी तरह महफूज, शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी सूरत में मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाया जा सके। यह इम्तिहान इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने मेडिकल साइंसेज में इम्तिहानात के कौमी बोर्ड, टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्टनरों और इम्तिहान मुनक़िद किए जाने में शामिल दीगर तरफैन के साथ तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान से मुतालिक लॉजिस्टिक्स, उम्मीदवारों के लिए सहूलत के इकदाम, सिक्योरिटी के निजाम और नीट पीजी 2026 के लिए मुतारिफ कराई गई टेक्नोलॉजी पर मबनी मुदाखलतों के मुतालिक वजीर मौसूफ को तफसीलात बताई गयी। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि एक मुनसिफाना, शफाफ और उम्मीदवार दोस्त इम्तिहान मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाने की गरज से तमाम कोशिशें की जानी चाहिए। साथ ही सालमियत और सलामती के आला तरीन मेयार को भी बरकरार रखना चाहिए। वजीर मौसूफ ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि ये भी कहा कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और मेडिकल साइंसेज में इम्तिहानात के कौमी बोर्ड और वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की जानिब से जारी बाजाबता ऐलानात पर ही एतबार करें। उन्होंने ये भी कहा कि फाइनल सवालनामा एक इंतहाई महफूज, इंक्रिप्टेड और पाबंदी वक्त पर मबनी एक अमल के जरिए इम्तिहान शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही मुंतखब किया जाएगा और इसके साथ कई सतहों पर मबनी तकनीकी और कार्रवाई जाती तहफ़ुज़ात का ख्याल रखा जाएगा, ताकि इम्तिहान के शुरू होने के तयशुदा वक्त तक उसकी राजदारी को यकीनी बनाया जा सके। जनाब नड्डा ने तमाम मुतालिका एजेंसियों को करीबी तालमेल बरकरार रखने की हिदायत दी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर उम्मीदवार बिला रुकावट, महफूज और दुश्वारियों से कतई पाक इम्तिहान के अमल का तजुर्बा करे। दिल्ली से प्रिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन के आंगन में मुनक़िद एक तकरीब के मौके पर पीबीजी सॉलिडरेथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मिजोरम के गवर्नर जनरल वीके सिंह, जो इस मुहिम के सरपरस्त हैं, भी इस मौके पर मौजूद थे। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि सॉलिडरेथन शहरियों और मुसल्ला अफवाज के दरमियान रिश्तों को मुस्तहकम करने का एक मुनफरिद प्लेटफार्म मुहैया करता है, जिसे फौजियों के लिए दौड़, फौजियों के साथ दौड़ के तसव्वुर से रहनुमाई मिली है। हकीकी हीरो भारत के मुसल्लह अफवाज को तआवुन के मौजू पर मरकूज यह तकरीब फौजियों के इखलास, हिम्मत और कुर्बानी के तई खराज अकीदत तो है ही, साथ ही ये शहरियों को उनके साथ सरगर्म शराकत दारी के जरिए यकजहती का मौका भी फराहम करती है। तेलंगाना पुलिस ने रियासत भर में बच्चा मजदूरी और बच्चों की ट्रैफिकिंग के खात्मे के मकसद से शुरू किए गए एक महीने तक चलने वाले ऑपरेशन मुस्कान 12 के तहत 6,307 बच्चों को बचा लिया है। ये कार्रवाई पिछले माह की पहली तारीख से 31 तारीख तक जारी रही। इस कार्रवाई की क्यादत ख्वातीन के सेफ्टी विंग ने की, जिसके लिए उसने ख्वातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे, लेबर महकमे, सेहत के महकमे, बच्चों की बहबूद की कमेटियों, बच्चों के तहफ्फुज़ के जिला यूनिटों और रजाकार तंजीमों के साथ मिलकर काम किया। 124 सब डिवीजन टीमों के तकरीबन 620 पुलिस एहलकारों ने इसमें हिस्सा लिया। कवानीन और तरीकाकार के मुतालिक तरबियत हासिल करने के बाद टीमों ने उन मकामात पर छापे मारे जहां बच्चा मजदूरी आम है। इसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, मंदिर, ईंट के भट्टे, मैकेनिकों की दुकानें, तामीरी मकामात और चाय खाने शामिल हैं। बचाए गए बच्चों में से 5,737 को उनके अहल खाना के पास भेज दिया गया, जबकि 570 को बच्चों की देखभाल के मरकजों में भेजा गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। गुजरात में महकमा मौसमियात ने आज 6 जिलों के तमाम इलाकों में बहुत तेज और इंतहाई तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट और अहमदाबाद शामिल हैं। बारिश का यह सिलसिला अब सौराष्ट्र की जानिब मुंतकिल हो गया है, जिससे कई इलाकों में बड़े पैमाने

0: पर पानी भर गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे की एक रिपोर्ट।
1: गुजरात में बहुत तेज बारिश का सिलसिला जारी है और अब मॉनसून कल से सौराष्ट्र की जानिब मुंतकिल हो गया है, जिससे कई जिलों में बारिश का पानी भर गया है। मोरवी में सबसे ज्यादा 8.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे नशेब इलाकों में बहुत ज्यादा पानी भर गया है और मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। इंतहाई तेज बारिश की वजह से 20 आबी जखायर अपनी सतह से ऊपर बह रहे हैं। तेज हवाओं के पेश नजर माहीगीरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अगले 2 दिन तक समंदर में न जाएं और पूरे गुजरात की तमाम बड़ी बंदरगाहों पर मकामी एहतियाती सिग्नल नंबर 3 जारी किया गया है। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी के आसार जाहिर हुए हैं, तहां हुक्काम बदस्तूर हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि दरियाओं में पानी की बुलंद सतह अब भी महानदी के नशेबी इलाकों के लिए खतरा बनी हुई है। रियासती हुकूमत नशेबी अजला कटक, पूरी, जगतपुत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खोरदा के हालात पर मुसलसल नजर रखे हुए है, जहां सैलाब का पानी अभी मुकम्मल तौर पर नहीं उतरा है। केरला में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसके बाइस मामूल की जिंदगी मुतासिर है और कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसमियात के महकमे ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में आइंदा 7 दिनों के दौरान वक्फे वक्फे और गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इन दिनों जारी जनूब मगरबी मानसून के दौरान सैलाब की सूरत हाल से मुतासर रियासतों को तआवुन देने की गरज से कुदरती आफत की सूरत में बंदोबस्त के रियासती फंड SDRF के मरकज के हिस्से से 2,117.85 करोड़ रूपये पेशगी जारी किए जाने की मंजूरी दी है। 7 मुतासर रियासतों में से हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और नागालैंड को माली बरस 2026-27 के लिए SDRF की पहली किस्त पहले ही मौसूल हो चुकी है। दीगर रियासतों में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मजीद तेज करने की धमकी दी है और कहा है कि जब तक ईरान बहरी जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और मुदाकरात की मेज पर वापस नहीं आता, अमरीकी हमले जारी रहेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने एक ताजा सिक्योरिटी जारी करते हुए मगरबी एशिया में मौजूद अमरीकी शहरियों से कहा है कि अगर कशीदगी में इजाफा हो तो खित्ते को छोड़ने पर गौर करें या फौरी रवानगी के लिए तैयार रहें। बढ़ती हुई कशीदगी के असरात अब गजा और लिबनान तक भी पहुंच गए हैं, जहां हमास की जानिब से अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी के फ्रेमवर्क के तहत हथियार डालने की आमादगी जाहिर करने के बावजूद इसराइल ने नए हमले किए हैं। दूसरी जानिब ईरान ने खबरदार किया है कि अगर उस पर हमला किया गया तो वो इसराइल के अहम बुनियादी ढांचे और मगरबी एशिया में मौजूद अमरीकी तवानाई तंजीबात को निशाना बनाने के लिए तैयार है। भारत ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में तमगों की फहरिस्त में 4थे मकाम पर पहुंच गया है। उसने सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगों समेत कुल 39 तमगे जीते हैं। भारत के लिए ताजा तरीन तमगा गुलवीर सिंह ने हासिल किया है। उन्होंने 5000 मीटर की दौड़ में कांसे का तमगा जीता। मुक्केबाजी में भारत ने सोने के 7 और चांदी के 3 तमगे जीतकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुक्केबाजों में प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघल ने सोने के तमगे जीते। जादूमणि सिंह, लवलीना बुरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल ने अपने मुतालिका जुमरों में चांदी के तमगे हासिल किए। भारत ने पैरा एथलेटिक्स में तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। मर्दों के शॉटपुट F57 मुकाबले में सुमन राणा ने सोने का तमगा जीता, जबकि शुभम जोयल ने चांदी का तमगा हासिल किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन में ख्वातीन के सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में कल सुबह भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला वियतनाम की आलमी नंबर 21 खिलाड़ी थुई लिंग से होगा। तन्वी सेमीफाइनल में चीनी ताइपी की खिलाड़ी हुआंग यू हुस्न को 21-17, 21-11 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया शमीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने आंध्र प्रदेश में वजीर आजम के हाथों मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के इफ्तिताह की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब लिखता है, वजीर आजम मोदी ने आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम आज नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का आगाज करेंगे। पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को सदर जमहूरिया के जरिए मंजूरी दिए जाने की खबर को अखबारात ने नुमाया तौर पर शाया किया है। इसके अलावा अखबारात ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी की खबर को भी अहमियत दी।

0: ہے۔ اخبار انقلاب کی ایک اور اہم سرخی ہے، مشرق وسطی کے حالات سنگین، امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری انخلا کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی۔ دلی، اتر پردیش اور بہار کے لیے آج موسلادھار بارش کی محکمہ موسمیات کی وارننگ کی خبر بھی بیشتر اخباروں میں نمایاں ہے۔
1: اور اب خبرنامے کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے لیے ملک گیر نشہ مکت یوا مہم کا آغاز کریں گے۔ مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے نیٹ پی جی 2026 امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے امیدواروں سے زور دے کر کہا کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ تلنگانہ پولیس نے بچہ مزدوری اور ٹریفکنگ کے خاتمے کی غرض سے شروع کی گئی ایک مہینے تک جاری مہم کے بعد 6000 سے زیادہ بچوں کو بچا لیا ہے۔ گجرات، اڑیسہ اور کیرلم میں سیلاب کی صورتحال اب بھی تشویشناک ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج گجرات کے 6 ضلعوں میں تیز اور انتہائی تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ आकाशवाणी दिल्ली है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, साहित्य रचने का तात्पर्य समाज को दिशा और दशा देना ही नहीं होता, दूसरों के लिए खुद एक उदाहरण बनना भी होता है। एक लेखक बहुत बड़ा हो जाने के बाद अपनी आत्मकथा कहने की ख्वाहिश रखता है। वो बहुत विरले होते हैं जो दूसरों के जीवन को अपनी रचनात्मक कथा बनाते हैं। विष्णु प्रभाकर एक ऐसे ही रचनाकार हैं जिनका समूचा जीवन दूसरों के लिए समर्पित रहा। यहाँ तक कि अपने शरीर का हर एक अंग तक उन्होंने दूसरों को समर्पित कर दिया। साहित्यिकी के इस अंक में आइए सुनते हैं विष्णु प्रभाकर अपना जीवन पराई कहानी, विषय पर उनके सुपुत्र श्री अतुल प्रभाकर से भेंट। आपसे भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और प्राध्यापक डॉक्टर आलोक रंजन पांडे।
3: कोई भी लेखक इतना ज्यादा, वह भी लगातार, वह भी स्तरीय कैसे लिख सकता है? यदि यह जानना है तो हमें विष्णु प्रभाकर जी की रचना वृत्ति और कृति को समझना पड़ेगा। विष्णु प्रभाकर हिंदी के यशस्वी साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे मानो सिर से पैर तक साहित्यकार हैं जिनका ओढ़ना बिछौना साहित्य ही था। सच मानिए तो उनके जीवन का एक एक सांस साहित्य के रंग में रंगा हुआ है। एक एक क्षण सृजन के आलोक से आलोकित है। प्रेमचंद के बाद जिन साहित्यकारों ने पूर्णकालिक लेखक होने की चुनौती को स्वीकार किया और लेखन से मिलने वाले अल्प पारिश्रमिक या आकाशवृत्ति के सहारे अपना जीवन गुजारने का संकल्प लिया और उसे पूरा करके भी दिखाया, ऐसे ही साहित्यकार विष्णु प्रभाकर हैं। हालांकि साहित्य को ओढ़ना बिछौना बनाने वाले इसी विष्णु प्रभाकर ने किस तरह हंसते हंसते रोजमर्रा के जीवन में आने वाले अभाव और तमाम मुश्किलों को झेला, बड़ी से बड़ी समस्याओं को लगातार दो चार होते रहे, लेकिन फिर भी कबीर की हमन मस्ताना वाली मस्ती के साथ जीवन को गुजारा। इस जीवन गुजारने में उनके परिवार का क्या हुआ या उनकी लेखनी में परिवार का क्या योगदान था, जैसी बहुत सारी अनछुए पहलुओं को जानने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, एक सफल साहित्यकार को समझने के लिए हमारे साथ हैं आज यशस्वी साहित्यकार के सुपुत्र अतुल प्रभाकर जी। आपका स्वागत है।
4: जी नमस्कार।
3: विष्णु प्रभाकर जी लिखते हैं कि मेरे उस ओर आग है, मेरे इस ओर आग है, मेरे भीतर आग है, मेरे बाहर आग है। इस आग का अर्थ जानते हो? क्या तपन, क्या दहन, क्या ज्योति, क्या जलन, क्या जठाग्नि, क्या कामाग्नि? नहीं नहीं, यह अर्थ है कोश का, कोशकारों के जीवन के पाठशाला के नहीं। जैसे जीवन वैसे ही आग का अर्थ है संघर्ष। विष्णु प्रभाकर जी के संघर्ष को अच्छी तरह देखा है आपने, तो आप मुझे ये बताइए कि उनका जीवन कैसे संघर्षमय रहा?
4: जब वो छोटे थे करीब 12 साल के, उससे पहले उनका परिवार बहुत संपन्न परिवार था, व्यापार था परिवार में।
3: जी जी।
4: लेकिन 1912 में प्लेग और दूसरी महामारी जो हुई
3: जी,
4: तो उसमें जो परिवार के कमाने वाले सदस्य थे
3: जी,
4: उनकी मृत्यु हो गई
3: जी,
4: और उससे परिवार का जो व्यापार था वो भी बंद हो गया, खत्म हो गया। तो एक तरह से

0: परिवार की आमदनी जो भी थी वो बिल्कुल बंद हो गई। तो अब उन लोगों की समस्या ये थी कि जीवन यापन करें, खान पीन करें, बच्चों को पढ़ाएं कैसे। तो उनकी माता जी ने ये निश्चय किया कि इनको मैं भेज देती हूँ अपने भाई के पास
1: जी
0: और वहां रह के ये पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे, तो उसके बाद फिर अपना जीवन आगे बनाएंगे। तो
1: जी
0: वो एक ऐसा समय बना कि अपने घर से, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से दूर जाके रहना, क्योंकि
1: जी
0: उनको अपने माँ से बहुत प्यार था और माँ ही उनके परिवार में पहली पढ़ी लिखी महिला थी।
1: जी
0: तो उनके साथ रह के जो उन्होंने देखा, दहेज में एक बक्सा लाई थी जिसमें किताबें ही थी, तो उस समय से उनको किताबों से प्यार
1: मतलब
0: था।
1: किताबों का संस्कार उनको परिवार
0: हाँ,
1: से पहले ही मिल
0: किताबों का
1: गया
0: संस्कार तब वहां से मिला।
1: था। जी जी जी
0: और उससे पहले जब पिता की और दादा की जो दुकान थी
1: जी
0: उसमें वो जाते थे, तो कभी कभी वहां पुड़िया बांधनी होती थी, तो पुड़िया जिन कागजों में बांधते थे तो
1: जी
0: वो पत्रिकाओं की कागज होते थे, उसमें बहुत कुछ लिखा होता था, वो पढ़ लेते थे। तो उससे शुरू से ही उनके मन में एक साहित्य के प्रति और इस तरह के लेखन के प्रति उनके मन में एक जागरूकता बन गई थी।
1: उनकी प्रसिद्ध कविता है निकटता। निकटता में वे लिखते हैं कि त्रास देता है जो वह हंसता है, त्रास देता है जो वह हंसता है, त्रसित है वह रोता है। कितनी निकटता
0: निकटता
1: है रोने और हंसने में। और खुद विष्णु प्रभाकर जी लिखते हैं कि मेरे साहित्य का जन्म मेरे जीवन की त्रासदियों से हुआ है। तो इस कथन के आलोक में आप उनकी संपूर्ण रचना संसार को कैसे देखते हैं, जो कि आपसे अच्छा कोई और नहीं बता सकता।
0: तो वो जो शुरू से बचपन से जो उनके मन में रहा
1: जी
0: और परिवार से दूर जाके रहना पड़ा,
1: जी
0: तो जो मन में वेदना रही और वहां जो संघर्ष करना पड़ा, ठीक है, मामा उनके जो थे उनको प्यार करते थे, लेकिन बाकी परिवार में थोड़ी समस्याएं रहती थी, तो वो सब संघर्ष करना पड़ा। 14-15 साल की उम्र में ही उनको नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि आमदनी का कोई और जरिया नहीं था,
1: जी
0: और उसी संघर्ष से उन्होंने नौकरी करते हुए पढ़ाई करी। वो चाहते थे कि गांधी जी के साथ जाके स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें, लेकिन सरकारी नौकरी करते थे, सरकारी
1: गांधी जी
0: नौकरी
1: का
0: करते थे।
1: प्रभाव बहुत पड़ा था विष्णु प्रभाकर जी पे। और जहां तक मैंने सुना है, पढ़ा है कि उन्होंने खादी भी गांधी जी के कारण ही पहनना शुरू किया। कितनी सच्चाई है इसमें।
0: प्रभाव तो गांधी जी का था, लेकिन खादी पहनना जो शुरू किया वो उसका एक और कारण
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: जब वो छोटे थे तो गांव में कोई मीटिंग हो रही थी, तो उसमें एक 5 साल का बच्चा था, वो मंच पे आया
1: जी
0: और मंच पे आके उसने कहा कि मैं 5 साल का बच्चा हूं,
1: जी
0: मैं खादी पहनता हूं,
1: जी
0: आप भी खादी पहनो। उसने दो वाक्य बोले और वो मंच से उतर गया। उस समय विष्णु प्रभाकर जी और अपने चाचा के साथ वो वहां उस सम्मेलन में उपस्थित थे। तो जब उनके चाचा ने कहा कि देख, एक यह एक तू है,
1: जी
0: ये खादी पहनता है और तू मलबल पहनता है,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: उसी समय उन्होंने प्रण कर लिया कि नहीं, मैं मलबल छोड़ के मैं खादी पहनूंगा, और जाके अपने पिता से कहा कि
1: जी
0: मुझे खादी दिलवाओ। और पिता ने उनको एक थप्पड़ मारा कि ये मलबल पहनने वाला खादी पहनेगा,
1: जी
0: तूने उसका कहाँ खादी पहनना। लेकिन फिर भी उनके चाचा ने कहा कि नहीं, जब ये बच्चा कह रहा है तो
1: जी
0: उसको खादी दिलवाओ।
1: जी जी
0: खादी उस समय जो पहननी शुरू करी, उसके बाद से वो पूरे जीवन खादी चलती रही, और फिर तो गांधी जी का जुड़ाव और सबका जुड़ाव, फिर वो खादी पूरी तरह से अंतिम समय तक खादी चलती रही।
1: और विष्णु प्रभाकर जी ने सभी विधाओं पे लिखा है। 1974 में उनकी प्रमुख रचना आवारा मसीहा का प्रकाशन हुआ था। 1959 में उन्होंने लिखने की शुरुआत की। 1973, 14 वर्ष का समय उन्होंने, जैसे राम जी ने 14 साल का वनवास किया था, लगभग वैसा ही वनवास, 14 साल का वनवास इस पुस्तक को लिखने में लगा, जबकि 50 साल पूरे हो गए प्रकाशन वर्ष के बाद। और माना जाता है कि शरद जी को यदि हिंदी पट्टी में किसी ने स्थापित किया तो विष्णु प्रभाकर जी थे। यदि आवारा मसीहा नहीं आता तो शायद शरद जी इतने स्थापित नहीं होते। आप उस समय बच्चे होंगे, तो जो 14 साल बार बार घूमते रहते थे, उस आवारा मसीहा के कारण आपको अपने पिता का, अपने पूरे परिवार का उतना प्यार नहीं मिल पाया।
0: क्या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा पीछे से
1: जी
0: लेकर
1: जी
0: चलता
1: बिल्कुल
0: हूं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इस पर विस्तार से आप बात करें।
0: हाँ, ये 1957 में
1: जी
0: बॉम्बे के एक प्रकाशक हैं, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर, तो
1: जी जी
0: नाथुराम प्रेमी जी उसके संस्थापक थे, तो उन्होंने

0: प्रभाकर जी से एक प्रस्ताव रखा कि हमने शरद का साहित्य हिंदी में छापा है, पूरा साहित्य छापा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी एक जीवनी अगर इसमें जुड़ जाए तो ये एक संपूर्ण ग्रंथ बन जाएगा। तो उन्होंने प्रभाकर जी से कहा कि आप एक उनकी जीवनी लिख दीजिए। प्रभाकर जी ने मना कर दिया, लेकिन जीवनी लिखना मेरा कोई विधा नहीं है, मैं तो कहानीकार हूँ और थोड़े बहुत नाटक लिखता हूँ, तो जीवनी मैंने कभी लिखी नहीं, मैंने लिख सकता। 1957 के बाद एक साल डेढ़ साल गुजर गया, 1959 में उन्होंने फिर कहा कि नहीं आप लिखिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, शरद मेरा प्रिय लेखक है और मैंने उसको पढ़ा है अच्छी तरह से, और उसके पात्र क्या हैं उनको मैं भी जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि वो पात्र कैसे थे, कहाँ से आए और उनके पीछे क्या राज है। तो मैं कोशिश करता हूँ और लिखने का प्रयास करता हूँ। तो इस कड़ी में उन्होंने जुलाई 1959 में
1: जी
0: सबसे पहले यात्रा की मुजफ्फरपुर के।
1: जी जी जी,
0: मुजफ्फरपुर गए और वहां जितना भी जो उनके उस समय के लोग थे उनसे मिलने के प्रयास किया, उनसे जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की, लेकिन वहां सब लोगों ने उनको निरुत्साहित ही किया। कहने लगे कि एक आवारा और बदचलन व्यक्ति के पीछे जो इधर उधर घूमता फिरता था
1: जी,
0: उसके पीछे तुम क्यों पड़े हो, क्यों अपना समय उसके पीछे बर्बाद कर रहे हो, कोई अच्छा काम करो
1: जी।
0: लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो चाहे आवारा था कैसा था लेकिन इतना बढ़िया साहित्य लिखा
1: जी जी,
0: तो कुछ तो उसके पीछे होगा, इसलिए मैं खोज करता हूँ। और वो लगे रहे। उसके बाद अगस्त में वो भागलपुर गए
1: जी,
0: 1959 के अगस्त में
1: जी।
0: भागलपुर में उनका बचपन बीता था, शरद बचपन में अपने मामा के पास भागलपुर रहे थे
1: जी।
0: वहीं उनकी शिक्षा हुई, वहीं उन्होंने सारा अपना जीवन शुरू किया और 25 वर्ष वो भागलपुर रहे। तो वहां जाके फिर उन्होंने खोजबीन शुरू करी और मामा के परिवार से और जो उस समय के लोग थे, मित्र थे, उन सबसे जानकारी इकट्ठी करनी शुरू करी और ये भी देखा कि शरद के जो पात्र थे
1: जी,
0: वो भागलपुर में कहाँ कहाँ थे। और शुरू में जो बचपन में शरद थे वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और उनको गल्प सुनाते थे, गल्प मतलब मनगढ़ंत कहानियां, वो बचपन से ही करते थे। तो उस जगह को भी देखा, सब जगह वो गए और जाके समझा और समझने के बाद फिर प्रयास किया आगे। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि शरद एक बहुत लंबे समय रंगून में रहे
1: जी,
0: तो फिर 1960 में वो रंगून गए
1: जी।
0: तो ये यात्राओं का सिलसिला चलता रहा। 1960 में रंगून जब गए तो आसपास की भी कई जगह घूमा है, तो 3-4 महीने उस यात्रा में रहे। वहां सब यात्राएं कर करके जहां भी जितनी भी सामग्री शरद वहां रहे, उनका परिवार था, उनकी पत्नी भी थी वहां, और किस तरह का जीवन जिया, वो सारी जानकारी इकट्ठी की। उस सब जानकारी को इकट्ठा करने में उनको लगभग 6-7 वर्ष लगे
1: जी।
0: लेकिन उसके बाद भी सारी जानकारियों की प्रमाणिकता नहीं मिल पाई
1: जी, जी।
0: और प्रमाणिकता एकत्र करने के लिए उसके बाद भी वो घूमते रहे और बहुत से लोगों से पत्राचार करते हैं। उसके बाद 2 बार कलकत्ता गए, जहां से भी जिससे भी सूचना मिल सकती थी, जिससे भी वो प्रमाणिकता उनको सिद्ध हो सकती थी, उन सबसे मिले और लगातार पत्राचार करते रहे। तो तब जाके 6-7 वर्ष में वो एक सामग्री इकट्ठा कर पाए
1: जी।
0: और 7वें वर्ष के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। जब उसका लेखन शुरू हुआ कि एक पांडुलिपि बनी
1: जी,
0: फिर उसके बाद दूसरी पांडुलिपि बनी, उसके बाद तीसरी पांडुलिपि बनी, और तब तक नई नई सामग्रियां मिलती रही
1: जी,
0: प्रमाणिकता बदलती रही
1: जी,
0: जो तथ्य उनको पहले मिले थे वो बदलते रहे, तो उन सबको बदलते बदलते फिर 4थी पांडुलिपि बनी। 4 पांडुलिपि बनने के बाद वो ग्रंथ तैयार हुआ। लेकिन फिर उनके मन में आया, ये तो मैंने एक जीवनी की तरह से लिख दिया
1: जी,
0: लेकिन शरद तो अपने आप में एक अलग पात्र हैं
1: जी,
0: वो तो एक रोमांटिक पात्र हैं और रोमांचक पात्र हैं, तो क्यों ना इसको बदल के मैं एक उपन्यास के रूप में
1: जी।
0: तो उसको उन्होंने फिर से लिखा। जो 5वीं पांडुलिपि तैयार हुई
1: जी,
0: वो एक उपन्यास के रूप में जो एक रोचक तरीके से वो लिखी गई
1: जी।
0: फिर 6ठी पांडुलिपि फाइनल तैयार हुई, अंतिम पांडुलिपि 6ठी तैयार हुई। 6 पांडुलिपियां जो मेरे पास अभी भी रखी हुई है
1: जी,
0: वो तैयार हुई, तब ये ग्रंथ तैयार हुआ।
1: 6 पांडुलिपियां 435 पृष्ठ की यह किताब है, जिसको मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था कि आवारा मसीहा में कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो कल्पित है, जिसको विष्णु प्रभाकर जी ने कल्पना से लिया,
0: बिल्कुल
1: जो भी लिया है किसी न किसी स्रोत से लिया है, और इससे ज्यादा प्रमाणित

0: कोई जहन में भी जरूर रखता है। क्या आपको कुछ ऐसा लगा?
1: नहीं, वो बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनका अपना
0: नहीं, उनकी शरारतें, जैसे आप पढ़ते हैं दिशहरा में तो उनकी शरारतें को वर्णन करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि शरारतें तो उन्होंने देखी नहीं होगी, शरारतें तो उन्होंने सुनी होगी और आपकी शरारतों को उन्होंने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ सामंजस्य बैठता है क्या?
1: जो उन्होंने अपने आप ही कहा, उन्होंने बताया
0: जी
1: कि जो इस तरह की जो घटनाएं थी
0: जी
1: उसमें मैंने कुछ कल्पना जोड़ी है।
0: जी जी जी,
1: तथ्यों को बिल्कुल नहीं बदला
0: जी,
1: लेकिन उनको एक नाटकीय रूप देने के लिए उसमें कुछ कल्पना मैंने जोड़ी और काल्पनिक उसको दृश्य बना के और उसको एक इस तरह का रोचक रूप दिया। तो उसमें अवश्य ही कहीं ना कहीं से जो परिवार के सब लोगों के बच्चों के भी उसमें प्रसंग जुड़ जाते थे। लेकिन इसके बाद आज जो हम देखते हैं, अगर मैं किसी से भी मिलता हूँ, कहीं भी बात करता हूँ, नए लोगों से परिचय होता है, उनको ये पता लगता है कि विष्णु प्रभाकर जी के पुत्र हैं, तो सबसे पहले कहते हैं अच्छा आवारा मसीहा वाले विष्णु प्रभाकर
0: जी। जी जी,
1: और एक तरह से उनके नाम के साथ आवारा मसीहा बिल्कुल इस तरह से जुड़ गया कि जैसे वो दोनों एक ही है।
0: जी जी जी,
1: और कोई कहता है कि मैंने आवारा मसीहा 10 बार पढ़ी, कोई कहता है कि मेरी प्रिय पुस्तक है, कोई किसी तरह से बताता है कि कल हमने तो आवारा मसीहा दिन रात बैठ के एक साथ पढ़ी, एक बार पढ़नी शुरू करी थी, 24 घंटे पढ़ते रहे।
0: जी जी,
1: तरह तरह की लोग बात करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि अगर आवारा मसीहा है ये कि वो पुस्तक उन्होंने लिखी होती
0: जी
1: तो वो ही उनके लिए जीवन के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती
0: जी।
1: और ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन इसके पीछे कुछ और चीजें भी आई, जैसे आवारा मसीहा शीर्षक जो है
0: जी जी।
1: अब शीर्षक के पीछे भी कुछ लोगों ने कहा कि ये शीर्षक तो बहुत खराब है, बहुत भद्दा है। एक दो लोगों ने कहा कि इनकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे लेखक को आवारा कह दिया
0: जी,
1: और ये देखिए एक दूसरी भाषा का आदमी और हमारे बंगाली के लेखक को आवारा कह रहा है, ये कैसे उसने कर दिया, कैसे उसकी हिम्मत हुई, लेकिन ये नाम कैसे बना
0: जी,
1: इसके पीछे भी एक कहानी
0: जी, जी बता दीजिए।
1: इसके पीछे एक कहानी है कि जब शरद अंतिम समय में बीमार थे
0: जी,
1: तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने एक मित्र को उनके पास भेजा
0: जी,
1: और उनसे बातचीत करी और उनसे कहा कि शरद तुम अपनी जीवनी लिखो, अपने आत्म संस्करण लिखो। तो शरद ने बोला कि अगर मुझे पता होता
0: जी
1: कि मैं इतना प्रसिद्ध हो जाऊंगा तो मैं एक किसी और तरह का जीवन जीता, आवारा तरह का जीवन नहीं जीता, मैंने बचपन से आवारागर्दी करी, अब आप देख रहे हैं कि मैं क्या हूँ।
0: तो वहीं से आवारा शब्द,
1: वहां से आवारा बना
0: जी, जी।
1: और उसी समय जो वहां की महिला मंडल था
0: जी जी,
1: उन्होंने एक सम्मान पत्र उनको दिया और उसमें उन्होंने लिखा कि आपने महिलाओं के लिए जितना काम किया है, आपके साहित्य में महिलाओं को जितना स्थान मिला है, इसलिए आप हमारे लिए मसीहा हैं।
0: जी जी जी,
1: तो ये आवारा और मसीहा जाके आवारा मसीहा बन गया।
0: अमृतलाल नागर ने मानस का हंस लिखकर तुलसी की छवि को निखारा, अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखकर और ऐसा लिखा जिससे लोग प्रेमचंद को निकट से जान सके, लेकिन शरद चंद के साथ तो कोई न्याय नहीं हुआ, उनके ऊपर लिखने वाला कोई नहीं हुआ, न कुल परिवार में न कोई साहित्य प्रेमी ही, यह बात मुझे बेचैन करती रही, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ही काम करना होगा और इस प्रकार महान कालजयी आवारा मसीहा की रचना हुई, भूमिका में लिखते हैं। फिर मेरा सवाल, जैसा कि आपने कहा कि वो गए थे मुजफ्फरपुर, वहां पे कहा रचना करने, उसी से प्रेरणा थी या यदि वे नहीं होते तब भी ये लिखते शरद चंद पे?
1: अगर नाथुराम प्रेमी जी इतना आग्रह नहीं करते तो शायद ना लिखी जाती।
0: अच्छा।
1: क्योंकि उनके मन में तो शरद के साहित्य से प्रेम था
0: जी जी,
1: लेकिन जीवनी लिखने का उनके मन में कभी भी कोई विचार नहीं था। प्रेमी जी ने उनसे बार बार आग्रह किया
0: जी,
1: और एक बार मना करने के बाद भी दोबारा तिबारा उनसे आग्रह किया, तो उनके मन में इच्छा जागी और उन्होंने लिखना शुरू किया।
0: लेकिन उन्होंने एक दूसरी जीवनी भी लिखी, अमर शहीद भगत सिंह,
1: हाँ,
0: उसकी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी चर्चा आवारा मसीहा की हुई, उतनी शहीद भगत सिंह की नहीं हुई, जबकि शहीद भगत सिंह देश के एक नए आयाम देने की कोशिश की उन्होंने। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लिखने में विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद जी को ज्यादा महत्व दिया?
1: बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। देखिए, जितना शरद के लिए उन्होंने परिश्रम किया
0: जी,
1: जितना भ्रमण शरद के लिए किया, उतना परिश्रम और उतने भ्रमण उन्होंने भगत सिंह के लिए नहीं किए
0: जी।
1: उसका तो उन्होंने जो कुछ लोगों से पत्राचार करके, कुछ इधर से उधर से सामग्री इकट्ठी करके, और उस समय भगत सिंह के साथ ही

0: जयदेव थे उनके भाई, उन लोगों से मिलके इतनी सामग्री इकट्ठी करते थे, उससे उन्होंने वो पुस्तक लिखी। लेकिन अगर उनके पैतृक गांव जाते या उनके परिवार से मिलते और बातचीत करते तो वो उसको एक नया रूप दे सकते थे। शरद के लिए जितना उन्होंने परिश्रम किया, उनके मन में उनसे लगाव जो था, एक जुड़ाव था शरद से, तो उस जुड़ाव के नाते जो उन्होंने परिश्रम किया और इतनी जगह घूमे, वो सब कुछ जो किया, अगर उतना ही भगत सिंह के साथ करते तो शायद वो जीवनी कुछ और तरह की होती। तो वो तो अंतर है उसमें।
1: अच्छा, आवारा मसीहा की एक पंक्ति है, उसके बारे में आपसे मैं जानना चाहता हूँ। वे लिखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नारी मात्र को स्नेह दिया पर सहानुभूति दी शरद चंद्र को। तो आवारा मसीहा के इस कथन के आलोक में विष्णु जी की स्त्री दृष्टि या कुछ स्त्री पात्रों पर प्रकाश डालिए। तो कि एक मनुष्य को मनुष्य बनाने में, एक पुरुष को पुरुष बनाने में, एक रचनाकार को रचनाकार बनाने में सबसे ज्यादा हाथ स्त्री का होता है, पत्नी का होता है। तो उनको इतने बड़े रचनाकार बनाने में आपकी माँ की क्या भूमिका रही या स्त्री दृष्टि क्या रही?
0: वो तो उन्होंने अपने संस्करण में भी लिखा है और बताते हुए थे कि जो मेरे जीवन की प्रेरणा है, सबसे पहली प्रेरणा मेरी माँ है
1: जी।
0: उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और उसने जो मुझे सिखाया वो मेरे अंदर हमेशा चलता रहा
1: जी।
0: दूसरी प्रेरणा मेरा भाई
1: जी,
0: बड़े भाई थे, और तीसरी प्रेरणा मेरी पत्नी
1: जी।
0: तो ये दो जो स्त्रियां, माँ और पत्नी, इन दोनों स्त्रियों ने जो उनके मन में जो उनके स्त्री पात्र हैं, इनमें ये दोनों झलकते हैं
1: जी।
0: बहुत सारे पात्रों में ये दोनों स्त्रियां उपस्थित हैं
1: जी।
0: और उसके साथ साथ फिर शरद को जो उन्होंने पढ़ा
1: जी,
0: उसमें जो स्त्री पात्र को उन्होंने उनकी संवेदनाएं जो व्यक्त की हैं, तो वो सारी संवेदनाएं उनके उसमें आई हैं। और यही संवेदनाएं इस आवारा मसीहा में भी हैं, क्योंकि लोगों ने ये भी कहा कि इसमें संवेदना बहुत दिखाई देती है, झलकती है। कुछ लोगों ने ये कहा कि देखिए, अगर शरद के जीवनी में संवेदना ना होती तो फिर क्या होता।
1: बिल्कुल। और आप विष्णु प्रभाकर की सभी रचनाओं को देख लीजिए, सब में मनुष्य और संवेदना प्रमुख है। खुद विष्णु प्रभाकर जी लिखते हैं कि यश ही मिलता और उसको लेकर किसी के मन में कोई विरोध ना होता तो उस यश का गौरव न रहता। तुम्हारी प्रतिष्ठा जितनी बढ़ेगी उतना ही दुख बढ़ेगा, इसके लिए मन को पक्का करके रखो। तो ये यश अपयश, और वो लिखते भी हैं एक जगह कि समा जाता है श्वास में श्वास, शेष रहता है फिर कुछ नहीं इस अनंत आकाश। और वहां पे एक लाइन है, शब्द ब्रह्म ढूंढता पर ब्रह्म को। तो कहीं ना कहीं विष्णु प्रभाकर जी के पूरे जीवन की जो तलाश है, जिसे हम आवारा मसीहा में देखते भी हैं, दिशा की खोज, तो उनके दिशा की खोज क्या रही?
0: उनका दिशा की खोज में ये था कि एक तो शुरू से ही अरविंदो की तरफ उनका झुकाव था
1: जी।
0: उससे पहले जब वो हिसार रहते थे तो आर्य समाज से उनका जुड़ाव था। आर्य समाज की सभाओं में जाते थे वो और वहां भाषण देते थे। जो भाषण की कला उनकी जो निखरी, वो वहां उन्होंने जो भाषण दिए उसी से निखरी, क्योंकि उनका सम्मान वहां इसलिए होता था ज्यादा, उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी
1: जी,
0: उच्चारण बहुत अच्छा था। और हिसार जैसी जगह में उच्चारण लोगों का वहां इतना अच्छा सुंदर नहीं था
1: जी।
0: तो वो जो वहां भाषण देते थे उस उच्चारण से लोग बहुत प्रभावित होते थे। तो जो उन्होंने आर्य समाज को अपनाया
1: जी
0: शुरू में, तो एक तो दिशा उससे मिली
1: जी।
0: और उसके बाद श्री अरविंद की तरफ उनका झुकाव रहा
1: जी।
0: 15 अगस्त को जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय वो अरविंद आश्रम में ही थे, तो वो जो दोनों चीजें उनके जीवन में रही
1: जी,
0: अंतिम समय तक वो उसी से जुड़े। और जो आप देखते हैं कविताओं में, जो आपने जो अभी बहुत सारी कविताएं सुनाई
1: जी,
0: तो उसमें जो उनका एक झलकता है कि वो आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव हमेशा बना रहता है
1: जी। वे लिखते हैं कि मैं मानव धर्म को सती धर्म के बहुत ऊपर स्थान देता हूं। सतीत्व और नारीत्व, यह दोनों आदर्श समान नहीं है। नारी हृदय की मंगलमयी करुणा, उसकी जन्मजात मातृ वेदना, उसके सतीत्व से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो ये बाल्य प्रेम है, या यूं कहें कि जो वात्सल्य प्रेम है, वैसा वात्सल्य प्रेम, आपको पूरा वात्सल्य प्रेम अपने पिता से मिला या नहीं? क्योंकि तो साहित्यकार जो होता है वह अपने घर को जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दे पाता।
0: बिल्कुल ठीक बात है। वो तो ये मानते हैं कि ये तो मेरा एक जैविक परिवार है, छोटा सा परिवार है
1: जी,
0: लेकिन मेरा साहित्यिक परिवार तो पूरा है। तो ये कहा करते थे कि पूरे देश में

0: मेरे कितने घर हैं, मैं कहीं भी जाके रह सकता हूँ, कितने समय भी रह सकता हूँ, पूरा देश मेरा घर है
1: जी।
0: तो हमारे एक छोटे से परिवार को वो इतने बड़े परिवार में से थोड़ा सा समय भी देते
1: जी
0: तो वो भी बहुत।
1: आपके मन में कभी रहा
0: बिल्कुल
1: द्वेष मलाल रहा कि जो आपको समय मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया?
0: बिल्कुल बचपन में, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हमारा संयुक्त परिवार था,
1: जी
0: संयुक्त परिवार में हमारे चाचा था, वो सब रहते थे
1: जी।
0: तो वो लोग एक सीमित समय में अपने नौकरी पे गए और आ गए और वो अपने बच्चों के साथ भी समय बिताते थे, लेकिन इनको हम देखते थे कि ये तो सुबह से गए और शाम को आए, शाम को अभी आए तो इनके साथ इनके मित्र आए हुए हैं, ये उनके साथ अपने काम में लगे हुए हैं, हम लोगों के लिए तो समय है ही नहीं इनके पास। और कभी समय मिलता भी था तो सुबह के समय जब शहर को जाते थे, हमें साथ ले जाते थे, बस उस समय उनको हमारे लिए थोड़ा समय होता था, बाकी समय नहीं हम लोगों के लिए होता था। तो ये हम लोगों को लगता था कि हमारे लिए तो इनके पास समय है ही नहीं।
1: एक अंतिम सवाल, उनकी पहली कहानी दिवाली की रात 1931 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाला समाचार मिलाप में छपती है। 1931 से लेकर अंतिम दिन तक, जीवन के अंतिम दिन तक लगभग लिखते रहे किसी न किसी रूप से, आपको उनकी सबसे अच्छी रचना कौन सी लगी?
0: अगर सबसे अच्छी रचना कहें तो यही रचना है
1: हमारा
0: मसीहा
1: जी।
0: लेकिन इसके अलावा उनकी कहानियां बहुत हैं
1: जी जी,
0: जिंदगी शरीर से परे और धरती अब भी घूम रही है, और इसके अलावा नाटक हैं
1: जी
0: सारे, ये बहुत अच्छी रचनाएं हैं। और इसके अतिरिक्त भी जो उन्होंने एक समाज और संस्कृति करके लेख लिखे हैं
1: जी,
0: वो भी बहुत सुंदर लेख है, वो
1: तो
0: बहुत प्रभावित करते हैं। इस तरह से जो यात्रा संस्मरण लिखे हैं, यात्रा संस्मरण भी बहुत अच्छे रोचक है, रोचक ढंग से लिखे गए हैं, हालांकि वो अब आज उतने प्रासंगिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो उस समय के लिखे गए थे तो उसमें तो रोचक संस्मरण है
1: जी,
0: वो सब प्रभावित करते हैं, वो सभी अच्छे लगते हैं
1: जी जी। विष्णु जी लिखते हैं कि मन कहता है कि छोड़ इस झगड़े को, कौन पूछता है तुझे और तेरी ईमानदारी को, पर दिमाग बोल उठता है जिस रास्ते को तू ठीक समझता है उसे केवल चंद दुनियावी मुश्किलों की वजह से छोड़ना बुजदिली है। और यदि हम पूरे उनकी रचना संसार को देखें तो वो बुजदिली कहीं नहीं दिखाते, अपने हर काम को ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि जैसा जीवन वैसे ही आग का अर्थ है संघर्ष। और न केवल अपने जीवन में संघर्ष करते रहे, लेकिन जो ईमानदारी की बात उन्होंने की थी, उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरा देह दान कर दिया जाए, ये आप किस रूप में देखते हैं?
0: मेरी जो माता जी थी उनको कैंसर था
1: जी,
0: और जब वो जीवित थी तभी उन्होंने ये दोनों ने संकल्प किया था कि हम लोग अपने देह दान करेंगे। ये कहाँ से उनको प्रेरणा मिली ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन उनके मन में दोनों में था कि हमको देह दान करनी है, और ये पहली शायद मेरी माता जी की तरफ से ये प्रस्ताव था
1: जी।
0: कि मेरे अंदर इतनी बीमारियां हैं, मेरे शरीर में कैंसर है, क्यों ना मेरी देह को आप अस्पताल में दान कर दें ताकि जो विद्यार्थी हैं वो कैंसर की बीमारी को समझ सके। तो ये उनके मन में इच्छा थी, लेकिन उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई
1: जी
0: कि वो उनकी देह इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो उसको दान नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसी समय उन्होंने प्रण लिया कि वो तो मैं नहीं कर पाया लेकिन मेरी देह मैं दान करूंगा।
1: क्या बात है।
0: और उसके लिए उन्होंने उसके कुछ वर्ष बाद ही एक पत्र बना के और वहाँ
1: यही एक सच्चे साहित्यकार
0: है, ये उन्होंने पत्र दे दिया
1: जी, जी।
0: और उसमें मेरे हस्ताक्षर उन्होंने विटनेस के तौर पर कराया है।
1: बहुत बढ़िया, यही एक सच्चे साहित्यकार की देन है कि न केवल अपनी लेखनी का दान किया, अपने विचारों का दान किया, अपने विचारों सोच समझ का दान किया, बल्कि जाते जाते समाज के लिए अपने शरीर का दान कर दिया,
0: जो कुछ भी काम आ सके, जितना कुछ भी
1: काम आ सके
0: वो समाज के लिए।
1: बिल्कुल, संघर्ष अधिकारों की शक्तियों से, संघर्ष अपने स्वयं के अहम से, संघर्ष जहां हम नहीं है वहां बार बार दिखने से कर सकोगे क्या संघर्ष? तो जो संघर्ष करने की प्रवृत्ति विष्णु प्रभाकर जी ने अपने जीवन में दी, आज हमें उस साहित्यिक संघर्ष को जानना और समझना होगा, तभी हम वास्तव में विष्णु प्रभाकर जी को याद कर पाएंगे। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विष्णु प्रभाकर, अपना जीवन पराई कहानी, अभी आप इस विषय पर श्री विष्णु प्रभाकर के सुपुत्र श्री अतुल प्रभाकर से ये भेंट वार्ता सुन रही थी। आपसे भेंट कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और प्राध्यापक डॉक्टर आलोक रंजन।

0: पांडे। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि।
2: हमारे अतिथि क्रम में आइए सुनते हैं जाने माने साहित्यकार श्री दिलीप रमेश से एक भेंट वार्ता। इनसे भेंट कर रही हैं काजल सूरी। नमस्कार श्रोताओं, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं काजल आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं जाने माने साहित्यकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर दिलीप रमेश जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो सर, सबसे पहले मैं आपसे, मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपका जो सफर है वो कैसे शुरू हुआ लेखन के क्षेत्र में? आप एक शिक्षाविद भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे किस तरह से आपका सफर शुरू हुआ?
3: देखिए, लगभग 13-14 साल का रहा हूँगा
2: जी,
3: तो मैंने लिखना शुरू किया था
2: जी।
3: अब वो लिखा हुआ कितना महत्वपूर्ण है अलग बात है, हालांकि मेरी फाइल में, मेरी कॉपी में वो सुरक्षित है। उसका कारण मैं समझता हूँ, बिछुओं भी कह सकते हैं, नई दुनिया में आना भी कह सकते हैं। मैं दिल्ली के देहात में जो गांव है हरियाणा की सीमा पर, तो हरियाणवी संस्कृति या बोली में पला बढ़ा हुआ है, मेरा बचपन हुआ है। तो वहां से मुझे आगे की पढ़ने के लिए, रहने सहने के लिए मेरा ननिहाल भेज दिया गया, जो कि दिल्ली के करोलबाग में वो क्षेत्र पड़ता था, देवनगर। स्पष्ट है कि मैं पांचवी क्लास पास करके वहां आया तो मुझे अपनी माँ भी याद आती थी, मेरे पिता भी याद आते थे, पिता को हम चाचा कहते थे
2: जी।
3: और मुझसे जो दो छोटी बहनें उस समय थी, बड़ी बहन तो शादी शुदा थी, तो वो छोटी बहनों से बड़ा लगाव होता ही है, वो याद आते थे, एक तो ये कारण। और दूसरा ये कि मैं जब यहाँ आया तो मैं वहां गांव का जैसे बच्चा होता है वैसा ही था, वही बोली थी, वही तरीका था
2: जी।
3: तो दिल्ली के जो आसपास के, मेरे घर के आसपास के जो बच्चे थे वो मुझे स्वीकार ही नहीं करते थे, यानी एक बड़ा समय लगा उनका हिस्सा बनने में। लेकिन इसमें ये एक था, साहित्यकार भी चुके थे मेरे नाना जी, उनके पास पुस्तकालय भी था, कुछ साहित्यकार भी आते थे, तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि शायद वो कारण रहे होंगे कि मैंने जो है अपने गांव को दिमाग में रख करके, अपने आसपास को दिमाग में रख करके लिखा। जहां तक मुझे याद है, लिखी तो पहले कहानी गई थी
2: जी,
3: लेकिन फिर छोटी छोटी कविताएं लिखी, जिससे मुझे मेरे गांव में मेरी अपनी गाय है वो दिमाग में ही लिख दी, छोटा भाई है तो उसकी, उसको लेकर के लिख दिया, कुछ इस तरह की चीजें लिखी गई। कहने को उनको वो कविताएं लिखी गई, लेकिन वो कविता थी या नहीं थी अलग बात है
2: जी।
3: लेकिन उसी समय मुझे बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला अपने नाना जी से, जिन्होंने मुझे मेरे लेखन को सराहाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो यहाँ से शुरू हुआ था। तो स्कूल में भी थोड़ा मुझे ये हुआ कि मेरे अध्यापकों ने भी मेरी तरफ ध्यान दिया और मेरे जो लिखा था उस लेखे को एक तरह से उन्होंने पहचाना। ये अलग बात है कि मैं बहुत अधिक नहीं बढ़ पाया कि कुछ कारणों से, उस सेटबैक पे पहुंचा कि मुझे कहा गया कि अपनी कविता सुनाओ एक समारोह में, वो सुना नहीं पाया मैं, या मुझे बुलाया नहीं गया मंच पे। लेकिन उस वक्त भी मेरे नाना जी ने मेरा साथ दिया और कहा कि ये तो सब बाधाएं आती रहती है। और उस आसपास भी वातावरण कुछ ऐसा था, हमारे घर में तो आते ही थे कुछ साहित्यकार, जैसे भगवान प्रसाद मिश्र आदि का मेरे को नाम याद है, और चौराहों पर जो ना कुछ कवि सम्मेलन जैसे हुआ करते थे, उनको भी सुनने की मुझे छूट थी। आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
2: क्या बात,
3: उस बाल साहित्य, यानी बाल बच्चों के प्रोग्राम जो है रेगुलरली नियमित रूप से मैं सुनता था, छोटा सा रेडियो होता था वो, उम्र टेलीविजन तो था नहीं। और अखबारों का बड़ा योगदान है, बाल साहित्य छपता था, पढ़ने का मुझे शौक हो गया। तो इसके बाद जो है बस आगे बढ़ते चले गए, और यू समझिए कि बेहे में भी मुझे जो ना एक दो अध्यापक ऐसे मिले जिन्होंने मुझे मेरे साहित्यकार रूप को प्रोत्साहित किया। और मैं गीत नुमा कुछ लिखा करता था
2: जी,
3: गंगा प्रसाद विमल मेरे एक अध्यापक थे, जिन्होंने मुझे फ्री वर्स या मुखचंद की और वो लेके आए
2: जी।
3: और करते कराते शायद 1900

0: जहाँ तक मुझे याद है एक पत्रिका होती थी मणि में
1: जी,
0: जो कलकत्ता से निकली थी, और उसमें एक कविता छपी थी मेरी, एक सूत्र, जो कि ठीक की थी मगर जी नहीं
1: जी।
0: मतलब उस समय के अध्यापक ऐसे होते थे कि वो आपको प्रोत्साहित भी करते थे, आपकी चीजों को अपने तरीके से
1: बताते भी थे,
0: बताते जिसको सलाह। उर्दू में तो ये काफी है चीज, लेकिन हिंदी में भी इस तरह के अध्यापक होते थे। तो वो एक सूत्र है मणि में के मई 1970 में छपी थी, और ये पत्रिका कोलकाता से निकलती थी। मतलब उस समय कलकत्ता ही बोले आपको कलकत्ता कहेंगे, तो यहाँ से फिर शुरू हुई। और फिर मैं अजिल जी, हमारा वो जो समय था, मैं दिल्ली में था, दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरी पूरी शिक्षा हुई है, मैं उसको आज तक का स्वर्णिम काल कहता हूँ। यानी इतने हमारे आसपास अध्यापक भी और नए लोग भी थे
1: जी, जी।
0: जो कि साहित्य में और कलाओं में रुचि रखते थे
1: जी।
0: वो तो एक तरह का विस्फोट था उस समय। आप ही सोचिए कि मेरा जो नाम दिविक रमेश है, ये दिविक वैसे ही वातावरण से आया था। हमारे एक सामूहिक संग्रह छपा था जिसका नाम दिविक था, दिल्ली विश्वविद्यालय कविता। अब तक मैं रमेश शर्मा के नाम से लिखता था, और उसके बाद जो है दूसरा दिविक निकला था जिसमें संपादक भी हो गया था, उस समय दिविक रमेश हो गया था। उन दोनों मुठियों बंद आकार, वो तो साहित्य जो सभा होती है हिंदी विभाग की उसी से निकला था वो संग्रह। और संपादक मंडल में एक मैं भी था रमेश शर्मा के नाम से, रामदेश मिश्र जी थे और एक दो लोग थे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि वो ऐसा वातावरण था, कॉलेजों में कविता प्रतियोगिताएं होना, कहानी प्रतियोगिताएं होना, ऐसे संकलन निकलना, उन्होंने भी बहुत मदद की होगी कि हमारा जो रचनाकार रूप है वो आगे बढ़ता चला जाए। संक्षेप में मैंने बताया आपको।
1: तो बाल, अब जिस तरह से आपने कहा, आपने कहा अपना पूरा सफर बताया, लेकिन जो बाल साहित्य की जिस तरह से आपने बात की कि आप आकाशवाणी के बच्चों के प्रोग्राम सुना करते थे, उसे आपको बहुत सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो बाल साहित्य लिखने की प्रेरणा आपको कैसे, आपने बाल साहित्य ही क्यों चुना, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, क्या कहेंगे?
0: देखिये, मैं तो बड़ों के लिए लिखता था पहले ना, मेरा पहला जो समय था वो रास्ते के बीच आया था, जिसके लिए कविताओं का चयन जो है वो शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया था। और इस संग्रह के आने के पीछे भी आकाशवाणी का बहुत योगदान।
1: अरे वाह।
0: मालूम कि आप जब देखिए उस समय शायद गजागोर माथुर जी थे आकाशवाणी में, और वो प्रयोग करते थे, कम से कम दो कार्यक्रम तो मुझे याद आ रहे हैं। यूँ समझिए कि बावलंकर हॉल में, इतना बड़ा हॉल,
1: पहले वहीं हुआ करते थे प्रोग्राम,
0: उसके सामने मतलब सबके दर्शकों के सामने जो है रिकॉर्डिंग होती थी
1: जी।
0: ऐसे ही शायद किसी एक आध जगह और ऐसे हुआ था
1: जी।
0: तो मैं तो बहुत युवा था, जुड़ा तो था मैं यहाँ युवाणी प्रोग्राम से बराबर आता था, लेकिन बहुत युवा था। तो पता नहीं कैसे मेरी कविताएं भी चुनी गई थी वातावरण हॉल में सबके सामने सुनाने के लिए
1: जी।
0: और वहां रिकॉर्ड भी होनी थी। जब वो प्रोग्राम समाप्त हो गया तो जिन्होंने चुनी थी, जिनको ये दायित्व दिया गया था, उनमें एक अजित कुमार थे, एक शमशेर बहादुर सिंह जी थे
1: जी।
0: तो मुझे तब तक पता नहीं था कि शमशेर जी जिस दिल्ली के जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहां वो भी रहते हैं। तो ऐसे ही मैंने उनको प्रणाम किया, और जब कहा तो मैं कहा, अरे भाई मुझे अच्छी लगी थी आपकी कविताएं, मैं देखता रहता हूँ, छोटी पत्रिकाओं में काफी छपती हैं, तो आप एक साथ सब कविताएं मुझे पढ़वाइए। और मैंने हाथ से लिखा करते थे, हम कविताएं भी हाथ से ही बनाई जाती थी, दो दो तीन तीन बार
1: जी, जी।
0: ऐसा कोई और तो था ही नहीं, ना कंप्यूटर था ना कुछ था। तो उनको मैंने दे दी, उन्होंने जब मैंने दी तो उन्होंने चयन किया, मुझे बहुत सारी चीजें समझाई भी, और वो संकलन बना था रास्ते के बीच, और रास्ते के बीच पहला ही संकलन था जिसपे सोमित लैंडर अवार्ड मिला था।
1: अरे वाह, क्या बात, क्या बात।
0: आप आगे देखिए, तो वो तब तक मैं बड़ों के पत्रिकाओं में भी खूब छपने लगा था, यहाँ धर्मियों वगैरह में, साप्ताहिक हिन्दुस्तान आपको ध्यान होगा,
1: कादम्बरी वगैरह, बिल्कुल।
0: तो छोटी पत्रिकाओं से आया मैं, लेकिन बड़ी पत्रिकाओं में भी मेरी पहुंच हो चुकी थी। और रास्ते के बीच निकलने के बाद

0: तो एकदम से
1: बिल्कुल
0: ऐसा हुआ कि मैं क्या कहूँ, बहुत हाथ हाथ लिया गया।
1: क्या बात।
0: और तो ये केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवि ने उस समय की जो बहुत बड़ी मैगजीन थी अजमेर की लहर शहर थी लहर, उसमें लगभग 15-20 पृष्ठ का लेख लिखा था
1: आपके
0: संग्रह पर।
1: आपके संग्रह पर, क्या बात, वाह।
0: केदारनाथ अग्रवाल ने
1: जी जी,
0: और वो उनकी पुस्तक है विवेक विवेचन, उसमें आज आप पढ़ सकते हैं। तो कहने मतलब ये कि ऐसा वातावरण था। ऐसे में जो है जो मैंने पहले लिखा था बचपन में वो तो एक तरफ हो गया,
1: एक तरफ हो गया जी बिल्कुल।
0: तो मैं तो इधर ही बढ़ रहा था। तो ऐसे में जो है ना एक सज्जन मुझे मिले, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है। वो लंदन से जुड़े हुए थे, देवेंद्र कुमार
1: जी जी,
0: उनको भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है
1: जी।
0: और बड़े अच्छे कथाकार और कवि रहे हैं। उन्होंने एक तरह से मुझे चुनौती दी, उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए लिखिए, नंदन के लिए लिखिए और हम आपको बहुत और भी अधिक प्रसिद्ध करेंगे
1: जी।
0: और मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन मैं जो सोचता था बड़ा आसान है बाल साहित्य लिखना, मेरे पसीने छोड़ रहे।
1: अरे
0: 6 महीने तक मैं ठीक ठाक नहीं लिख पाया। मैं सोचता था बड़ा आसान है, जब मुझे लिख लो, लेकिन जो मुझे भी संतोष दे सके और मेरे पाठक को भी, ऐसा लिखने में मुझे बहुत बाधाएं आई। खैर 6 महीने बाद जो है कुछ कविताएं लिखी गई जो मैंने धर्मयुग में छपता ही था, वहां भी भेजी, लंदन में भी भेजी। और धर्मयुग में मेरी कविता जो है मुन्ना बन बैठा दादा जब, 12 फरवरी 1978 के अंक में छप गई, यानी वो छपने वाली पहली कविता थी।
1: पहली कविता थी।
0: और ये पहली कविता जो है पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में ले ली गई।
1: वाह क्या बात,
0: वैसे
1: वाह वाह।
0: तो एक तो ये समझिए कि मुझे बचपन में जो प्रोत्साहन मिला नाना जी से,
1: बिल्कुल
0: इस तरह के जो प्रोत्साहन मिला,
1: वाकई वाकई
0: चाहे केदार जी ने दिया हो, चाहे शमशेर जी ने दिया हो,
1: अपने आप में पुरस्कार है, प्रोत्साहन तो है ही, पुरस्कार है अपने आप में।
0: तो फिर मैं जो है फिर उसको नंदन के संपादक जो होते थे प्रकाश भारती जी, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, वो मुझे बहुत मानते भी थे। अपने अंश में क्या कहूँ, उन्होंने बहुत बड़े सभागार में किसी शायद बिल्डिंग एम्बेसी उन दोनों करवाए थे, करवा करते सांस्कृत कार्यक्रम। उन्होंने ये बोल दिया कि अगले 20-25 वर्ष के जो श्रेष्ठ कवि और देविक रमेश रहेंगे बाल साहित्य, अब ये उनका कहा हुआ है, मेरा कहा हुआ नहीं है। उसको लेकर बहुत सारे लोगों को
1: बात सच साबित हुई,
0: वो हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को उस समय बड़ी तकलीफ हुई थी सुनकर के। वो तो इसी कम उम्र में सृजनात्मक साहित्य पर सोहितलाल नेहरू अवार्ड मिला पहला, उससे भी हुई थी कुछ लोगों को, लेकिन खैर वो अलग बात है
1: जी जी।
0: तो बस उसके बाद जो है मेरा पहला बाल कविता संग्रह जो निकला, जोकर मुझे बना दो जी, वो 1980 में छपा। और पहला कहानी संग्रह दूर सा दूर किसान, उन दोनों में थोड़ा सा लोक की तरफ भी झुका हुआ था
1: जी जी।
0: वैसे आज तक भी मुझे लोक से ताकत लेने में बड़ा अच्छा लगता है, कविताओं में भी,
1: लोक साहित्य में तो हमारी जड़ें होती हैं, हमारी रूट्स होती हैं,
0: भाषा के स्तर पर भी, शब्दावली के स्तर पर भी। तो वो छपा 1984 में, बस वो चल निकला तो चल निकला,
1: सफर चल पड़ा। घड़ी हमसे कह रही है कि कार्यक्रम का वक्त खत्म हुआ है, लेकिन डॉक्टर देविक रमेश से हमारी बातचीत का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, तो लेकिन वक्त को देखते हुए बातचीत को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में एक बार फिर से डॉक्टर देविक रमेश से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए काजल को इजाजत दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारे अतिथि कार्यक्रम में डॉक्टर दिविक रमेश, साहित्यकार और साहित्य अकादमी से सम्मानित, से भेंटवार्ता भेंटकर्ता थी भेंटकर्ता और प्रस्तुति काजल सूरी की थी। ये

0: पहली कड़ी थी।
1: और ये आपने कार्यक्रम जो है हमारे अतिथि सुना आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, फ्रीक्वेंसी मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डेली क्रेडिट पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम सुबह का ही। आज सुनिए अजीत कौर के गाए हुए शब्द।

0: इसे आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे और अब आगे बढ़ते हैं, इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज ही के दिन 1987 में भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने फिलीपींस में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती थी और ये उपलब्धि पाने वाले वो पहले एशियाई बने। सन 2003 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लाइबेरिया में संघर्ष विराम लागू करने के लिए सेना भेजने की आज ही के दिन अनुमति दी थी। और सन 2012 में भारत ने ओलंपिक खेलों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। हम बात कर रहे हैं लंदन ओलंपिक 2012 की, जिसमें भारत ने 6 पदक जीते थे जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य शामिल थे। भारत इस प्रतियोगिता में 55वें नंबर पर रहा। पदक तालिका में अमरीका शीर्ष पर रहा जिसने 104 पदक जीते थे। और सन 2008 में सुधीर कुमार चतुर्वेदी ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में आज ही के दिन अपना कार्यभार संभाला था। और अब आइए बात करते हैं कुछ जानी मानी शख्सियतों के बारे में। सबसे पहले हमारी फेयरलिस में है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। भारत में रसायन विज्ञान के जनक ही माने जाते रहे। वे एक सादगी पसंद और देशभक्त वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसायन प्रौद्योगिकी में देश के स्वावलंबन के लिए अप्रतिम प्रयास किए।
1: That's right, and today is the birth anniversary of Pingali Venkaiah, and of course we all know that he designed the initial version of our international flag, our tricolour. And apart from his role in the independence movement, he was a lecturer, an author, geologist, educationist, agriculturist and a polyglot. And interestingly, he actually joined the British Indian Army then at the age of 19 and served in South Africa during the Second Boer War of 1899 to 1902. During his service, he recognized the need for a national flag for India, as Indian soldiers were required to salute the Union Jack, which was the British flag. And inspired by his experience and later by attending the 1906 All India Congress Committee session in Calcutta, he developed a vision for a flag representing Indians, opposing the practice of hoisting the British flag at Congress meetings. Venkaiah presented his design for an Indian national flag to Mahatma Gandhi in 1921. During Gandhi's visit to Vijayawada, the flag initially consisted of red and green stripes representing Hindus and Muslims respectively, and on Gandhi's suggestion a white stripe was added to represent other communities in India as well. This flag design was used informally at Congress meetings from 1921 and served as the foundation for the Indian national flag, which was officially adopted in its final form by the Constituent Assembly on 22nd July 1947.
0: बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले पिंगले वेंकैया के सम्मान में भारत सरकार ने बाद में उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया। तो मुझे लगता है तिरंगे पर ये गीत सुनना तो बनता है।

0: और आपको बता दें सायरा की पिंगली वेंकैया की संस्कृत उर्दू और हिंदी भाषाओं में भी अच्छी पकड़ थी.
1: दैट्स राइट, ही वाज अ पॉलीग्लॉट. एंड हु इज द नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट फरहत?
0: हम बात कर रहे हैं हिंदी के प्रतिष्ठित कवि और गीतकार उमाकांत मालविया की, जिन्होंने आज ही के दिन जन्म लिया था. पौराणिक संदर्भों की आधुनिक व्याख्या करते हुए इन्होंने अनेकानेक मिथकीय कहानियां और ललित निबंधों की रचना की. उनके बच्चों पर लिखी पुस्तकें काफी बेजोड़ रही. कवि सम्मेलनों का संचालन भी बड़ी संजीदगी के साथ किया करते थे. मेहंदी और महावर, सुबह रक्त पलाश की, एक चावल नह रिंधा जैसे नवगीत संग्रहों में उनकी रचनात्मकता और जन सरोकारों को अलग से रेखांकित किया जा सकता है. और अब बात कर लेते हैं भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैज की. आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में इनकी गणना होती है. संभाल परिवार, मिलकौल, महात्मा बुद्ध, मिथुन, सुजात और रविन्द्रनाथ टैगोर का वक्ष पोर्ट्रेट आदि उनके प्रमुख मूर्ति शिल्प है. इन्होंने दृढ़ संकल्प से वो भारतीय कला के प्रतिष्ठित प्रारंभिक आधुनिक कलाकारों में से एक बने. भारतीय कला में इनके अतुलनीय योगदान के लिए 1970 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया. और श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के अभिनेता जिन्होंने लगभग 600 हिंदी, पंजाबी और गुजराती फिल्मों में काम किया, कमल कपूर की. ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने विलन का ही किरदार निभाया. तो आइए सुन लेते हैं फिल्म चोर मचाए शोर का ये गीत, जिसमें मुमताज के फादर के रूप में नजर आए.

0: इस गजल के साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है प्रोग्राम रूबरू।
1: दोस्तों, संगीत और संगीतकार एक सिक्के के दो पहलू हैं और एक के साथ दूसरे को भी जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए तो एक बार एक कवि ने पूछ लिया था, जिन गीतों पर तुम मोहित हो क्या वे गान समझ पाए हो। तो फनकार के मार्फत उसके फन को समझने की एक कोशिश है रूबरू। उर्दू सर्विस का यह खास प्रोग्राम है रूबरू। यह हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारी महफिल में बनारस घराने के मशहूर गायक पद्म भूषण से नवाजे जा चुके पंडित साजन मिश्र जी तशरीफ लाए हैं। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत ही चंद बनाए हैं, उनमें से सबसे मनमोहक आज हमारी महफिल में आए हैं, उनमें से सबसे मनमोहक आज हमारी महफिल में आए हैं। साजन मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार विजय जी, और आपने इतनी अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ मैं रूबरू कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, और कितना अरसे के बाद में हम सब मिल रहे हैं
1: जी।
2: इसके लिए हम आकाशवाणी को भी धन्यवाद देते हैं, उर्दू सर्विस को
1: जी। मैं भी
2: जी।
1: साजन जी, शुरू से ही शुरू करते हैं
2: जी। जी,
1: आपके वालिद पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र जी
2: जी
1: और चाचा पंडित गोपाल प्रसाद मिश्र मशहूर सारंगी नवाज थे।
2: बिल्कुल।
1: फिर आपका रुझान गायन की ओर कैसे हुआ और सारंगी वादकों से गाना गायकी सीखना कितना मुश्किल रहा आपके लिए?
2: हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे हैं कि 300 से भी अधिक वर्षों की परंपरा हमारे घर में रही है। हमारे पिताजी, चाचा जी, दादाजी, दादाजी के पिताजी, उनके पिताजी मशहूर सारंगी नवाज रहे हैं
1: जी।
2: और आपको शायद सुन के ताज्जुब होगा कि हमारी शिक्षा सारंगी से ही शुरू हुई थी, लेकिन बहुत कठिन वाद्य होने के कारण मैं थोड़ा भागने लगा। जब उंगलियों से खून निकलना शुरू हुआ तो धीरे धीरे धीरे धीरे करीब 1.5-2 साल बजाने के बाद में, और गला ईश्वर की कृपा से था मिला हुआ, तो पिताजी चाचा जी का यही था कि यार इसका गला भी अच्छा है तो दोनों अगर साथ में गाएं तो ये और अच्छा रहेगा, एक साथ गाएंगे तो एक साथ रहेंगे, एक ही परिवार रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग गाने की तरफ, युगल गायन
1: जी,
2: जिसको कि सही मायने में कहा जाए तो सहगान
1: जी,
2: हम दोनों भाई सहगान करने लगे। और चूंकि मेरे बड़े भाई साहब 5 वर्ष मेरे से बड़े थे,
1: पंडित राजन मिश्र जी,
2: तो वो मेरे से निश्चित रूप से सीनियर भी थे, बड़े थे, तो उनकी तालीम हमसे पहले शुरू हुई। और बनारस घराने के गायनाचार्य पंडित बड़े रामदास जी से उनका गंडा बंधन हुआ, लेकिन तालीम हमारे पिताजी और चाचा जी ने दिया। और ये ऐसे शख्स हुए दो लोग, पंडित हनुमान मिश्रा जी, पंडित गोपाल मिश्रा जी, जो कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा गायक नहीं होगा जिसके साथ वो संगत न किए हों
1: जी।
2: उस जमाने के फैयाज खान साहब, ओंकारनाथ ठाकुर, केसर बाई जी, गंगू बाई जी, मतलब भीमसेन जी, जसराज जी, कोई ऐसा गवैया

0: तो सारंगियों को पहले तो तालीम दी जाती है गायन की, क्योंकि जब वो अंतर में गाएंगे तभी वो यंत्र में निकलेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो वो लोग संपूर्ण गायक थे, करने के लिए सारंगी वादक थे, संपूर्ण गायक थे और बड़ी बंदिशें और बहुत कुछ उनको याद थी और कैसे गाने को सजाना है ये वो जानते थे। तो उन्होंने हम लोगों को बचपन में इस तरीके की तालीम दी और सबसे बड़ी तालीम ये दी कि बेटा ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ पूरे दुनिया में एक ही घराना है, बनारस घराना। बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होके ओपनली सोचो कि संगीत ईश्वर का दिया हुआ वरदान है और ये प्रकृति से ही लिया गया स्वर है और हर घराने में वही सातों ही स्वर गाए जाते हैं, सारे गामा पधा निसा। तो घराना तो सिर्फ एक स्टाइल आप सिंगिंग के नाम पे हो गया कि पर्टिकुलर कुछ घराने में स्वर लगाओ, किसी घराने में तानबाजी ज्यादा हुआ, किसी घराने में बड़ा ललंत बेलंत के साथ गाना हुआ। तो अगर तुम उसको, मैं कहूंगा, मेरे पिताजी कहते थे कि मैं कहूंगा वो एकांकीपन है और गाना अपना ऐसा बनाओ कि बगीचे की तरह रहे, गुलदस्ता बनाओ, ना कि सिर्फ गुलाब का ब्रंच लेके घूम रहे हो, ना कि सिर्फ रजनीगंधा लेके घूम रहे हो, तो तुम्हारे बगीचे में हर तरह के फूल लगे हो और वो कहीं से भी तुमको प्राप्त होता है। किसी भी बड़े विद्वान को सुन के तुम उनसे अगर प्रभावित होते हो तो वहां से लेने में कोई गुरेज मत करना। तो जब इतना ओपन हो गए हम लोग और उनकी तालीम में यही विशेषता थी कि 2 से 2.5 घंटा हम लोग को समझाते थे गाना और उसके बाद में करीब करीब 1.5 से 2 घंटा वो लेक्चर देते थे। पुराने हमारे बनारस घराने के जो दिग्गज कलाकार हुए उनके विषय में बताना या उस जमाने के जो बड़े लोग हुए उनके बारे में बताना और उनका व्यक्तित्व का पूरा विजन कराते थे हम लोगों को कि फैयाज खान साहब थे तो ऐसी टोपी पहनते थे, ऐसा मोश था उनका,
1: मेडल लगा के
0: सुरमा लगा के वो बैठते थे। तो हर व्यक्ति का एक विजन कराना, दर्शन कराना, भाई रामदास जी थे बेटा ऐसी पगड़ी बांधे हुए, यहाँ पे हीरा चमक रहा है और ऐसे गाते थे जैसे लगता था कि क्या हो रहा है,
1: कहीं कहीं महाराजा लगते थे।
0: तो ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष हुए तो उनके हर बड़े कलाकारों के बारे में वो निश्चित रूप से हम लोगों को दर्शन कराते थे और उसी का नतीजा ये है कि हमारे हृदय में सब महान कलाकार वास करते हैं क्योंकि हम उनको अपने पूजा में उनको सम्मिलित रखते हैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात।
0: तो इस तरीके से हम लोगों का गाने का शिक्षा शुरू हुआ, अहंकार नहीं आने दिए कभी, धरती पर रहो हमेशा, सब कुछ करने के बाद होश में रहो, धरती से पैर जुड़ा रहे। ऐसा नहीं है कि बड़े भारी सेलिब्रिटी हो गए, पंडित राजन साजन मिश्रा कहलाने लगे, पद्म भूषण अवार्ड मिल गया या कोई भी अवार्ड मिल गया, तो उड़ना मत बेटा, धरती पर रहना और किसी का बददुआ मत लेना, दुआ लेना सबसे। तो ईश्वर की कृपा से हमारे जितने बड़े कलाकार हुए सब लोगों ने हम लोगों को दुआ दिया। अब मजे की बात यह है कि जितने छोटे हैं वो भी हमारे लिए बेस्ट विशेष रखते हैं, उनका भी प्रेम है और वो हमेशा मुंह पीछे पेड़ के पीछे भी यही बोलते हैं कि यार क्या भैया लोग हैं, कितना हम लोगों को प्यार देते हैं, हम इतने छोटे हैं फिर भी वो हमको भाई बोलते हैं। तो आप अगर दुआ लेते हैं तो ये अम्ब्रेला का काम करता है, छतरी का
1: जी।
0: कोई अगर आपका दुश्मन है, कोई आपको मारना चाहता है तो उस छतरी पे ही पत्थर टकरा के गिर जाएगा, हमको नहीं लगेगा।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो ढेर सारे कलाकारों के बीच उठता बैठता हूँ, मिलता हूँ
0: जरूर,
1: और कभी भी आप दोनों भाइयों के लिए या आपके बच्चों के लिए किसी से भी मैंने कुछ खिलाफ नहीं सुना, शिकायत नहीं सुनी।
0: ये ऊपर वाले की और हमारे माता पिता चाचा चाची की आशीर्वाद है और सब शुभचिंतकों का प्यार है।
1: सहीन जी, फिर आपको हम पीछे की ओर ले चलते हैं।
0: जी जी जी।
1: कुछ याद आता है मंच पर पहली आमद आपकी कब हुई, किस उम्र में, कहाँ?
0: देखिए बनारस में एक मंदिरों की परंपरा, आप भी बनारस से हैं, आप वाकिफ हैं, तो वहाँ बड़े सारे मंदिर हैं जहाँ अक्सर श्रृंगार हुआ करता था ठाकुर जी का। तो सोमवार का दिन है तो पुराने विश्वनाथ जी में जलसा होता था सत्यनारायण मंदिर के पास में, और कभी मंगलवार है तो बजरंग बली के दरबार में हो रहा है, दुर्गा जी का मंदिर है बहुत फेमस वहाँ होता था, एक गणेश मंदिर पे होता था हमारे पड़ोस में ही, एक नरसिंह चौतरा करके हुआ करता था मंदिर वहाँ होता था। तो सबसे पहली हाजिरी जो होश की है वो मेरी उम्र रही होगी करीब 7 साल और भैया की 11-12 साल। तो उस समय नरसिंह चौतरा पे घर के पास में

0: में से मैदागिन के पास में था, तो वहां हम लोग जाते थे। और उस जमाने में एक नियम था कि छोटे बच्चों की हाजिरी पहले होगी, फिर उसके बाद उनसे जो सीनियर है वो गाते थे, फिर उसके बाद में लास्ट में जो मोस्ट सीनियर होते थे वो गाते थे। तो एक तो सबको सुनने का अवसर मिलता था, और दूसरी बात यह है कि वहां पे गाने बजाने के बाद में हम लोगों को पूरी सब्जी हलवा सब देसी घी का खाने को मिलता था, और फिर 5 रुपए जो है वो हम लोगों को दक्षिणा के रूप में मिलता था। तो 5 रुपए का बड़ा भारी महत्व था
1: उस जमाने में।
0: हाँ जी, ये 64-65 की बात बता रहा हूँ। तो उस 5 आने का हम लोग 5 रुपए का बड़ा प्लानिंग करते थे कि पतंग ले आएंगे, कचौड़ी खाएंगे, ये खाएंगे, 5 रुपया चलेगा हमारा 10 दिन। तो ऐसे प्लानिंग करते थे, तो उसमें जाते थे और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते थे। फिर उसके बाद 1967 या 68 में हम लोग संकट मोचन मंदिर, जो कि वहां बहुत बड़ा जलसा होता है, उसमें गाने का अवसर मिला। उस समय मेरी आयु थी 11 साल की और मेरे से 5 वर्ष बड़े हैं भैया,
1: 16 साल
0: की उम्र थी उनकी। तो उस समय थोड़ा थोड़ा चर्चा शुरू हो गया था बनारस में कि राजन साजन कुछ कर रहे हैं और एक उम्मीद बन रही है। तो भगवान की कृपा से बनारस के जितने बड़े बड़े विद्वान थे, पंडित हरिशंकर मिश्र जी, पंडित श्री चंद्र मिश्र जी, ऐसे बड़े कलाकार, और अपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो महान कलाकार थे, पंडित लालमणि मिश्र जी, पंडित गंगराडे जी, राजभान सिंह जी, मतलब सभी कलाकार उस कार्यक्रम में आए और हम लोगों का गायन हुआ। करीब 1.5 घंटा हम लोग 1.25 घंटा 1.5 घंटा गाए, और उसके बाद उन लोगों ने बहुत प्रशंसा की, आशीर्वाद दिया, और उन्होंने कहा कि अब पीछे मुड़ के मत देखना, अब आगे आगे ही चलना है, और जितना परिश्रम करेंगे उतना फल अच्छा मिलेगा। तो वो दुआ लेके हम लोग आगे बढ़े। फिर 70 में इंटरनेशनल लायंस क्लब का एक सम्मेलन हुआ बनारस में, जिसमें उस्ताद अली अकबर खान साहब, पंडित किशन महाराज जी और हम लोगों का गाना।
1: वाह,
0: तो ये अवसर मिला नागरी नाटक मंडली में गाने का। तो वो पूरा खचा खच भरा था, हम लोगों ने गाया। अली अकबर खान साहब का पहली बार वहीं पे आशीर्वाद मिला। पंडित किशन महाराज जी तो हमेशा हमारे अपने थे, तो वो देते ही थे आशीर्वाद। तो ऐसे धीरे धीरे शुरुआत हुई, और फिर 1972 में भैया अपना एमए कर लिए सोशियोलॉजी से, पंडित राजन मिश्रा जी, तो दिल्ली आ गए। दिल्ली में हमारे चाचा जी पंडित गोपाल मिश्रा जी उस समय यही निवास कर रहे थे। तो 72 में आ गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपना प्रोफेशन संगीत नहीं बनाएंगे, हॉबी की तरह रखेंगे और इसको करेंगे। तो फिर चाचा जी ने कहा फिर क्या करना है, बोले मैं जॉब चाहता हूं और उसके साथ साथ संगीत की साधना करूंगा, और जो बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम होगा उसमें जाया आया करेंगे। ऐसे करके उन्होंने एक जॉब लिया डीसीएम दिल्ली क्लॉथ मिल में, ऑफिसर ट्रेनी बने वो, और 6 महीना हुआ था, 1973 आ गया। तो सदगुरु जगजीत सिंह जी नामधारी संप्रदाय के, उनका यहाँ नामधारी फेस्टिवल चल रहा था। तो बेसिकली चाचा जी को आइटम बताने के लिए गुरुदेव सिंह जी सर्वद्वादक हैं, वो आए थे। तो उन्होंने देखा कि वहां सुरमंडल भी पड़ा हुआ खुला हुआ, तो उन्होंने कहा क्या पंडित जी आजकल आप सुरमंडल बजा के सारंगी बजाते हैं? बोले नहीं यार, मेरे बेटे का है। अच्छा, बेटे भी हैं आपके? बोले हाँ, राजन इधर आओ। तो मिलवाया, तो गुरुदेव सिंह जी ने कहा कि राजन जी आप क्या देसी गाते हैं? भैया बोले हाँ, क्यों नहीं गाते, मेरा बड़ा फेवरेट है। तो राग देसी उन्होंने सुना और वो इतने मोहित हुए कि अपने सदगुरु जी के पास जाके बोले कि सदगुरु आपसे एक प्रार्थना है, प्रोग्राम तो सब हो गया है, डिसाइडेड हो गया है, 3 दिन का फेस्टिवल, सारे आर्टिस्ट बुक हो चुके हैं, लेकिन एक कलाकार को आपको रखना है। तो बोले जगह कहाँ है? बोले कहीं भी 10-10, 15-15 मिनट कटिंग करेंगे, लेकिन उनको आपको सुनना है। इतना प्रेशराइज कर दिया सदगुरु को। तो उन्होंने कहा ठीक है। और जब राजन भैया अकेले यहाँ थे 73 में, मैं उस समय बीए कर रहा था, सेकंड ईयर था मेरा, तो गाना सुनने के बाद तो अवाक रह गए सदगुरु जी, और उनको पता लगा कि अभी ये ऑफिसर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अपने पास बुलाए और बुला के उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं? बोले अभी तो जॉब कर रहा हूँ।

0: ऑफिसर ट्रेनिंग कर रहा हूं डीसीएम क्लॉथ मिल में, तो बोले मोहल्ले का असर पड़ गया है। बोले हुजूर मैं समझा नहीं। बोले भाई आप कबीर चौरा के मोहल्ले से आए हैं, एक जुलाहे का जो कार्य कबीर जी का, वो कार्य आप डीसीएम मिल में कर रहे हैं, अब आप कृपया इसको बंद कर दीजिए और टोटल फोकस हो जाइए। तो एक संत के मुंह से ये वाणी सुन के भैया भी बोले कि ठीक है, और गाना भी ऐसा हुआ कि हेडलाइन बने पूरे फेस्टिवल का। राजीव मिश्रा जी अभी भी मेरे पास में कटिंग्स हैं, तो फेस्टिवल हेड बन गए। उसमें बड़े बड़े कलाकार थे, भीमसेन जी, किशोरी जी, नसीर अहमद खान साहब, सभी लोग थे, कोई ऐसा छोटा नहीं था। तो एक उनको भी उत्साह मिला। फिर उन्होंने कहा कि हुजूर वैसे तो हम अपने भाई के साथ गाते हैं, तो बोले नेक्स्ट ईयर। तो 73 में यही लकली हमारा ऑडिशन भी हुआ, 73 में हम लोगों को ए ग्रेड भी मिला ईश्वर की दया से। उस समय लाइव होता था
1: जी,
0: तो 2 नंबर में पर्दा लग जाता था, और ऑडिशन में बैठे हुए थे दिलीप चंद बेदी जी, सुमति मुटाटकर जी, ऐसे ऐसे दिग्गज लोग, जवाहरलाल मट्टू जी, माधुरी मट्टू जी, विनय चंद मौदगल जी। तो ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से अच्छा हो गया, वो लोग खुश हो गए,
1: सीधे ए ग्रेड
0: मिला। अब उसकी भी कहानी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हम आ गए, तो साहब जो पहला कार्यक्रम मिला, लकली हम लोगों को रात को 10 से 11 का मिला, तो 10 से 11 प्रोग्राम हम लोग आगे कर रहे थे, एकदम नए नए आए थे, यहाँ भी बड़े लोग उत्सुक थे कि ये कौन आ गए भाई, कहाँ से आ गए। तो खैर बड़े सारे बुजुर्गवार थे, साबरी खां थे और अपने प्रेम बल्लभ जी थे,
1: अच्छा तबले पे
0: थे, मणि प्रसाद जी थे, बहुत लोग थे, तो सब लोग बड़ा आशीर्वाद दिए, हम लोग गाए। तो जब ड्यूटी रूम में पहुंचे, तो ड्यूटी रूम से चेक लेना था, तो वहां पर ड्यूटी रूम वाले ने कहा कि वो आप लोगों की उम्र कितनी है। तो मैं 17-17.5 साल का था, 23 साल के करीब भैया थे। तो नीचे ऊपर देख रहा है, तो भैया बोले उम्र पूछने की क्या जरूरत है। बोले नहीं, डीजी साहब, डायरेक्टर जनरल साहब का फोन आया था कि उनसे पूछो और मुझे बात करवाओ। तो भैया बोले अब तो 11:15 बज रहा है इस समय। बोले नहीं वो साहब मिलना है आप लोगों को, आप बात करिए, मिला दिए। तो उनको विश्वास नहीं हुआ हम लोगों की उम्र पे, तो दूसरे दिन बुलाए, वो सेन साहब थे उस समय।
1: अच्छा,
0: हम लोग गए साहब उनके ऑफिस में, तो उसे नमस्कार किए, तो नीचे ऊपर देखे जा रहे हैं दोनों भाइयों को, बैठे फिर भी जैसे पूरा सर्च कर रहे हैं।
1: हाँ, हाँ।
0: तो उन्होंने देखते हुए कहा कि आप लोग इतनी कम उम्र में, और ये आज 40 से 50 साल का उम्र का गाना गा रहे हैं, इसीलिए मुझे बुलाना पड़ा, क्या स्टोरी है। देखिए आपका डेस्टिनेशन कैसे बनता है।
1: बिल्कुल,
0: आकाशवाणी भवन में हम लोग डायरेक्टर जनरल साहब के साथ बैठ के ये बातें सुन रहे हैं, कॉफी पिलाई जा रही है। फिर उन्होंने अचानक अपने पर्सनल जो उनके पीए थे कपूर साहब, उनको बोले कपूर साहब देखिए बृहस्पति जी हैं, आचार्य बृहस्पति जी। तो वो गए तो टेबल पे नहीं थे, तो बोले साहब वो तो नहीं है। बोले अच्छा, वो मंगलवार से कार्यक्रम शुरू हुआ है, जरा रजिस्टर ले आइए। रजिस्टर लाए तो अपना 8-10 मंगलवार तो सब आर्टिस्टों के नाम से बुक था,
1: नेशनल प्रोग्राम का रास्ता बन रहा है।
0: हाँ, जूनियर नेशनल प्रोग्राम उसको बोलते थे मंगलवार से। अब देखिए कहानी, तो वो वहां से जाके मंगलवार से का रजिस्टर था उठा लाए, आचार्य बृहस्पति जी थे नहीं, तो ले आए। तो बोले कि देखिए कौन सा मंगलवार खाली है, तो शायद 4-3 महीने के बाद में एक मंगलवार खाली देखा, तो बोले सर ये खाली है। तो बोले उसमें इन लोगों का नाम लिख दीजिए और एक इनिशियल मेरे से ले लीजिए। ले लिए साहब, अब डायरेक्टर जनरल की बात है। बोले आप जाके वहां रख दीजिए, और अगर आचार्य बृहस्पति जी हूं तो बता दीजिएगा। तो कपूर साहब जब गए और रजिस्टर रख के मुड़ रहे थे, तब तक आचार्य बृहस्पति जी का क्या पर्सनैलिटी था, वो आए, क्या बात है कपूर, कैसे आना हुआ। बोले सर वो सर ने रजिस्टर मंगवाया था मंगलवार से, तो मंगलवार से कार्यक्रम के लिए रजिस्टर मंगाया था। अच्छा, आर्टिस्ट कौन है। बोले अभी पहला कार्यक्रम किए हैं और सर इतना खुश हो गए कि मंगलवार से दे रहे हैं, ये कौन सी बात हुई। बृहस्पति जी आ गए कि सर ये क्या बात है, मतलब अभी पहली बार गाए हैं ये लोग, इनको आप मंगलवार से दे रहे हैं। तो बोले भाई हमको गाना अच्छा लगा, हम दे दिए, हमारा भी तो कुछ अधिकार है यहाँ।
1: बिल्कुल,
0: बोले नहीं अधिकार तो है ही है, लेकिन सर एक ही बार के गाने के बाद आप अब उनको मंगल

0: वार्षिक दे रहे हैं। बोले आप सुन लीजिएगा, आपको नहीं अच्छा लगेगा रिकॉर्डिंग मत ब्रॉडकास्ट करिएगा। बोले नहीं नहीं अब तो दे दिए करना ही है। तो ऐसे मंगल वार्षिक का रास्ता खुला, फिर उसके बाद नेशनल प्रोग्राम मिला और फिर आकाशवाणी का हम लोगों के जीवन पे बहुत बड़ा असर रहा। क्योंकि आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ कोई गॉडफादर नहीं था।
1: बिल्कुल,
0: हमारे चाचा जी इतने बड़े लीजेंड सारंगी वादक थे, दुनिया जानती थी, लेकिन वो अपने मुंह से किसी से नहीं कहते थे कि मेरे बच्चे हैं इनको गवाइए। वो बोलते थे कि इसकी जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे साथ बाबा विश्वनाथ है, तुम्हारे साथ तुम्हारी गुरु परंपरा है, उसको लेके जो करना है करो। इवन रेडियो में भी नहीं आए थे ऑडिशन दिलवाने। तो ऐसी यात्रा शुरू हुई और उस जमाने में चेन बुकिंग हुआ करती थी रेडियो की। हम लोगों को पैसे की भी जरूरत थी। तो पहला कॉन्सर्ट हम लोगों को पूरा गुवाहाटी क्षेत्र इधर नॉर्थ ईस्ट का मिला। 16 कॉन्सर्ट हम लोग उस समय गाए थे और ये बता रहा हूं 74 की बात है। और 16 कॉन्सर्ट में जब हम लोगों को गुवाहाटी तक तो ट्रेन से गए, गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ जाना था जो छोटा फ्लाइट होता है, बॉम्बर, बॉम्बर में से जाना था। तो हमारे साथ पंडित मिठूलाल मिश्र जी थे हारमोनियम में और अपने बल्लू खां वारसी जी थे तबले में। यहां से तो हम लोग साहब बॉम्बर में बैठे और जैसे ही बैठे वैसे ही अखबार रखा था तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है ना कि पहली बार प्लेन में बैठे तो हर चीज देख रहे हैं, ये है वो है। तो पेपर उठाए तो देख रहे हैं कि उसमें एयर इंडिया का फ्लाइट जो है बांद्रा में घुस रहा है पानी में, एक्सीडेंट हुआ था, मेजर एक्सीडेंट। अब तो देखते ही पहली बार बैठे सिर मुड़ाए ओले पड़े। तो खैर संकट मोचन भगवान का चालीसा शुरू हो गया जब तक यात्रा पूरी नहीं हुई ऐसे ही अपना। तो वहां से फर्स्ट जीवन में पहली बार वहां से यात्रा शुरू हुई। फिर तो धीरे धीरे
1: बनारस घराने के विषय में भी बताइए, आपका ताल्लुक इस घराने से है?
0: नहीं, बनारस घराना तो देखिए ताल्लुक तो है ही है। हमने अपने पहले ही थोड़े से उसमें कहा कि हम जरूर बनारस घराने को बिलोंग करते हैं, लेकिन हम सब घराने को बहुत अहमियत देते हैं। हर घराने की अपनी विशेषता है। बनारस घराने में एक चीज की जरूर ये विशेषता रही है कि गायन का जो शब्द है, जो उसका जो लिरिक्स है, उसको बड़ा स्पष्ट गाने का, ताकि लोग उस भाव से जुड़ जाएं। और दूसरा ये था कि लड़ंत गड़ंत उड़ंत,
1: अच्छा
0: लड़के भी गाओ, गड़े हुए में भी गाओ और उड़ो भी। तो वहां का उपज का जो एक प्रचलन रहा है वो कोई बंधा हुआ नहीं रहता है। जो मन में आ गया, जो समय पे आ गया, वही अपना उपज हो गया
1: जी।
0: तो बनारस घराने की एक बड़ी भारी ये विशेषता रही। और शब्दों को प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। स्वर के प्रति भी आप उतने ही चैतन्य रहे जितना लय के प्रति है। तो बहुत सारे लोग हुए, विद्वान लोग हुए।
1: आपने शुरू से ही अपने बड़े भाई पंडित राजन मिश्र जी के साथ गाना शुरू किया
0: जी।
1: पिछले 2 वर्षों में कोरोना ने हमसे बहुत कुछ छीना है।
0: बिल्कुल।
1: और उसने पंडित राजन मिश्र जैसे कलाकार को भी हमसे छीन लिया।
0: बिल्कुल।
1: इस समय आप अपने बेटे स्वरांश के साथ गा रहे हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपका कुछ और हो सकता है
0: जी,
1: कि आप जब उनके साथ गाते थे तो कार्यक्रम की बागडोर उनके हाथ में होती थी।
0: बिल्कुल।
1: और अभी जब आप स्वरांश के साथ गा रहे हैं तो कार्यक्रम की बागडोर आपके हाथों में है।
0: सब ये उनका आशीर्वाद है।
1: कैसा अनुभव करते हैं?
0: देखिए, जिसके साथ हम 57 ईयर स्टेज पर शेयर किए, 57 साल दोनों भाई हम लोगों ने शेयर किए, तो उसकी कमी तो कहीं से पूरी नहीं हो सकती है। और रहा बात हमारे बेटे स्वरांश का, तो इनका भी फील्ड एक अलहदा फील्ड के ये थे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे घर में 2 बच्चे गाते हैं,
1: रितेश
0: रजनीश मिश्रा। तो ये था कि भाई अच्छा ये बड़े स्वच्छंद हैं और हमारे बड़े भैया के बहुत प्रिय थे, क्योंकि उनसे ये खुल के बात करते थे। हम लोग तो थोड़ा संकोच करते थे, लेकिन छोटे होने के नाते उनके बड़े लाडले थे। तो उनके गुजरने के बाद में ऐसे हमने कहा कि देखो बड़े पापा गुजर गए हैं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। वो हमेशा कहते थे कि यार वो भी करो वो भी करो। तो जी जी जी पापा मैं देखूंगा। तब तक स्पीक मैके का प्रोग्राम आ गया। हम 5 महीना से गला नहीं लगाए थे, हम और बेटा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आपको गाना ही है। तो खैर हम लोगों ने गाया दोनों।

0: और लोगों ने अप्रिशिएट किया, तब से हमने कहा कि चलो बैठो हमारे साथ गाओ, हमको भी थोड़ा सा वो लगेगा कि नहीं कोई है हमारे साथ में बैठा हुआ। और अब करीब अभी हम लोग 10-12 कार्यक्रम कर चुके हैं, तो आप सबसे बस यही है हमारे जितने शुभचिंतक हैं कि वो सब उनको भी दुआ दें, हमको भी दुआ दें कि हम उस परंपरा को जीवित रख सकें।
1: सजन जी, इन 2 वर्षों में कोरोना ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है
0: जी,
1: और ऑनलाइन म्यूजिक एजुकेशन, ऑनलाइन प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक साजों का उपयोग, ये सब शुरू हो गया है
0: जी।
1: एक क्लासिकल म्यूजिशियन होने के नाते आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, बहुत संक्षिप्त में?
0: देखिए, ये मजबूरी है, मजबूरी बस ये सब करना पड़ रहा है गुरु को भी और शिष्य को भी, जबकि इस संगीत के लिए आपको अपने गुरु के सानिध्य में ही बैठ के, क्योंकि उस समय जो गुरु का एक्सप्रेशन है, भाव है, उनको अगर आप रीड नहीं कर पाए तो आप ये ऑनलाइन से आप उस चीज को रीड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गुरु का सानिध्य, अब देखिए भगवान के दया से कोविड खत्म हो गया है, और जो शिष्य ऑनलाइन थे उनको चाहिए कि वो अपने गुरु के पास आवे, गुरु का आशीर्वाद लें, क्योंकि सामने से जो बारीकियां समझे जा सकती हैं, जो त्रुटियां हैं उनको हटाई जा सकती है, वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता है, संभव नहीं।
1: सजन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इसकी शोभा बढ़ाई, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। आज घड़ी की सुई कुछ ज्यादा ही तेजी से चल रही है
0: जी।
1: मैं आपको विदा कहूं, उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक म्यूजिकल नोट्स के साथ आप इस कार्यक्रम को विराम दें
0: जी।
1: मैं इन शब्दों के साथ विदा लेता हूं। चमन तुझसे इबारत है, बहारें तुझसे जिंदा हैं, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। और अब माइक आपके हवाले, एक म्यूजिकल नोट्स।

रूबरू प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे पंडित साजन मिश्रा के साथ विजय शंकर मिश्रा की एक गुफ्तगु। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। पेश है मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत कुछ फिल्मी नगमें।

आशु भोसले की आवाज में मेरे सनम फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे। हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफीक को सुनिए, फिल्म है आन मिलो सजना।

0: इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। लीजिए, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरें आज जारी हैं। अब सुनिए ड्रामा, उनवान है सफेद खून।
1: आकाशवाणी है सफेद खून। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है स्वर्गीय आगा हश्र कश्मीरी के 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनके प्रसिद्ध मंच नाटक का रेडियो नाट्य रूपांतर। रेडियो नाट्य रूपांतर श्री सत्येंद्र शरत ने किया है। तो सुनिए नाटक सफेद खून।

चाहे बे फरमान, चैन चाहे खाकान, तीनों शहजादियों महापारा दिलारा जारा और वजीर अस्सलाम के साथ शाही दरबार में रौनक अफरोज हो रहे हैं।

0: नादानी है।
1: दिल का हाल इंसान की गुफ्तगू से जाना जाता है।
0: इत्र अत्तार के कहने से नहीं बल्कि अपनी खुशबू से पहचाना जाता है।
1: छोड़ दे ये जिद,
0: कभी छूटी नहीं।
1: बेअदब है तू,
0: मगर छूटी नहीं।
1: नुकसान उठाएगी,
0: मेरी बारी ताला है।
1: मैं कुछ ना दूंगा तुझे,
0: खुदा देने वाला है।
1: अच्छा, अगर तू मेरी दौलत और सल्तनत को लापरवाही की ठोकर मारती है तो जरूर को दौलत समझ, जिसे सच्चाई और इंसान के नाम से पुकारती है। ओ मगरूर और सरकश लड़की, जा दूर हो, खुदा तुझे गारत करे। आज से मैं तुझको और तेरी मोहब्बत दोनों को छोड़ता हूँ, दोनों से रिश्ताए उल्फत तोड़ता हूँ। ना तू मुझे अपना बाप समझना और ना मैं तुझे अपनी बेटी जानूंगा।
2: बस जहां पना बस।
1: वजीर अरसलान खबरदार, इधर आओ। महापारा दिलारा, आज से इस वक्त से ये दौलत ये सल्तनत सब तुम्हारी है। अब हमें ना इज्जत की परवाह है ना सल्तनत की चाह, सिर्फ चंद दिन जिंदगी के गुजारने हैं। उसके लिए ये इंतजाम करूंगा कि अपने सरदारों के साथ एक माह तेरे घर महापारा और एक माह दिलारा तेरे मकान पर कायम करूंगा।
3: हुजूर, इंसान को चाहिए कि महज गुस्से से ही नहीं जरा अकल से भी काम ले।
1: इससे मुराद?
3: हुजूर, आपका ये इरादा जुल्म नाहक है। अगर आप सल्तनत लुटाना ही चाहते हैं तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले छोटी साहबजादी का हक है।
1: अरसलान, अगर हमेशा के लिए चुप ना रहना चाहते हो तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ।
3: खामोश? क्या कहा ए सरताज, खामोश नहीं, चापलूसी का शैतान आपको तबाही के जहन्नुम की तरफ धकेले। और ये गुलाम वफादार इधार वफादारी से खामोश हो, लानत है इस दिल पर, न चुप है ना ये हंस तक चुप रहेगा। यही कह रहा है, यही फिर कहेगा।
1: क्या कह रहा है तुम्हारा दिल?
3: यही कि आप अपने हक में जफा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं।
1: अरसलान, तू गुस्ताख है
3: मगर खुशामद बाज नहीं।
1: तू सुखन परवर है
3: मगर सुखन साज नहीं।
1: हुज्जती
3: मगर रास्त गुफ्तार।
1: अहमक
3: मगर आपसे ज्यादा होशियार।
1: चल दफा हो नहजार।
3: जैसा हुक्म आ गया।

जुल्म, दगा, फरेब, तबाही, वीरानी, अफसोस, इतना अकलमंद बादशाह और इतनी बड़ी नादानी, जारा जैसी सादतमंद बेटी और उससे ये बुराई, और अरसलान सा खैरख्वाह वजीर और उससे ये कजदाई। सिर्फ इतने कसूर पर एक ने खुशामद क्यों की और दूसरे की जबान पर सच बात क्यों आई?

0: क्या कहा अरसलान, एक अपना सा नौकर और मेरे बुलाने पर नहीं आता, मगर क्यों? इसकी वजह
1: नमक हरामी, शरारत, खुदगर्जी।
0: अफसोस, अपना नौकर मेरे सरदारों से तकरार करे? नहीं नहीं, एक शहंशाह अपने गुलाम को तलब फरमाए और वो हाजिर होने से इनकार कर दे।
1: शायद हुजूर को आज तक ये मालूम नहीं, आब दरिया में सरवरे जाम मिला होता नहीं, खार का गुल नाम रख लेने से गुल होता नहीं।
0: बस कर अरसलान, बस कर, वरना मैं गम और गुस्से से दीवाना हो जाऊंगा। अगर महापारा मस्त होकर दरिंदा बन गई है तो मैं आज इसकी सूरत पर लानत भेज कर अपनी दूसरी बेटी दिलारा की तरफ रवाना हो जाऊंगा।
1: हुजूर,
0: अरसलान, क्या तू ये समझता है कि महापारा की तरह दिलारा भी मुझे सदमा पहुंचाएगी?
1: हुजूर, माफ कीजिए, जब बड़ी से फैज ना पाया तो छोटी सी क्या उम्मीद बरा सकती है? तलवार और छुरी में सिर्फ कट का फर्क है, वरना गला काटने में दोनों की धार बक है।
0: कौन, महापारा?
2: आधा वर्ष है सरी राजा।
0: आज क्या दिल में आई जो अपने नरख्वादा मेहमान पर इनायत फरमाई?
2: मैं अफसोस करती हूँ कि इन ताने आमेज बातों का जवाब देने के लिए ना तो मेरे पास अल्फाज हैं और ना फुर्सत। असल बात ये है कि मुझे चंद अहम वजूद से इस महल की सख्त जरूरत है। अगर आप इन शाही महलों में से किसी और महल में तशरीफ ले जाते तो इस कनीज पर बड़ी इनायत फरमाते।
0: तो साफ क्यों नहीं कहती कि मैं कब्र में चला जाऊं?
2: मेरी मंशा हरगिज ये नहीं है। दरअसल बात ये है कि आपके सलाहकारों और नौकरों ने बर्दाश्त से ज्यादा सर उठा रखा है। कहीं मार, कहीं पीट, कहीं गुल, कहीं पुकार, गर्ज ये कि एक तूफान मचा रखा है। महल क्या अच्छा खासा भटियार खाना बना रखा है।
0: अजीब बात है,
2: न रोब, न अदब, न आदाब, एक से एक ज्यादा शोदा, एक से एक ज्यादा लुच्चा। बस जनाब बस, अब सब्र नहीं हो सकता।
0: बस बस बस, ये सब कुछ जुनून है, झूठ, गलत। मेरे तमाम नौकर शरीफ, नेक, तहजीब के आशिक और शराफत की जान है।
2: गजब खुदा का, ये नौकर सच्चे और मैं झूठी हुई जाती हूँ। इनके झूठ को सच और मेरे सच को झूठ यकीन फरमाते हैं।
0: महापारा, महापारा,
2: अगर कल तक ये तमाम नालायक नौकर यहाँ से न निकाल दिए जाएंगे तो याद रखिए कि जबरदस्ती और सख्ती से बदल दिए जाएंगे।
0: जबरदस्ती? अल्लाह माफ करे। लाओ हमारे घोड़े, लाओ सब खादिमों को बुलाओ। जा नाशुदरी, दूर हो जा, तुझे मैंने अपने से अलग किया। तू मेरी औलाद नहीं बल्कि वो सांप है जो सबसे पहले अपने पालने वालों को ही काटता है।
1: हुजूरे वाला,
0: हाय हाय, जारा जारा, मैं जरा से कसूर पर कि वो सच बात क्यों बोली। कुछ कम्बख में सच्ची जारा का हक छीन कर झूठ की पुतली महापारा पर कुर्बान कर डाला। अल्लाह, अगर तेरा यही इरादा है कि ये कम्बख्त फले फूले तो अपने बंदे पर रहम कर और इस मगरूर फिरौना को कारून की तरह इसी मकान में गाड़ दे, इसके सितम को उजाड़ दे, इसकी औलाद इसी की तरह इसको सताए, इसको जलाए।
2: अस्तगफरुल्लाह, अगर मैं इन बद्दुआओं से डरती तो शाहों की सरदारी छोड़कर इन गरीबों के पांव धोया करती।
0: अरे ओ मगरूर हस्ती, तू खुदा की बस्ती में बसती है और उसकी कुदरत और कहर पर हंसती है। लरस लरस लानत हो तुझ पर और तेरे घर पर। मैं शेरों से पना चाहूंगा लेकिन दरिंदों से ज्यादा सख्त दिल रखने वाली तेरे इस खाकी जहन्नुम में कभी ना आऊंगा।

मक्कारी, इन्हीं का नाम है दुनियादारी। सूरत में नूर, सीरत में नार, मुंह पे प्यार, बगल में तलवार, यही हैं वो औजार जिनसे बेवकूफ लोग डरते हैं और अक्लमंद अपने हरीफों की धज्जियां करते हैं। मेरा हक छीनने वाले शैतान भाई परवेज, तू हमारे अब्बा वजीर सादान की दौलत से तीन हिस्से पाए और मैं तेरा भाई बैरम सिर्फ चौथाई, सिर्फ इसलिए कि तू सरापा नेकी है और मैं मुजस्सम बुराई, तू पारसा है और मैं अय्याश, तू नेक है और मैं बदमाश। क्या इन बेहुदा वजूहात से मैं अपने हक का हिस्सा और अपनी सुनहरी उम्मीदों को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा? नहीं, कभी नहीं। हमारी बेवकूफ बूढ़ी

0: ना वजीर सरदान इधर ही तशरीफ ला रहे हैं। तुम्हें सुनाने के लिए कहता हूं। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जिस चश्मे के पानी से प्यास बुझाना, उसी में जहर मिलाना, नहीं। परवेज का फरिश्ता और ये शैतानी इरादा, बेटा और अपने बाप की जान लेने पर आमादा। तौबा तौबा, मेरा दिमाग चक्कर खाता है।
1: भाई तुम ये क्या बक रहा है?
2: क्या मेरा बेटा परवेज?
0: ए आसमां, ए जमीन, क्या कोई ऐसा नहीं जो मेरे अब्बा को खबरदार कर दे?
2: ये तुम कर सकते हो बैरम। ये तुम्हें करना होगा बैरम।
0: जनाब, मैं क्या कर सकता हूँ?
2: बैरम, क्या तू मेरा बेटा नहीं? जो कुछ इत्तेफाक से मैं अभी सुन चुका हूँ, इससे इनकार किया चाहता है? परवेज के साथ मिलकर तू भी मेरा शिकार किया चाहता है?
0: ओ परवेज, परवेज रहम, प्यारे अब्बा पर रहम।
2: तुम्हारे हाथ में ये खत किसका है बैरम?
0: परवेज, नहीं नहीं, मेरा
2: खत मुझे दो।
3: रात के 12 बजे जब जिंदगी की शोरिशें खौफनाक खामोशी से बदल जाती हैं, उस वक्त अगर तुम्हारी छुरी ने अन्ना को नींद में कत्ल किया, तो जिस कदर दौलत देने से मैं तुम्हें नफरत करता हूं, उतना ही प्यार करूंगा। या अल्लाह, ये कौन लिखता है? क्या मेरा दूसरा बेटा परवेज?
0: अब्बा, ये तहरीर मैंने भाई परवेज की मेज पर पाई है।
2: क्या?
0: मगर मुझे शक है कि यह किसी दुश्मन की कार्रवाई है।
2: क्या मैं परवेज का खत नहीं पहचानता? अफसोस बैरम, सद अफसोस, सद अफसोस।
0: हाँ जनाब, बेहद और बेशुमार अफसोस। वाह मियां बैरम, वाह, अब्बा को खूब उल्लू बनाया। लो, उल्लू गया और उसका पट्टा आ रहा है। आओ परवेज, आओ मेरे भाई परवेज।
4: भाई बैरम, तस्लीम।
0: कहो जाने बिरादर, क्या हाल है?
4: भाई बैरम, वालिद साहब हमसे खफा क्यों है?
0: तुमसे?
4: हाँ
0: भाई, तुमसे जो उन्हें नेकी और इज्जत की तरह प्यारे हो।
4: हाँ भाई, मुझसे अभी रास्ते में मुलाकात हुई, हम उन्हें सलाम करने लगे तो वो मुंह फेर कर अपने आप से ही फरमाने लगे, जमाना का जमाना ही बदजात है। अब बताइए भाई।
0: वाकई भाई परवेज, ये तो नाराजगी के आसार है, किसी दुश्मन ने कुछ उल्टा सीधा ना पढ़ाया हो।
4: हाँ।
0: आजकल तो खामखा लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं।
4: भाई बैरम, मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ कि वालिद की नाराजगी दूर करने की कोई तदबीर बताओ।
0: मत घबराओ परवेज, मत घबराओ, मुझ पर यकीन रखो। तुम्हारी खुशी के दिन को जो गम की तारीकी निकल गई है, उसे दो ही बातों में दोबारा मुनव्वर कर दूंगा।
4: है?
0: लो सुधारो। खुदा हाफिज।
4: खुदा हाफिज। खुदा आपको कामयाबी दे।
0: खुदा हाफिज।
4: खुदा हाफिज।
0: खुदा तुझे गर्क करे। वाह मियां बैरम, वाह, क्या उल्लू बाप और क्या उसका पट्टा, ये भाई पाया है। आज तक तो जितने पासे फेंके हैं, सब में 12 ही पाया है। अब एक रात का दांव बाकी है, पड़ गई चित तो बस एक हाथ में पट।

0: खेहरा ने हमारे आने की खबर पाई, ना किसी नौकर को भेजा, ना खुद पेशवाई को आई।
1: वाकई ये बर्ताव खिलाफ अदब है।
0: क्या वो नहीं आती या वो बगावत दिखाती है? जाओ उससे जाकर कहो कि बूढ़ा बाप अपनी प्यारी बेटी दिलारा को याद फरमाता है।
1: जो हुक्म आलिया।

0: मैं बहुत ही मसरूर हूँ कि अब्बा हुजूर ने कदम रंजा फरमाकर इस कफस खाने की इज्जत बढ़ाई। आप बाजी जान के पास से क्यों चले आए ये तो बताइए।
1: क्यों आया हूँ? किस्मत का जलाया हूँ, नसीब का सताया हूँ। कभी लोग मेरे पास फरियाद लाते थे, आज मैं तेरे पास फरियाद लाया हूँ। वो बाग जिसके रविश की है तू गुले लाला, वो शाख जिसने तुझे गोदियों में है पाला, उसको फूंक के जालिम ने खाक उड़ाई है, वो उड़ के घर तेरे फरियाद करने आई है।
0: क्या आपका इशारा मेरी बहन की तरफ है?
1: हाँ, उसी के दिए हुए रंज की तरफ है। वो मेरी गोद में पली मगर आस्तीन का सांप निकली।
0: जनाब जैसा फरमाते हैं मेरी बहन हरगिज ऐसी नहीं, आप जाइए वहीं।
1: दिलारा, क्या मैं महापारा के पास जाऊं और उससे गिड़गिड़ा कर कहूं कि बेटी मैं बूढ़ा हूं, लाचार हूं, सिर्फ सोने बैठने के लिए पनाह और रोटी का ख्वासगार हूं?
0: जनाब आपके लिए यही बेहतर है कि अक्ल को काम में लाइए और एक मर्तबा बहन के पास फिर जाइए।
1: दिलारा, तू उसके पास जाने को कहती है जिसने कलेजे को सांस की तरह डस लिया और दरिंदों की तरह नोच कर खा डाला। गजब आए सितम टूटे, फलक से आफतें बरसे, खुदा चाहे तो उसकी कब्र पर लानते बरसे।
0: खुदा बचाए, मैं समझती हूँ जो आप कभी खफा हो जाएंगे तो यूं ही मुझ पर भी लानतों के तीर बरसाएंगे।
1: नहीं नहीं नहीं दिलारा नहीं, मैं अपने होंठ सी लूंगा, जबान काट डालूंगा, मगर तुझ जैसी नेक लड़की के हक में कभी ऐसी बद्दुआ नहीं निकालूंगा।
0: बस कीजिए जनाब बस, आपकी बातें समझ में नहीं आती हैं। वो देखिए बाजी जान तशरीफ लाती हैं।
1: खुदा, मैं ये क्या देखता हूँ? तिलारा, इस महापारा से डर, ये औरत नहीं बल्कि वो शरारत का औजार है जिससे शैतान अपना मतलब निकालता है। इसके सीने में दिल नहीं बल्कि वो पत्थर है जिसपे ये गिरता है उसे पीस डालता है।
0: तो आपका मतलब ये है कि बहन को बहन से मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए?
1: हाँ, इसे देख, इसे जिसे मैंने जान की तरह पाला, दिन को रात और रात को दिन कर डाला। ये खुदा को भूली है, इतना भी नहीं जानती।
2: ये मेरा कसूर नहीं, सिर्फ आपका जोश और गजब।
1: बस बस बस बस, खुदा के वास्ते हम तो मुझे और पागल ना बना ना पा रहा। जा जी और मुझे भी जीने दे। अब मेरी जिंदगी अपनी कमबख्ती के दिन यही गुजारा करेगी, प्यारी बेटी दिलारा। तो अपने बूढ़े बाप और उसके 100 नौकरों का भार गवारा करेगी।
0: जनाब अव्वल तो आपको बहन के यहाँ जाने से फिजूल इनकार है, दूसरे जब मेरे 1000 नौकर मौजूद हों तो आपका 100 नौकर रखना बेकार है।
1: अच्छा तो मैं 50 से ही सब्र कर लूंगा।
0: ये भी ज्यादा है,
2: अगर सच पूछो तो एक की भी जरूरत नहीं।
1: ओ खुदा, अगर तेरी मर्जी इन लड़कियों के दिल को सख्त बना रही है तो मुझे सहारा दे। ओ नाखल्फ औरतों, क्या तुम ये समझती हो कि जालिम मजलूम को सताकर फल पाता है? नहीं नहीं, धोखा न खाओ, खुदा की लाठी बेआवाज है। मैं उसके पास अपनी फरियाद देकर जाऊंगा, मैं अपनी चीखों से उसके कहर को जगाऊंगा, मैं अपने दिल के टुकड़े कर उसे दिखाऊंगा।

0: परसो खूब चमको, हवा आग मिट्टी पाली, मेरी बेटियां इन सबको रिश्वत दे गई हैं, रिश्वत। ये सब मेरी बेटियों से मिल गए हैं।
1: हुजूर, ऐसी औलाद पर लानत है जिसके दिल में ऐसा जहरीला मादा हो जाता है।
0: ऐ शाही शान शौकत, तू इन तकलीफों को बर्दाश्त कर।
1: हुजूर, किसी पनाह की जगह चलिए।
0: ऐसी जगह तो सिर्फ कब्र है, मगर नहीं, कब्र में भी पनाह नहीं, वहां भी पहले हजारों मन खाक के नीचे दबाते हैं।
1: सब्र कीजिए आका, मेरे मालिक, मेरे शहंशाह, सब्र।
0: चुप चुप झूठे खुशामदी। इस मुफलिस फकीर को तू शहंशाह बताता है। इन झूठी तारीफों से मेरी बेटियों ने मुझे लूट लिया। क्या तू भी खुशामद कर मुझे लूटना चाहता है?
1: नहीं पनाह नहीं।
0: अरे अब मेरे पास है ही क्या? हाँ है, है। ये सड़ा हुआ चीथड़ा, चीथड़ा, ये भी ना बचाऊंगा। इसके बिना दुनिया में आया था, इसके बिना ही दुनिया से जाऊंगा। ले जा, ले जा, ये भी ले जा।
1: हुजूर, हुजूर, ये ना कीजिए। हुजूर, हुजूर।
2: या परवरदिगार, देखिए शहजादी, क्या ये सूरत किसी से देखी जा सकती है? क्या किसी नेक शख्स की ऐसी बदतर हालत आपके वहमो गुमान में आ सकती है?
3: अगर ये आंखें रही तो इस शख्स की इससे भी ज्यादा बदतर हालत देखूंगी।
2: ना फरमाइए, आप बेटी होकर ना फरमाइए। आपका फर्ज है खुद भी रहम खाएं और खुदा से भी रहम की दरख्वास्त करें।
3: ऐसे जिद्दी शख्स पर रहम करने की कोई जरूरत नहीं।
2: बड़े अफसोस की बात है कि दरख्त जिसमें ना इंसान की अक्ल है और ना किसी ने उसे मोहब्बत सिखाई है, फिर भी अपने बागवान के काम आता है, अपने फल उसको खिलाता है। मगर आप अपने बाप के साथ, जिसने आपको मां की तरह पाला, रात को दिन और दिन को रात कर डाला, उसके साथ जरा भी सलूक करने में खुश नहीं। अगर खुदा इन दरख्तों को जुबान दे दे तो क्या ये ना कहेंगे कि इंसान से बढ़कर एहसान को भूल जाने वाला मुहसिन कुछ कोई नहीं है?
3: वजीर सादान, अदब सीखो, इंसान बनो,
2: नेकी सीखो, मेहरबान बनो,
3: मेरा रुतबा जानो, जबान आराई ना करो,
2: अपने बाप का मर्तबा पहचानो, अपने पालने वाले से बुराई ना करो।
3: देखो, ये जान जाने का करीना है।
2: मालिक पर जान देना वफादारी का जीना है।
3: पछताना होगा,
2: दो जख्म जाना होगा।
3: ये गुस्ताखी,
2: ये बेरहमी,
3: अक्ल और ऐसी बदतर,
2: दिल और ऐसा पत्थर।
3: देखो सादान, ऐसे बेहुदा दिमाग रखने वाले के सर फौरन उड़ा दिए जाते हैं। अगर तुमने मेरा साथ न दिया तो उस चौराहे पर फांसी पाओगे जहां शहर के आवारा कुत्ते गोली से मार दिए जाते हैं।
2: मेरी जिंदगी उसी के लिए है और मेरी मौत भी उसी के लिए होगी, जब जालिम खंजर मेरा गला रेत रहा होगा, मेरे खून की हर धार उसी के कदमों की तरफ बह कर जाएगी, बह कर जाएगी, उसी तरफ बह कर जाएगी।
1: जनाब
3: बैरम, तुमने देखा?
2: मैं अफसोस करता हूँ।
3: देखो बैरम, अगर तुमने मेरे बाप की मुझसे सिफारिश की तो मैं तुमसे भी नाराज हो जाऊंगी।
2: है मेरे दिल की रोशनी, तू मुझसे अपनी मोहब्बत वापस न लेना। अगर तू अपना ये रोशन चेहरा उधर फेर लेगी तो मेरी खुशियों को फौरन गम की तारीकी घेर लेगी।
3: प्यारे बैरम, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। काश मेरे शौहर की जिंदगी पर मौत पटक पाती।
4: अभी आप सुन रहे थे आगा हश्र कश्मीरी की कहानी पर मबनी ड्रामा सफेद खून। कहानी को तरतीब दिया था जनाब सत्येंद्र शरत ने। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी। ये आकाशवाणी है। अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा सईदो बख्तियार आदिलोविच आज से भारत के सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शिद्दत

0: तेलंगाना पुलिस ने रियासत भर में बच्चा मजदूरी और बच्चों की ट्रैफिकिंग के खात्मे के मकसद से शुरू किए गए एक महीने तक चलने वाले ऑपरेशन मुस्कान 12 के तहत 6,307 बच्चों को बचा लिया है। ये कार्रवाई पिछले माह की पहली तारीख से 31 तारीख तक जारी रहेगी। इस कार्रवाई की क्यादत खवातीन के सेफ्टी विंग ने की, जिसके लिए उसने खवातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे, लेबर महकमे, सेहत के महकमे, बच्चों की बहबूद की कमेटियों, बच्चों के तहफ़ के जिला यूनिटों और रजाकार तंजीमों के साथ मिलकर काम किया। 124 सब डिवीजन टीमों के तकरीबन 620 पुलिस एहलकारों ने इसमें हिस्सा लिया। कवानीन और तरीकेकार के मुताबिक तरबियत हासिल करने के बाद टीमों ने उन मकामात पर छापे मारे जहां बच्चा मजदूरी आम है। यूरोपीय यूनियन, स्पेन और कुछ रुकन मुल्कों के दरमियान तनाजे के बाद मंगल को सियोता में माइग्रेशन बहरान से निपटने के लिए हंगामी मुजाकरात का इनकाद करेगी। मराकश से स्पेन के इलाके में 60,000 तारिकीन वतन के दाखिल होने के बाद यूरोपीय यूनियन के 22 ममालिक ने एक मरबूत रद्द अमल और मजबूत बैरूनी सरहदी कंट्रोल का मुतालबा किया है। स्पेन ने इटली की जानिब से अपने मुल्क के साथ यूरोपीय यूनियन की खुली सरहद के इंतजाम को मुअत्तल किए जाने के बाद इसकी तनकीद करते हुए इसे कुछ यूरोपीय हुकूमतों की तरफ से इख्तलाफ राय को बढ़ाने वाला रद्द अमल करार दिया है। इटली के इस इकदाम को फिनलैंड और डेनमार्क की हिमायत भी हासिल थी। हुकाम ने बताया कि 3 जुलाई को सियोता में दाखिल होने वाले तकरीबन तमाम तारिकीन वतन वापस हो चुके हैं, जबकि क्रॉसिंग के दौरान कम अज कम 67 अफराद हलाक हो गए। रूस की राजधानी मॉस्को के वस्ती इलाके में एक रेस्तरां में हुए बम धमाके से 3 अफराद हलाक जबकि 15 दीगर जख्मी हो गए। रूस की वजारत दाखिला के एक अहदेदार के हवाले से सरकारी मीडिया ने बताया कि यह धमाका कुदरिंसकाया स्क्वायर में वाकई एक इमारत में हुआ। भारत ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में तमगों की फहरिस्त में चौथे मकाम पर पहुंच गया है। उसने सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगों समेत कुल 39 तमगे जीते हैं। भारत के लिए ताजा तरीन तमगा गुलवीर सिंह ने हासिल किया। उन्होंने 5,000 मीटर की दौड़ में कांसे का तमगा जीता। मुक्केबाजी में भारत ने सोने के 7 और चांदी के 3 तमगे जीतकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा सईदो बख्तियार आदिलोविच आज से भारत के सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शिद्दत अख्तियार करने की धमकी दी है। ईरान ने अमरीका और इसराइल के अहम तवानाई बुनियादी ढांचों पर जवाबी हमले से खबरदार किया है। पेरू में नाजका शहर के नजदीक सयाहों को लेकर जा रहे तैयारे के हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए। यूरोपीय यूनियन स्पेन के सियोता में माइग्रेशन बहरान को हल करने के लिए मंगल को हंगामी मुजाकरात का इनेकाद करेगी। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत चौथे मकाम पर आ गया है। एक ही दिन में मुक्केबाजों ने रिकॉर्ड सोने के 7 तमगे जीते हैं, जिससे तमगों की तादाद बढ़कर 39 हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तयाब हैं। पेश है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

0: レソール
1: パワーネバリショール
0: あれババショールないソールソールソール

दूसरे आदमी फिल्म का नगमा आपने सुना मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, धरती फिल्म से।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम अभी जारी है, वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है मौलाना हिफ्जुर रहमान।
1: सन 1900 से 1947 तक हिन्दुस्तान में जद्दोजहद आजादी की अमली तहरीक में अकादिर दारुल उलूम देवबंद ने भी अहम खिदमात अंजाम दी हैं। यही वो इदारा है जिसकी कोख से शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना हिफ्जुर रहमान जैसी बेलौज शख्सियतों ने जन्म लिया और मोतीलाल नेहरू, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर हिन्दुस्तान को गुलामी से निजात दिलाने की कामयाब कोशिशें की। तारीख गवाह है कि हिन्दुस्तान को आजाद कराने में हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों ने बिला लिहाज मजहब मिल्लत दोष बदोश काम किया है। इन शख्सियतों में मौलाना हिफ्जुर रहमान का इसमें गिरानी कौम वतन के लिए बायस सद इफ्तिखार रहेगा। मौलाना का शुमार उन मुहिब्बान वतन में होता है जिन्होंने मुल्क और कौम की आजादी के लिए सर और धड़ की बाजी लगा दी।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये नगमा अभी अपने मजबूर फिल्म से सुना। अब सुनिए वारिस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का गाया हुआ।

0: और इस फिल्म के इस नगमे के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की आंध्र प्रदेश यात्रा और महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: शेखर जी, आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश के एक दिन के दौरे पर थे। आपसे हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में संक्षेप में जानना चाहेंगे जिनका उन्होंने उद्घाटन किया या शिलान्यास किया।
3: बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री की जो कार्यक्रम रहा, उन्होंने कम से कम 18,000 करोड़ की जो प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, लोकार्पण और देश को डेडिकेशन करने का आज कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री ने कई प्रोजेक्ट्स आज किए, उसमें सबसे बड़ा था विशाखापट्टनम का नया एयरपोर्ट जो भोगपुरम में है, जो विशाखापट्टनम के नजदीक विजयनगरम जिला में, उस प्रोजेक्ट का उन्होंने इनॉग्रेट किया। और साथ में एक विजन सामने रखा जो एक कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर का, आंध्र प्रदेश कोस्ट है उसका, और उसके साथ साथ जो बंदरगाह है छोटे बड़े उस साइड में विशाखापट्टनम से लेकर कृष्णापट्टनम, उसके आधुनिकीकरण का भी प्रोजेक्ट का उन्होंने आज ऑडिशन किया। और साथ में नए नए बंदरगाहों की भी बात आज पीएम ने किया कि मुलपेट और रामायपट्टनम करके, यानी पूरे जो ब्लू वाटर इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, जिसमें फिशिंग की डेवलपमेंट हो, आपके प्रॉन कल्चर, प्रॉन एक्सपोर्ट, ये सारी चीजों की उस एरिया का एक बड़ा आर्थिक डेवलपमेंट के लिए आज उन्होंने कार्यक्रम के उन्होंने आज हरी झंडी दिखाई है
2: जी। इसके अलावा भी कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने आज लॉन्च किए, पर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले सुनते हैं कि आंध्र प्रदेश में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इन परियोजनाओं के बारे में क्या कहा।
4: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े, इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
2: शेखर जी, अभी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने एयरपोर्ट की बात की, आप भी कह रहे थे कि उन्होंने विशाखापट्टनम के नजदीक भोगपुरम में एक एयरपोर्ट का आज उद्घाटन किया। उत्तरी आंध्र इलाके में औद्योगिक विकास, रोजगार पैदा करने और कुल मिलाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस एयरपोर्ट का क्या महत्व है।
3: जो उत्तर आंध्र प्रदेश है वो आदिवासी इलाके है ज्यादातर, और उस इलाके में इस तरह के एक नया एयरपोर्ट खोलना, उसके उद्घाटन होना, वो सारे पीछे जो इलाके हैं उस एरिया का बहुत बड़ा एक अवसर खुलेगा जो डेवलपमेंट के लिए। इस एयरपोर्ट का नाम भी उस क्रांतिकारी का नाम पे रखा है, अल्लूरी सीताराम राजू
2: जी।
3: आप सब जानते हैं अल्लूरी सीताराम राजू एक क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश साम्राज्य को विरोध किए थे, वहां पे उनके नाम पे एक बहुत बड़ा विद्रोह भी हुआ था 1922 पे, उसके बाद वो शहीद हो गए थे। उनके नाम पे रखा है क्योंकि अल्लूरी सीताराम राव आदिवासी के लिए बहुत काम किए, उनकी पीड़ा और उनके दर्द के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो इस नया एयरपोर्ट का वहां पे उनके नाम पे रखने का भी एक बड़ा मैसेज जाता है आदिवासी इलाके में
2: जी।
3: और वहां से विशाखापट्टनम जिला जो वहां से लेकर अरकू वैली करके जगह है जो आज किस्टर गाच जो है उस वहां पे है, ये वहां पे कोशिश किया है कि जो आदिवासी युवा है उनके नए अवसर देना, उनको एक नया लाइफ का एक स्कोप बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयत्न है।
2: सरकार ने उड़ान और कनेक्टिविटी पहल के तहत एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर दिया है। ये जो आज एयरपोर्ट उन्होंने उत्तरी आंध्र प्रदेश में जो इसका आज इनॉग्रेशन किया है, वो इस विजन में कैसे फिट बैठता है।
3: तो उड़ान का जो स्कीम है हम सब जानते हैं, एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम
2: जी,
3: ये 10 साल का स्कीम है। अभी उसका एक मॉडिफाइड स्कीम अभी लॉन्च हुआ है, अभी जुलाई से शुरू हुआ है। ये स्कीम 10 साल का है, यानी 26-27 से लेकर 2035-36 के बीच में कम से कम 23,000 करोड़ का ये बड़ा प्रोजेक्ट है कि जहां जहां एरोड्रोम जो है, जो ये पुराने काल का हो या नए काल हो, उसको एक एयरपोर्ट तरीके बना के कम से कम 100 एयरपोर्ट की कल्पना की गई है। आज तो जितने एयरपोर्ट है पहले से 10 साल में बहुत एयरपोर्ट बने, और भी 100 एयरपोर्ट बनाने की ये बात है ये। और इसमें आगे 8 साल में आप देखेंगे कि जो छोटे मोटे जो एयरफील्ड है, एरोड्रोम है, उसको डेवलप करके प्रॉपर एयरपोर्ट करने की, क्योंकि एयरपोर्ट का डेवलप करना मतलब वहां पे एक आर्थिक एक्टिविटी एक बड़ी बूस्ट मिलती है। और ये जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनके लिए क्या है, ऑपरेशन जारी रखना चाहिए, तभी जाके इनका ये होगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम है, साथ में हेलीपैड्स भी डेवलप हो रहे हैं
2: जी।
3: तो प्रधानमंत्री आज अगर इसकी बात किया है कि ये जो इनिशिएटिव है इससे क्या होगा, जो अति गरीब परिवार है उनका भी एक सपना पूरा कि वो भी कभी उड़ान जा सकते, वो भी फ्लाइट ले सकते हैं
2: जी जी।
3: और इस बात को प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन भी किया है कि किस तरह ये स्कीम जो सबसे गरीब है उनके तक विकास पहुंचाने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की एक आधारशिला भी रखी, और ये सुविधा पूरी होने पर हर साल लगभग 96 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगी। मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात का सर हम सप्लाई चेन पर साफ साफ देख रहे हैं, ऐसे में ये जो सेमीकंडक्टर सुविधा जिसका आज प्रधानमंत्री ने जिसकी आधारशिला रखी है, भारत को इस तेजी से महत्वपूर्ण होते हुए क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करने के लिए कितनी अहम है?
3: मतलब बहुत अहम है इसमें अनुभव जी, क्योंकि अभी अभी हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ने अभी गुजरात में हाल ही में उन्होंने 3रा सेमीकंडक्टर प्लांट खोला है। सेमीकंडक्टर जो है वो चिप्स है।

0: वैसा कोई सेक्टर नहीं है जहां चिप्स की जरूरत ना हो, अपने टेलीविजन से लेकर मोबाइल या आपके गाड़ी आपके कोई भी हो, हर चीज में चिप्स लगता है। और ये चिप्स ज्यादातर भारत की रिक्वायरमेंट के लिए इम्पोर्ट होता है, जैसे जापान, थाईलैंड, वियतनाम, इनके। अब भारत ने उनमें जाके भारत वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करने एक बड़ा प्लान रखा है, जिसमें प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जितना हम सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज ये करें, और इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, एक मिशन मोड पे इस पे काम हो रहा है। और सेमी कंडक्टर फैसिलिटीज जो अभी खोल रहे हैं उसमें टेस्टिंग फैसिलिटी भी है, और उसकी बनाने का भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये जो प्लान है, इसमें हमारी नौजवान जो है, ये नौजवान के लिए एक नया खोल रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर तो है ये जहां हम ज्यादातर फोकस सॉफ्टवेयर रहा, ये हार्डवेयर पार्ट के पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और अभी जब प्रधानमंत्री हाल में गांधीनगर के पास एक सेमी कंडक्टर की तीसरी फैक्ट्री जब उद्घाटन किए थे, तब उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट कमिट किया था उस प्लांट में, जो सेमी कंडक्टर प्लांट में पूरा भारत का वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव है, हर राज्य से हमारे नए यंग गर्ल्स एंड बॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, पूरी तालीम लेकर एक एडवांस एरिया है, क्योंकि छिप की जो टेक्नोलॉजी है कोई कंट्री आपसे शेयर नहीं करता
1: जी,
0: क्योंकि फ्रंटियर एरिया है, जिसमें भारत अपनी R&D जारी रखे, साथ में जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनके साथ टेक्नोलॉजिकल एक एक्सचेंज का भी प्रोग्राम है, जिसकी वजह से अभी प्रधानमंत्री मानते हैं कि जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वैसे सेमी कंडक्टर एक एरिया है जहां फ्रंटियर एरिया माना जाता है। और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत इस सेमी कंडक्टर फील्ड में न केवल आत्मनिर्भर बने लेकिन एक एक्सपोर्ट हब बन जाए।
1: जी, अपनी जनसभा के दौरान श्री मोदी ने भारत के युवाओं की प्रतिभा के बारे में भी बात की, चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आंध्र प्रदेश हमेशा भविष्य की सोच रखने वाला प्रदेश रहा है, सॉफ्टवेयर, आईटी और टेक सेक्टर में आंध्र के युवाओं ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है, और इसलिए सरकार यहां के टैलेंट को आंध्र प्रदेश की डेवलपमेंट पावर से जोड़ना चाहती है।
1: अभी जैसा हमने सुना प्रधानमंत्री ने युवाओं की प्रतिभा की बात की, उन्होंने ये भी कहा कि देश को अपने प्रतिभाशाली युवाओं से फायदा मिले, इसके लिए सरकार अब सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के टेक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो देश की युवा शक्ति और प्रतिभा का इस्तेमाल करने और उन्हें भारत की विकास यात्रा में शामिल करने के लिए केंद्र की, खासकर प्रधानमंत्री की ऐसी पहल को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, ये बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, ये जो आज की जो इंडिया है और कल की जो इंडिया होगी, ये दोनों इंडिया हमारे युवाओं के कंधे पर चल रहा है, और जितना युवा भारत जो यंग नेशन है उनकी जो टैलेंट्स को सामने लाने के लिए सरकार कई स्कीम्स, कई कार्यक्रम जारी रखी है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे युवाओं के अंदर ही नए नए एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं, जो जाके यूनिकॉर्न तक बना दिया है और विश्व भर में एक अपने नाम और पहचान भी बना लिया है। तो प्रधानमंत्री का यही है कि यूथ फ्यूचर यूथ का है, और भारत का फ्यूचर यूथ के ऊपर है, यूथ का विजन, यूथ का लीडरशिप, यूथ का डिसिप्लिन, सब कुछ इन पर निर्भर है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर का हमेशा एक रहा है कि यूथ पर फोकस रहे, उनको अवसर मिले और उनके टैलेंट डेवलप करने के लिए तो कार्यक्रम बने, ताकि सरकार की हेल्प भी रहेगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जो उनको आर्थिक मदद देकर अपने आप पैर में खड़े होके जो सरकार की इतनी स्कीम है उसका सबका फायदा उठाए।
1: आज उद्घाटन किया गया एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ा था। हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत के एनर्जी ट्रांजिशन और डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों में इस तरह के प्रोजेक्ट्स कैसे योगदान देंगे?
0: ये हमारे लिए क्लाइमेट जो मामला है, तो क्लाइमेट चैलेंज जो आ रहा है, भारत इसको एकदम सीधा मुकाबला कर रहे हैं। वो सोलार विजन हो या आपके जैसे हाइड्रोजन ट्रेन की अभी उद्घाटन हुई थी आपने देखा, तो हर फ्रंटियर एरिया, ये भी एक फ्रंटियर एरिया टेक्नोलॉजी है, भारत इसमें बहुत कोशिश कर रही है। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो बहुत पहले चल रहा है, लेकिन इस बार सरकार का जो एक स्कीम है कि हर घर एक अपने आप को अपने लिए भी ऊर्जा बनाए का एक जो स्कीम है, सोलर स्कीम, और बाकी जो बचा हुआ है उनके आप वो ग्रिड में वो दे सकते हैं, बेच सकते हैं। ये कार्यक्रम लेकर सरकार ने बहुत इसके कदम लिए है, बहुत स्टेट्स भी इस कार्यक्रम को आगे ले जा रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कार्बन जो इमिशन की फुटप्रिंट, देखिए भारत एक देश जो है डेवलपिंग कंट्री है, जब हमारी रिक्वायरमेंट गरीबी को लड़ाई के लिए काफी एनर्जी खर्चा करना पड़ा, फिर भी हम उस कमिटमेंट पर वचनबद्ध है जो पेरिस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, उस हिसाब से जो नए नए प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं जहां पे

0: से जो फॉसिल फ्यूल हो उसे हम जाके कैसे शिफ्ट करते, कैसे ये हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेस पर जाए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं रेयर अर्थ को लेकर भी, कि रेयर अर्थ भारत में हो या विदेश में, उसका भी नए एग्रीमेंट्स बना रहे जहां हमारे वैज्ञानिक हमारी इंडस्ट्री एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में या ज्वाइंट वेंचर में बाहर जाके इसको एक्सप्लॉइट करने का भी कई समझौता हुआ है साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज के साथ, यूरोप के कुछ कंट्रीज के साथ। जब जो हाल में जो पीएम की जितनी फॉरेन विजिट रही है इस दिशा में रही है।
1: आज आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री ने 1880 करोड़ रुपए से ज्यादा के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की भी आधारशिला रखी। इन प्रोजेक्ट्स की मुख्य बातें क्या है?
0: देखिए ये जो कनेक्टिविटी की जो बात की जा रही है, देखिए प्राइम मिनिस्टर बार बार विकसित भारत की बात करते हैं और प्राइम मिनिस्टर का ये भी एक लक्ष्य है कि जब तक हर राज्य का पूरा पोटेंशियल जब तक सामने नहीं आएगा तब तक भारत विकसित भी नहीं हो सकता। इसीलिए आज आंध्रा में स्वर्ण आंध्रा की बात की है, यानी गोल्डन आंध्र प्रदेश। उस दिशा में आज जो स्कीम्स है जो फाउंडेशन लगाया गया है और प्राइम मिनिस्टर का आज जितने कार्यक्रम है, जो मतलब आप ले लीजिए जैसे विशाखपट्टनम से रायपुर एक्सप्रेस वे, वो एक उस क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो विशाखपट्टनम रायपुर के बीच में रेलवे लाइन तो है ही, जो ज्यादातर माइनिंग डिपॉजिट एरियाज है वो जो ओडिशा को भी टच करते हुए जाता है, और कनेक्टिविटी बढ़ा के जो वहां के जो हमारे जो मिनरल रिसोर्सेस है उसकी ठीक तरह से उपयोग करने के एक रास्ता खुला है। और उसके साथ साथ जो कोस्टल एरिया है कि जैसे विशाखपट्टनम तो पुराना बंदरगाह है
1: जी
0: और कृष्णपट्टनम पुराने बंदरगाहों को जिसको माना जाता है हेरिटेज पोर्ट्स है, उनके आधुनिकीकरण वो भी एक बड़ा ये है। उसके साथ साथ में मैरीटाइम हब्स की बात की जा रही है, जहां जैसे मुलपेट है, रामायपट्टनम है, ये जगह सब जहाँ फिशिंग भी हो सकती है और साथ साथ सी फूड की इंडस्ट्री वहां आ सकती है, ये भी सरकार की बहुत बड़ी कोशिश है।
1: जी शिखर अय्यर जी, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुई और इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की आंध्र प्रदेश यात्रा और महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से आलमी खबरें सुनिए। अमेरिका में भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो पहले अपने मुल्क में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को खत्म करे ताकि भारत के साथ दो तरफा मामलात पर इश्तराक किया जा सके। उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा सईदो बख्तियार उदिलोविच आज से भारत के सरकारी दौरे पर होंगे। अमेरिका ने यह दावा करते हुए कि तेहरान और मगरबी एशिया के कई मुल्कों ने जंग में वक्फे की दरख्वास्त की है, ईरान पर मनसूबाबंद फौजी हमले फिलहाल न करने से इत्तफाक कर लिया है। पेरू में नाजका शहर के नजदीक सयाहों को ले जा रहे तैयारे के हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए। यूरोपीय यूनियन स्पेन के सियूटा में माइग्रेशन बहरान को हल करने के लिए मंगल को हंगामी मुज़ाकरात का इनेकाद करेगी। और ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत चौथे मुकाम पर आ गया है। एक ही दिन में मुक्केबाजों ने सोने के साथ तमगे जीत का रिकॉर्ड कायम किया है, जिससे तमगों की तादाद बढ़कर 39 हो गई है। अमेरिका में भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा ने जोर देकर कहा है कि अगर पाकिस्तान दो तरफा मामलात पर भारत के साथ इश्तराक चाहता है तो उसे दहशतगर्दी के उस बुनियादी ढांचे को पहले खत्म करना होगा जो उस

पॉलिसी बन गई है। बराक कोत्रा ने यह भी कहा कि कॉन्फ्रेंस ने तलब करके भारत को मौरिद इल्जाम ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को पानी की अपनी कमजोर सलाहियत को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी हर अंदरूनी नाकामी के लिए भारत पर इल्जाम लगाना पाकिस्तान की पुरानी रविश है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नेशनल एलिजिबिलिटी कमेंट्रेंस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट नीट पीजी 2026 की तैयारियों का जायजा लिया ताकि इम्तिहानात को बिला रुकावट पूरी तरह महफूज शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी सूरत में मुनद किए जाने को यकीनी बनाया जा सके। ये इम्तिहान इस माह की 30 तारीख को मुनद किया जाएगा। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने मेडिकल साइंसेज में इम्तिहानात के कौमी बोर्ड, टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्टनरों और इम्तिहान मुनद किए जाने में शामिल दीगर तरफेन के साथ तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान से मुतालिक लॉजिस्टिक्स उम्मीदवारों के लिए सहूलत के इकदाम, सिक्योरिटी का निजाम और नीट पीजी 2026 के लिए मुतारफ कराई गई टेक्नोलॉजी पर मबनी इकदाम के मुतालिक वजीर मौसूफ को तफसीलात बताई गई। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि एक मुनसिफाना, शफाफ और उम्मीदवार दोस्त इम्तिहान मुनद किए जाने के यकीनी बनाने की गरज से तमाम कोशिशें की जानी चाहिए, साथ ही सालमियत और सलामती के आला तरीन मेयार को भी बरकरार रखना चाहिए। वजीर मौसूफ ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और मेडिकल साइंसेज में इम्तिहानात के कौमी बोर्ड और वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की जानिब से जारी बाज़ाब्ता ऐलानात पर ही एतबार करें। उन्होंने ये भी कहा कि फाइनल सवालनामा एक इंतहाई महफूज इंक्रिप्टेड और पाबंदी वक्त पर मबनी एक अमल के जरिए इम्तिहान शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही मुंतखब किया जाएगा और इसके साथ कई सतहों पर मबनी तकनीकी और कार्रवाई जाती तहफ़ुज़ात का ख्याल रखा जाएगा ताकि इम्तिहान के शुरू होने के तयशुदा वक्त तक उसकी राजदारी को यकीनी बनाया जा सके। मजीद ये कहा कि जनाब नड्डा ने कि तमाम मुतालिका एजेंसियों को करीबी तालमेल बरकरार रखने की हिदायत दी गई है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर उम्मीदवार बिला रुकावट महफूज और दुश्वारियों से कतई पाक इम्तिहान के अमल का तजर्बा करे। खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा सईदो बख्तियार ओदिलोविच आज से इस महीने की 5 तारीख तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान जनाब ओदिलोविच राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो वजीर खारजा डॉ जयशंकर से भी मिलेंगे। उनका दिल्ली में एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करने का प्रोग्राम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने ईरान पर फौजी हमला फिलहाल न करने से इत्तेफाक कर लिया है। इससे कबल ईरान और मगरबी एशिया के कई मुल्कों ने हमले रोकने की अपील की थी। सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि एक मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक राय हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका फौजी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सिफारतकारी के लिए मौका फराहम करने की खातिर हमलों को मुअत्तल करने का फैसला किया है। सदर ट्रंप के मुताबिक मुजवजा समझौते में अब नए हुरमुज को पूरी तरह बिला ताखीर खोलना और ईरान के एटमी खतरे को दूर करना शामिल होगा। उधर ईरान ने अमरीकी सदर के दावों की बाज़ाब्ता तौर पर कोई तस्दीक नहीं की है। पेरू के शहर नाजका के नजदीक एक सियाहती हवाई जहाज के गिरकर तबाह होने से 13 अफराद हलाक हो गए। सोशल मीडिया में नाजका के म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के एक बयान के मुताबिक ये तैयारा सदियों पहले पेरू के कदीम बाशिंदों की जानिब से सहरा में तराश गए। मशहूर जमाना नाजका लाइंस का फिजाई जायजा लेने वाले सयाहों को ले जा रहा था। म्यूनिसिपल हुकूमत ने बताया कि पेरू की एयरलाइन पेरोडियाना का ये तैयारा करीबी शहर आईसीए से रवाना हुआ था। पेरू के हुक्काम के मुताबिक हादसे की वजह की तहकीकात की जा रही है। यूरोपीय यूनियन, स्पेन और कुछ रुकन मुल्कों के दरमियान तनाजा के बाद मंगल को सेउटा में माइग्रेशन बहरान से निमटने के लिए हंगामी मुजाकरात का इनेकाद करेगी। मराकश स्पेन के इलाके में 60,000 तारिकीन वतन के दाखिल होने के बाद यूरोपीय यूनियन के 22 ममालिक ने एक मजबूत रद्द अमल और मजबूत बैरूनी सरहदी कंट्रोल का मुतालबा किया है। स्पेन ने इटली की जानिब से अपने मुल्क के साथ यूरोपीय यूनियन की खुली सरहद के इंतजाम को मुअत्तल किए जाने के बाद इसकी तनकीद करते हुए इसे कुछ यूरोपीय हुकूमतों के

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। अमरीका में भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो पहले अपने मुल्क में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को खत्म करे ताकि भारत के साथ दो तरफा मामलात पर इश्तराक किया जा सके। उज्बेकिस्तान के वजीर खारजा सैदो बख्तियोर और दिलोविच आज से भारत के सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीका ने यह दावा करते हुए कि तेहरान और मगरबी एशिया के कई मुल्कों ने जंग में वक्फे की दरख्वास्त की है, ईरान पर मनसूबा बंद फौजी हमले फिलहाल न करने से इत्तफाक कर लिया है। पेरू में नाजका शहर के नजदीक सयाहों को लेकर जा रहे तैयारे के हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए। यूरोपीय यूनियन स्पेन के सियोटा में माइग्रेशन बहरान को हल करने के लिए मंगल को हंगामी मुजाकरात का इनेकाद करेगी और ग्लासगो में जारी दौलती मुश्तरका खेलों में भारत चौथे मुकाम पर आ गया है। एक ही दिन में मुक्केबाजों ने सोने के साथ तमगे जीतकर रिकॉर्ड कायम किया। इसके साथ ही आज की पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम फिर हाजिर होंगे।

इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं इस फिल्म की कहानी शॉर्ट में। कहानी एक ऐसे रहस्यमयी और बहादुर व्यक्ति की है जिसे लोग आजाद के नाम से जानते हैं। वो गरीबों का मददगार है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और अत्याचारी लोगों को सबक सिखाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर ये

इस प्यारे से गीत के बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि मीना कुमारी, जो एक अमीर जमींदार की बेटी शोभा है, उसकी मुलाकात आजाद यानी दिलीप कुमार से होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। दूसरी ओर लालची और षड्यंत्रकारी लोग जमींदार की संपत्ति हड़पना चाहते हैं और आजाद उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। अपनी बुद्धिमानी, साहस और चतुराई से आजाद षड्यंत्रकारियों की हर चाल नाकाम कर देता है। अंत में उसकी असली पहचान सामने आती है, अपराधियों को सजा मिलती है और प्रेम की जीत होती है। फिल्म का समापन सुखद होता है, जिसमें न्याय और सच्चाई की विजय दिखाई जाती है। ये थी फिल्म की

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से और हमारी आज की फिल्म है आजाद और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर। प्रोग्राम जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए अपने पसंदीदा इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।
1: आज तो पार्टी चाहिए, चैनल के साथ सेल्फी लेंगे,
2: आइडिया यही करते हैं पार्टी,
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है, सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं फिल्म आजाद की और आप इस फिल्म के प्यारे प्यारे गीतों का आनंद उठा रहे हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ipradiodelhi@gmail.com, तो इस पर हमें मेल कर अपनी प्रतिक्रिया हमको बता सकते हैं। हमें आपके मेल्स का इंतजार रहेगा। तो अब चर्चा करते हैं इस फिल्म के कलाकारों के अभिनय की, उनकी अदाकारी की जिसने इस फिल्म को अमर बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के हीरो दिलीप कुमार के अभिनय की। दिलीप कुमार को हिंदी सिनेमा का ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। उनकी

गंभीर भूमिकाएं दर्शकों के दिलों को छू जाती थी। फिल्म आजाद में उन्होंने पहली बार अपने अभिनय का एक बिल्कुल अलग रूप दिखाया। उनकी चंचल मुस्कान, हल्का फुल्का हास्य, तेज संवाद, अदायगी और बेहतरीन स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को हैरान भी किया और खुश भी। यही वजह है कि ये फिल्म उनके करियर का एक अहम पड़ाव मानी जाती रही। और अब बात करते हैं फिल्म की नायिका मीना कुमारी की। मीना कुमारी अपनी भावपूर्ण आंखों और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती थी। इस फिल्म में उन्होंने मासूमियत, शरारत और भावनाओं का ऐसा सुंदर संगम प्रस्तुत किया कि दर्शक उनके अभिनय के कायल हो गए। दोनों कलाकारों की जोड़ी ने पर्दे पर ऐसा जादू बिखेरा कि फिल्म आज भी याद की जाती है। तो आइए सुनते हैं फिल्म का अगला एक मधुर गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

इस मधुर गीत के बाद हम अपने श्रोताओं के कुछ संदेश शामिल कर लेते हैं जिनका उन्हें बेसब्री से इंतजार है। तो पहला संदेश हम लेना चाहेंगे, ये संदेश हमें मिला है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ की तरफ से। इन्होंने लिखा है, प्रिय आरजे नंदा जी नमस्कार, फिल्म आजाद के सभी गाने लाजवाब हैं। तो इनको गाने बहुत पसंद आ रहे हैं फिल्म के, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है संदीप मक्कड़ जी का, इन्होंने भी हमें ये लिखकर सूचित किया है कि आज की फिल्म और उसके गाने इनको बहुत पसंद आ रहे हैं। और एक और संदेश हमें मिला है असलाम खान जी का, इन्होंने लिखा है, नमस्कार आदाब आप।

भी नमस्कार, और इनको भी हमारा प्रोग्राम आज पसंद आ रहा है और प्रोग्राम में सुनाए गए फिल्म के सभी गीत इनको बहुत पसंद आ रहे हैं। एक मेल हमें, एक संदेश हमें मिला है धर्मेंद्र चिंपा जी का, फिल्म आजाद के बारे में बेहतरीन बातें बता रहे हैं, रोचक किस्से कहानी नगमे सुनवा रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति, हम प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं। ये मेल हमें भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से, और धर्मेंद्र चिप्पा जी के सभी परिवार ने हमें ये संदेश भेजा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल हम शामिल करते हैं नैना लमसे जी का, और इनके परिवार के सभी सदस्य ने हमें ये मेल भेजा है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी से, और इनको भी हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। और एक और मेल मैं शामिल करना चाहूंगी सोरन सिंह जी का, और इनके सभी परिवार के सभी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है गांव लोहागढ़ ठांकुरा वाला से, इनको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आ रहा है। एक दो मेल और मैं शामिल करना चाहूंगी, रोजी डे कैस्ट्रो ने भी हमें मेल भेजा है, ये इनके परिवार के और भी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है, रोजी पर्ल जॉन और विलीस डी कैस्ट्रो, ये इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, नाइस सॉन्ग नाइस प्रोग्राम, थैंक यू, धन्यवाद आपका तहे दिल से, शुक्रिया। अगला मेल हमें मिला है निसार अली जी का, इनको भी हमारा आज की फिल्म आजाद और उससे उसके सभी गीत इन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं। ये मेल हमें मिला है घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, तो हमें ये संदेश भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्रेम हमें दर्शाते रहिए अपने संदेशों के जरिए, हमें आपके संदेशों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो अब चर्चा करते हैं फिल्म आजाद से जुड़े रोचक किस्सों की। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म आजाद 1954 की तमिल सुपरहिट फिल्म मलई ककलन का हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म के सभी गीत अपने समय में बहुत हिट रहे। संगीतकार सी रामचंद्र ने फिल्म को यादगार संगीत दिया, तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक यादगार गीत।

इसके साथ साथ मैं कुछ मेल शामिल करना चाहूंगी, कुछ संदेश शामिल करना चाहूंगी। ये संदेश हमें अभी मिला है राजकुमार डूडी जी का, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी। इनको भी आज की फिल्म आजाद बहुत पसंद आ रही है और बहुत बढ़िया लग रहे हैं इनको गीत, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल हमें मिला है स्वरण सिंह जी का और इनके परिवार के सभी सदस्य। और एक और मेल हमें अभी भी मिला है नैना लमसे जी का और इनके परिवार के सभी सदस्यों को भी ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। और एक और मेल मैं शामिल करना चाहूंगी प्रकाश वर्मा जी का, मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और शानदार प्रस्तुति के लिए इन्होंने बधाई दी है, आपका बधाई हम स्वीकार करते हैं, धन्यवाद। ये मेल हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।

आजाद एक ऐसी ही अमर फिल्म है जिसको लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्रेम दिया। तो दोस्तों, आज का ये सुनहरा फिल्मी कारवां यहीं ठहरता है, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात। फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो हमें अपने दौर से मिलवाती हैं, उन कलाकारों से मिलवाती हैं जिन्होंने अपने हुनर से लाखों दिलों में जगह बनाई, और उन गीतों से मिलवाती हैं जो समय की धूल झाड़कर आज भी हमारी यादों में गुनगुनाते रहते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अपनी दोस्त नंदा इस्सर को अनुमति दीजिए। नमस्कार, और अगले प्रोग्राम में फिर

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विच विकसित भारत लई नशा मुक्त युवा संकल्प मुहिम की शुरुआत की है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि नौजवानों नूं नशे तों दूर रहना चाहिए ते एक सेहतमंद जीवन शैली अपनानी चाहिए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज सवेरे राष्ट्रपति भवन विखे एक समारोह विच प्रेजिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर थन दिल्ली 2026 नूं हरी झंडी विखा के रवाना किया। अमरीका विच भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि जेकर पाकिस्तान आपसी मुद्दे से भारत का सहयोग चाहता है तो उसनू पहला अपने दहशतगर्दी ढांचे नूं तबाह करना होगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान खिलाफ तजवीजशुदा फौजी हमले नूं मुलतवी करन दा फैसला कीता है। बैडमिंटन च भारत दी तन्वी शर्मा ने ताइपी ओपन सुपर खिताब जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विच विकसित भारत लई नशा मुक्त नौजवान संकल्प मुहिम की शुरुआत की। वर्चुअली संबोधन करदिआं उन्हां जोर देकर कहा कि विकसित भारत लई नौजवानां लई शरीरक तौर ते सेहतमंद, मानसिक तौर ते मजबूत अते आत्म विश्वास नाल भरपूर होना चाहिए है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि नौजवानों नूं नशिआं तों दूर रहना चाहिए है ते एक सेहतमंद जीवन शैली अपनानी चाहिए है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि नशा मुक्ति लई 100 हफ्तियां दी जन भागीदारी मुहिम शुरू की जाएगी, जिस तहत देश भर विच हर ऐतवार नूं हफ्तावारी प्रोग्राम होणगे। श्री मोदी ने कहा कि नशा लोकां नूं उनां दे उद्देशां तों भटकाउंदा।

0: पोस्ट विच श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका फौजी कार्रवाई लई पूरी तरह तैयार है पर समझौते की संभावना कारण हमले नूं मुलतवी कर पिया है। उन्हां दावा कीता कि तजवीजशुदा समझौते विच हॉर्मूस जलमार्ग नूं तुरंत अते पूरी तरह खोलना ते ईरान दे परमाणु प्रोग्राम ते रोक शामिल है। ईरान ने अजे तक अधिकारित तौर ते इन्हां दावियां दी पुष्टि नहीं कीती। पहला श्री ट्रंप ने चेतावनी दित्ती सी कि जेकर ईरान जहाजां ते हमले बंद नहीं करदा ते गलबात लई अगे नहीं आउंदा तां अमरीका फौजी कार्रवाई तेज करेगा। नौजवान मामले के खेड मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अज नवी दिल्ली में 84वें संडे ऑन साइकिल समारोह शिरकत की। जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम विखे हुए इस समागम में विद्यार्थियों फिटनेस प्रेमिया साइकिल चालकों परिवारों के नौजवान एनसीसी कैडेटा ने नशा मुक्त भारत मुहिम के समर्थन में हिस्सा लिया। भारत की तन्वी शर्मा ने वियतनाम की ग्वेन थुई लिन नू फाइनल च 21-16 नाल हरा के ताइपी ओपन सुपर खिताब जीत लिया है। उसका पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब है। 17 साल तन्वी ताइवान की ताई जू जिंग नू पछाड़ के ताइपी ओपन बैडमिंटन खिताब जीतने वाली सब तो घट उम्र की खिडारन बन गई है। 2008 विच साइना नेहवाल तो बाद यह खिताब जीतने वाली पहली खिडारन भी बन गई है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेडों में भारत की तमगे जितने की मुहिम आखिरी दिन में दाखिल हो रही है। भारत को जूडो और ट्रैक साइकिलिंग राही तमगियां की गिनती वधाने का आखिरी मौका मिलेगा। खेडों के 10वें दिन कल भारत 4 वख-वख मुकाबलों में 16 तमगे जीत के तमगा सूची में 4थे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने सोने के 13 चांदी के 17 और कांसी के 9 तमगियां समेत कुल 39 तमगे जीते ने। भारत के खाते में सब तो वध 10 तमगे मुक्केबाजी तो आए ने। भारतीय मुक्केबाजा ने सोने के 7 तमगे जीत के राष्ट्रमंडल खेडों में इतिहासिक प्रदर्शन किया है। इस तो अलावा भारतीय मुक्केबाजा ने 3 चांदी के तमगे भी जीते ने। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेडों की समाप्ति समारोह दौरान अहमदाबाद को अधिकारित तौर पर राष्ट्रमंडल खेडों का झंडा और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। अंत में चुनावी खबरें एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली में विकसित भारत लई नशा मुक्त युवा संकल्प मुहिम की शुरुआत की। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि नौजवानों को नशे तो दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद जीवन शैली अपनानी चाहिए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज सवेरे राष्ट्रपति भवन विखे एक समारोह में प्रेजिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर थन दिल्ली 2026 हरी झंडी विखाकर रवाना किया। अमरीका में भारत के राजदूत विनी मोहन क्वात्रा ने कहा कि जेकर पाकिस्तान आपसी मुद्दों से भारत का सहयोग चाहता तो उसे पहले अपने दहशतगर्दी ढांचे को तबाह करना होगा। बैडमिंटन च भारत की तन्वी शर्मा ने ताइपी ओपन सुपर खिताब जीत लिया है। इस खबर का बुलेटिन खत्म होता है। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत के मकसद के हुसूल की संत आगे बढ़ते हुए तंदुरुस्त जहनी एतबार से मजबूत और खुद एतमादी से भरपूर रहें। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज करते हुए कहा कि नौजवानों को मनुष्यात से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। केरल में मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 8 अफराद की मौत होने की इत्तला मिली है। हजारों लोगों को इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय का दावा करते हुए ईरान पर फौजी हमले फिलहाल रोक दिए हैं। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में पहली बार बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। और ग्लासगो में दौलत मुश्तरक खेलों का आज आखिरी दिन है और भारत ने सोने के 13 तमगों समेत 39 तमगों के साथ 4थे मुकाम पर है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क विकसित भारत बनने की संत आगे बढ़ रहा है और मुल्क के नौजवानों को तंदुरुस्त जहनी एतबार से मजबूत और खुद एतमादी से सरशार होना चाहिए। आज नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के आगाज के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने

0: कहा कि नौजवानों को मुनशियात से हमेशा दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसके आगाज के साथ साथ मुनशियात की लानत के खिलाफ पूरे मुल्क में जन भागीदारी मुहिम भी शुरू हो रही है जो 100 हफ्ते तक जारी रहेगी। जनाब मोदी ने कहा कि मुआशरे से मुनशियात के खात्मे के लिए बेदारी को फरोग देने और अवामी शमूलियत की हौसला अफजाई के लिए पूरे मुल्क में हर इतवार को हफ्तावार सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप।
0: जनाब मोदी ने कहा कि मुनशियात की लत से लोग अपने मकासिद और अपने ख्वाब पूरे करने के रास्ते से दूर हो जाते हैं। इस लानत से न सिर्फ कुंबे बर्बाद होते हैं बल्कि मुल्क की ताकत भी कमजोर होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को मुनशियात की लानत से महफूज रखने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि नौजवानों को इस लानत के संगीन मुजमरात को समझना चाहिए क्योंकि इससे आखिरकार करियर तबाह हो जाते हैं और मुस्तकबिल भी बर्बाद होता है।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति बनानी चाहिए।
0: वज़ीर आज़म ने कुंभों पर जोर दिया कि वो मुआशरे में बदनामी के डर से मुनशियात के इस्तेमाल के केसों को पोशीदा न रखें। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के कुंभों को बरवक्त मदद के लिए आगे बढ़कर खुलकर बात करनी चाहिए और माहिरीन से सलाह लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुंभों को इब्तदाई मरहले में ही तंबीह की अलामतों का पता लगाने की खातिर खुली बातचीत का माहौल कायम करना चाहिए और बच्चों को बरवक्त मदद फराहम करनी चाहिए। जनाब मोदी ने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा और प्रोफेसर साहिबान से भी अपील की कि वो तलबा के साथ गुफ्तगू में मुनशियात की लानत के खतरात के बारे में बाकायदगी से बात करते रहें और कैंपस में बेदारी की मुहिम का एहतमाम करें। इस प्रोग्राम में मुल्क भर में 28,000 मुकामात से 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम के शुरका ने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, यूथ क्लब, गैर सरकारी तंजीमों और रूहानी तंजीमों के शुरका के साथ साथ माय भारत और नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकार भी शामिल हैं। अमरीका में भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा ने जोर देकर कहा है कि अगर पाकिस्तान दो तरफा मामलात पर भारत के साथ इश्तराक चाहता है तो उसे दहशतगर्दी के उस बुनियादी ढांचे को पहले खत्म करना होगा जो उसने बना रखा है। पाकिस्तान ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे को मुअत्तल रखने के भारत के फैसले पर एहतजाज के लिए हाल ही में इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस तलब की थी। जनाब विनय मोहन क्वात्रा ने एक न्यूज मैगजीन में शाया होने वाले मजमून में पाकिस्तान के एक साबिक वजीर खारजा के उस बयान पर नुक्ताचीनी की है जिसमें उन्होंने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के बारे में पाकिस्तान के मुतालबात पूरे न होने की सूरत में भारत के खिलाफ जंग की धमकी दी थी। भारतीय सफीर ने कहा कि अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत के खिलाफ जंग लड़ने की धमकी देना पाकिस्तान की एक पॉलिसी बन गई है। जनाब क्वात्रा ने यह भी कहा कि कॉन्फ्रेंसें तलब करके भारत को मौरिदे इल्जाम ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को पानी की अपनी कमजोर सलाहियत को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अपने हर अंदरूनी नाकामी के लिए भारत पर इल्जाम लगाना पाकिस्तान की पुरानी रविश है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। केरल में मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बारिश से वाबस्ता वाकयात में 8 अफराद की मौत होने की इत्तला मिली है जबकि 8 दीगर अफराद लापता बताए गए हैं। कल के मुकाबले आज बारिश का जोर कम होने से लोगों को कुछ राहत मिली है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: मुतासरा इलाकों में 5,700 से ज्यादा अफराद को 209 इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। रियासती सरकार के मुताबिक 27 मकान पूरी तरह तहस नहस हो गए हैं, जबकि 196 मकानों को जुजरी तौर पर नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ जिलों से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचने की इत्तला मिली है। पहाड़ी इलाकों और दरिया के किनारे के नजदीक रहने वालों को सलाह दी गई है कि वो चौकस रहें। इधर भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के साहली इलाकों में माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो आज समुद्र में न जाएं। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालाकृष्णन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने ईरान पर फौजी हमला फिलहाल न करने से इत्तेफाक कर लिया है। इससे पहले ईरान और मगरबी एशिया के कई मुल्कों ने हमले रोकने की अपील की थी। सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि एक मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक राय हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका फौजी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सिफारतकारी के लिए मौका फराहम करने की खातिर हमलों को मुअत्तल करने का फैसला किया है। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ख्वातीन के ताइपे ओपन सुपर सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में वियतनाम की छठे नंबर की खिलाड़ी गुएन थुई लिन्ह को 21-16, 21-16 से हरा दिया। इस तरह 17 साल की तन्वी शर्मा ने पहली बार बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है और वह ताइपे ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों का आज आखिरी दिन है और भारत सोने के 13 तमगों समेत 39 तमगों के साथ चौथे मुकाम पर है। भारत ने अब तक चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे भी जीते हैं। इससे कबल भारत ने मुक्केबाजी में सोने के 7 तमगे जीते, जो कि एक रिकॉर्ड है। भारतीय मुक्केबाजों ने दौलत मुश्तरका खेलों में अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सोने के 7 तमगों के साथ साथ मुक्केबाजी में चांदी के 3 तमगे भी मिले। इधर जूडो में भी भारतीय खिलाड़ियों ने 4 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने तमगे जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। अहमदाबाद को ग्लासगो में जारी 2026 के दौलत मुश्तरका खेलों की इख्तितामी तकरीब के दौरान दौलत मुश्तरका खेलों का परचम और मेजबान शहर के बैटन बाजाबता तौर पर सौंपी जाएगी। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत के मकसद के हुसूल की संत आगे बढ़ते हुए तंदुरुस्त ज़हनी एतबार से मजबूत और खुद एतमादी से भरपूर रहें। वज़ीरे आज़म ने नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज करते हुए कहा कि नौजवानों को नशियात से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। केरलम में मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 8 अफराद की मौत होने की इत्तला मिली है। हजारों लोगों को इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक राय का दावा किया है। और बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में पहली बार बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continue to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally, including 13 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
1: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए हैं, परिवार के लिए हैं, समाज के लिए भी हैं।

0: गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
0: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
1: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, महसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी

0: किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 एनडीआरएफ और 33 एसडीआरएफ टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। रमेश अड़ेचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
2: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी ओडिशा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। ओडिशा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरल, माही, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन ने भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की 6वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
3: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लंबोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता।

0: जीटो ने 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सुमन राणा ने पुरुषों के F57 पैराशूट पुट में स्वर्ण जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
1: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। दोपहर के 2:30:17 हुए हैं। आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, कुछ नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेंगे। ऐसे ही एक शायर थे जिनके अल्फाज सिर्फ गीत नहीं थे बल्कि दिल की धड़कन बनकर करोड़ों लोगों की जुबान पर बन गए, बस गए। आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है महान गीतकार, उर्दू शायर और फिल्मी गीतों के बेमिसाल रचनाकार शकील बदायूनी जी को। दोस्तों, शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ। बचपन से ही उन्हें उर्दू, फारसी, अरबी और हिंदी का अच्छा ज्ञान मिला। शकील बदायूनी का असली नाम शकील अहमद था। बदायूं शहर से गहरा लगाव होने के कारण उन्होंने अपने नाम के साथ बदायूनी जोड़ लिया और आगे चलकर उर्दू शायरी और हिंदी संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बना ली। और भी बातें करेंगे शकील साहब की, लेकिन पहले सुन लेते हैं शकील साहब का लिखा गीत। दोस्तों, आपको बता दें, जब ये गीत रिलीज हुआ तो इसकी भव्यता, बोल और संगीत ने इतिहास रच दिया। तो आइए सुनते हैं इसी भव्य गीत को।

दोस्तों 1940 के दशक में शकील बदायूनी मुंबई पहुंचे। कवि सम्मेलनों में उनकी शायरी सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यहीं उनकी मुलाकात संगीतकार नौशाद से हुई। ये जोड़ी हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास की सबसे सफल जोड़ियों में गिनी जाती है। दोनों ने मिलकर सैकड़ों अमर गीत गाए। तो आइए सुनते हैं शकील साहब का लिखा अगला गीत, अगला मंत्रमुग्ध करने वाला गीत फिल्म लीडर से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

0: कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ।
1: दोस्तों, शकील वदायनी ने नौशाद के साथ लगभग 30 फिल्मों में काम किया और उनके लिए करीब 300 गीत लिखे। इनकी जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को दुलारी, बेजू बावरा, आन, मदर इंडिया, मुगले आजम, कोहिनूर, गंगा जमुना, मेरे महबूब, लीडर और संघर्ष जैसी यादगार फिल्मों के सदाबहार गीत दिए। कहना गलत नहीं होगा कि नौशाद की धुनों और शकील बदायूनी के अल्फाज ने मिलकर हिंदी फिल्म संगीत का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय लिखा जिसे आज भी संगीत प्रेमी पूरे सम्मान और मोहब्बत के साथ याद करते हैं। शकील बदायूनी केवल प्रेम गीत ही नहीं, भजन, कव्वाली, गजल, देशभक्ति गीत हर विधा में समान रूप से सफल रहे। शकील बदायूनी ने कभी शब्दों को धर्म की दीवारों में नहीं बांधा। यही तो भारत की गंगा जमुनी तहजीब है। एक मुस्लिम शायर होते हुए उन्होंने इतना दिव्य भजन गाया, क्या कमाल की बात है। आइए सुनते हैं इसी भजन को फिल्म बेजू बावरा से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार और हमारे आज के कलाकार हैं महान रचनाकार शकील बदायूनी और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर आपके साथ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं मत जाइएगा।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार और हमारे आज के कलाकार हैं शकील बदायूनी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ip.radio.delhi@gmail.com। पता एक बार फिर से सुन लीजिए ip.radio.delhi@gmail.com। आप हमें इस पते पर अपने संदेश भेज सकते हैं, हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा। हम बात कर रहे हैं शकील साहब की। शकील साहब के शब्दों की सबसे बड़ी खूबी थी सादगी, कठिन उर्दू नहीं बल्कि ऐसे शब्द जो सीधे दिल में उतर जाए। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही गीत जो सीधे दिल में उतर गया और सीधे दिल में उतर जाता है, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने और फिल्म का नाम है मेरे महबूब।

वाह क्या खूबसूरत गीत। इस खूबसूरत गीत के बाद हम अपने दोस्तों के अपने श्रोताओं के मेल शामिल करना चाहेंगे। तो पहला मेल हम शामिल कर रहे हैं, फागुराम यादव जी ने लिखा है हमें संबलपुर कांकेर से। और अगला संदेश हमें मिला है राजकुमार डूडी जी का। एक ही कलाकार में आप गीतकार शकील बदायूनी के बारे में जानकारी दे रही हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसके लिए आप हमारा प्रोग्राम ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से

0: शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है धर्मेंद्र छिप्पा जी का। आदरणीय मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप अपने दौर के मशहूर गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गीत नगमे सदाबहार गीत हमें सुनवा रहे हैं। बेहतरीन रोचक बातें और किस्से सुनवा रहे हैं आप, हम प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं। धन्यवाद धर्मेंद्र छिप्पा जी। ये हमें संदेश मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से। अगला संदेश हमें मिला है फारूक अली खान का। इनको भी हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और प्रोग्राम में सुनवाए गए सारे गीत इनको पसंद आ रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगला मेल हमें मिला है स्वरण सिंह जी का और इनके परिवार के सभी सदस्यों का। इनको भी प्रोग्राम हमारा पसंद आ रहा है। एक और मेल मैं शामिल करना चाहूंगी सोम दत्त जी का। ये है हमें संदेश मिला है नाभा जिला पटियाला पंजाब से और इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी हमें ये संदेश भेजा है। इनको भी हमारा प्रोग्राम एक ही कलाकार बहुत पसंद आ रहा है और उसमें सुनवाए गीत भी पसंद आ रहे हैं। एक और मेल मैं शामिल करना चाहूंगी हीरा मनी वर्मा जी का। इन्होंने लिखा है एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज गीतकार शकील बदायूनी जी पर केंद्रित कार्यक्रम और फिल्मी सफरनामा दिलचस्प जानकारी के साथ बेहतरीन गीत सुनने को मिले, तो तहे दिल से धन्यवाद हमारा प्रोग्राम इतने ध्यान से सुनने के लिए। ये मेल हमें भेजा है हीरामणि वर्मा ने दंत रेगी भाटापारा से। तो इसी तरह से दोस्तों हमें मेल भेजते रहिए और हम आपके मेल का बेसब्री से, आपके संदेशों का बेसब्री से इंतजार करते रहेंगे। तो प्रोग्राम आगे जारी करते हैं और बताते हैं कि दोस्तों किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार श्रोताओं का और दर्शकों के प्यार का होता है। शकील बदायूनी को ये प्यार भरपूर मिला। उनके शानदार लेखन को फिल्म जगत ने भी समय समय पर सम्मानित किया। 1961 में फिल्म चौदहवीं का चांद के लिए के अमर गीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, सन 1964 में फिल्म मेरे महबूब के शीर्षक गीत के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड, 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार उनको मिला। और जाते जाते शकील बदायूनी के लिए एक खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है। मैं कहना चाहूंगी, मैं शकील दिल का हूं आवाज की दुनिया में, मेरे अल्फाज ही मेरी पहचान रहेंगे। बिल्कुल, आपकी पहचान आपके अल्फाज रहेंगे। और इसी के साथ चलते चलते सुनते जाइए एक और प्यारा सा गीत उन्हीं का लिखा हुआ हेमंत कुमार की आवाज में।
1: हमें यूं न जाइए, आपको हमारे पसंद लौट आइए।
0: इकरार करके हम आपको छोड़कर जाना तो नहीं चाहते, मगर घड़ी की सुइयां हमें अनुमति नहीं दे रही हैं। ना चाहते हुए भी हमें जाना ही पड़ेगा।

लौट आए हैं हम एक और गीत के साथ। चलते चलते सुनते जाइए शकील साहब का लिखा हुआ एक और प्यारा सा गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत के मकसद के उसूल की सम्त आगे बढ़ते हुए तंदुरुस्त और जहनी एतबार से मजबूत रहें। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज करते हुए कहा कि नौजवानों को मनुष्यात से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। अमरीका में भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा ने जोर देकर कहा है कि अगर पाकिस्तान दो तरफा मामलात पर इश्तराक चाहता है तो उसे दहशतगर्दी का अपना बुनियादी ढांचा खत्म करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक राय का दावा करते हुए ईरान पर फौजी हमले फिलहाल रोक दिए हैं। यूरोपीय यूनियन स्पेन के सियोटा में माइग्रेशन बहरान को हल करने के लिए मंगल को इमरजेंसी बातचीत का एहतमाम करेगी। और बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में पहली बार बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क विकसित भारत बनने की सम्त आगे बढ़ रहा है और मुल्क के नौजवानों को तंदुरुस्त जहनी एतबार से मजबूत और खुद एतमादी से सरशार होना चाहिए। आज नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के आगाज के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि नौजवानों को मनुष्यात से हमेशा दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसके आगाज के साथ साथ मनुष्यात की लानत के खिलाफ पूरे मुल्क में जन भागीदारी मुहिम भी शुरू हो रही है जो 100 हफ्ते तक जारी रहेगी। जनाब मोदी ने कहा कि माशरे से मनुष्यात के खात्मे के लिए बेदारी को फरोग देने और अवामी शमूलियत की हौसला अफजाई के लिए पूरे मुल्क में हर इतवार को हफ्तावार सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि मनुष्यात की लानत से लोग अपने मकासिद और अपने ख्वाब पूरा करने के रास्ते से दूर हो जाते हैं। इस लानत से न सिर्फ कुनबे बर्बाद होते हैं बल्कि मुल्क की ताकत भी कमजोर होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को मनुष्यात की लानत से महफूज रखने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि नौजवानों को इस लानत के संगीन मुजमिरात को समझना चाहिए क्योंकि इससे आखिरकार कैरियर तबाह हो जाते हैं और मुस्तकबिल भी बर्बाद होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कुनबों पर जोर दिया कि वो माशरे में बदनामी के डर से मनुष्यात के इस्तेमाल के केसों को पोशीदा न रखें। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के कुनबों को बरवक्त मदद के लिए आगे बढ़कर खुलकर बात करनी चाहिए और माहिरीन से सलाह लेनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुनबों को इब्तदाई मरहले में ही तंबीह की अलामतों का पता लगाने की खातिर खुली बातचीत का माहौल कायम करना चाहिए और बच्चों को बरवक्त

मदद फराहम करनी चाहिए। जनाब मोदी ने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा और प्रोफेसर साहिबान से भी अपील की कि वो तलबा के साथ गुफ्तगू में मुनशात की लानत के खतरात के बारे में बाकायदगी से बात करते रहें और कैंपस में बेदारी की मुहिम का एहतमाम करें। इस प्रोग्राम में मुल्क भर में 28,000 मकामात से 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम के शरीका में स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, यूथ क्लब, गैर सरकारी तंजीमों और रूहानी तंजीमों के शरीका के साथ साथ माई भारत और नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकार भी शामिल हैं। अमरीका में भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा ने जोर देकर कहा है कि अगर पाकिस्तान दो तरफा मामलात पर भारत के साथ इश्तराक चाहता है तो उसे दहशतगर्दी के उस बुनियादी ढांचे को पहले खत्म करना होगा जो उसने बना रखा है। पाकिस्तान ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी माहिदे को मुअत्तल रखने के भारत के फैसले पर एहतजाज के लिए हाल ही में इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस तलब की थी। जनाब विनय मोहन क्वात्रा ने एक न्यूज मैगजीन में शाया होने वाले मजमून में पाकिस्तान के एक साबिक वजीर खारजा के उस बयान पर नुक्ताचीनी की है जिसमें उन्होंने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी माहिदे के बारे में पाकिस्तान के मुतालबात पूरे न होने की सूरत में भारत के खिलाफ जंग की धमकी दी थी। भारतीय सफीर ने कहा कि अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत के खिलाफ जंग लड़ने की धमकी देना पाकिस्तान की एक पॉलिसी बन गई है। जनाब क्वात्रा ने यह भी कहा कि कॉन्फ्रेंस से तलब करके भारत को मुर्द इल्जाम ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को पाने की अपनी कमजोर सलाहियत को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी हर अंदरूनी नाकामी के लिए भारत पर इल्जाम लगाना पाकिस्तान की पुरानी रविश है। पाकिस्तान में बलोच शहरियों की जबरी गुमशुदगी के सिलसिले में बढ़ती हुई तशवीश के दौरान इंसानी हकूक से मुतालिक एक सरकर्दा तंजीम ने इल्जाम लगाया कि मजीद 5 बलोच शहरियों को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जबरी तौर पर लापता कर दिया है। बलोच नेशनल मूवमेंट के इंसानी हकूक से मुतालिक शोबे पांग के मुताबिक मुतालिक बलोच शहरियों को मुबैना तौर पर इंसानी दहशतगर्दी के महकमे, पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों और फौजी एहलकारों ने हिरासत में लिया है। पांग ने पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर लापता अफराद की हालत और जगह के बारे में मुतला करें और उनके तहफ्फुज को यकीनी बनाएं और इस मामले की फौरी, गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदार अफराद को जवाबदेह ठहराएं। तंजीम का कहना है कि जबरी गुमशदगियों का यह सिलसिला पाकिस्तान की बैन अलाक्वामी इंसानी हकूक से मुतालिक जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है और इसकी वजह से मुतासर कुनबे तवील अरसे से शदीद तौर पर जहनी अजियत का सामना कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा सईदोव बख्तियार आदिलोविच आज से इस माह की 5 तारीख तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान जनाब आदिलोविच राष्ट्रपति भवन में सर्रे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। उनका दिल्ली में एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करने का प्रोग्राम है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने ईरान पर फौजी हमला फिलहाल न करने से इत्तफाक कर लिया है। इससे कबल ईरान और मगरबी एशिया के कई मुल्कों ने हमले रोकने की अपील की थी। सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि एक मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका फौजी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है लेकिन सिफारतकारी के लिए मौका फराहम करने की खातिर हमलों को मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। सदर ट्रंप के मुताबिक मुजव्वजा समझौते में अबनाए हुरमुज को पूरी तरह बिला ताखिर खोलना और ईरान के एटमी खतरे को दूर करना शामिल होगा। उधर ईरान ने अमरीकी सदर के दावों की बाजाबता तौर पर कोई तस्दीक नहीं की है। यूरोपीय यूनियन, स्पेन और कुछ रुकन मुल्कों के दरमियान तनाजे के बाद मंगल को सुएटा में माइग्रेशन बहरान से निपटने के लिए हंगामी मुजाकरात का इनेकाद करेगी। मराकश से स्पेन के इलाके में 60,000 तारिकीन वतन के दाखिल होने के बाद यूरोपीय यूनियन के 22 मुल्कों ने एक मजबूत रद्दअमल और मजबूत बैरूनी सरहदी कंट्रोल का मुतालबा किया है। स्पेन ने इटली की जानिब से अपने मुल्क के साथ यूरोपीय यूनियन की खुली सरहद के इंतजामात को मुअत्तल किए जाने के बाद इसकी तनकीद करते हुए इसे कुछ यूरोपीय हुकूमतों की तरफ से इख्तलाफ राय को बढ़ावा देने वाला रद्दअमल करार दिया है।
इटली के इस इकदाम

0: फिनलैंड और डेनमार्क की हिमायत भी हासिल थी। हुकाम ने बताया कि 30 जुलाई को सियोटा में दाखिल होने वाले तकरीबन तमाम तारिकिन वतन वापस हो चुके हैं, जबकि क्रॉसिंग के दौरान कम से कम 67 अपराध हलाक हुए हैं। यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने खबरदार किया है कि लोगों की बेकाबू माइग्रेशन ब्लॉक की मुश्तरका माइग्रेशन पॉलिसी पर एतमाद को नुकसान पहुंचा सकती है। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने खवातीन के ताइपे ओपन सुपर सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में वियतनाम की छठे नंबर की खिलाड़ी निग्यून थ्यू लिन को 21-16 21-16 से हरा दिया। इस तरह 17 साल की तन्वी शर्मा ने पहली बार बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है और वो ताइपे ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई हैं। इसके अलावा तन्वी 2008 में साइना नेहवाल के बाद से ये टाइटल हासिल करने वाली पहली भारतीय खातून भी हैं। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों का आज आखिरी दिन है और भारत सोने के 13 तमगों समेत 39 तमगों के साथ चौथे मकाम पर है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमगे जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत के मकसद के उसूल की सम्त आगे बढ़ते हुए तंदुरुस्त और जहनी एतबार से मजबूत रहें। वजीर आजम ने नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज करते हुए कहा कि नौजवानों को मनुष्यात से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। अमरीका में भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा ने जोर देकर कहा है कि अगर पाकिस्तान दो तरफा मामलात पर इश्तराक चाहता है तो उसे दहशतगर्दी का अपना बुनियादी ढांचा खत्म करना होगा। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक कराए का दावा करते हुए ईरान पर फौजी हमले फिलहाल रोक दिए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमारी नशा सुन रहे हैं। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका दोस्त नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। और आज का दिन तो खास है दोस्तों, क्योंकि हमने आपको दोस्त कहा, दोस्त कहकर मुखातिब हुए, आप समझ ही गए होंगे, हमने हाथ बढ़ाया दोस्ती की जानिब। जनाब आज दोस्ती का आलमी दिन है और वैसे दोस्ती जैसे रिश्ते को निभाने के लिए किसी खास दिन को मनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दोस्त तो एक ऐसा साया है जो आपके साथ हमेशा रहता है और हम कहें कि साये से बढ़कर भी है। साया भी कभी कभी आपका साथ छोड़ जाता है लेकिन दोस्त कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। वक्त चाहे कैसा ही हो, जिंदगी में कितने ही नशेब व फराज हो, लेकिन सच्चा दोस्त कभी आपसे अलग नहीं होता। आज दूर बैठा एक दोस्त बहुत याद आया, अच्छा गुजरा हुआ कुछ वक्त बहुत याद आया, जो मेरे दर्द को सीने से लगाता था, आज जब दर्द हुआ तो वो दोस्त बहुत याद आया।

बहुत सारे दोस्त होते ही हो तो, लेकिन अगर एक भी अच्छा दोस्त मिल जाए तो सब दोस्तों की कमी दूर हो जाती है। लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हुजूम, मिल जाए वफादार तो एक शख्स बहुत है।

दोस्ती का रिश्ता इतना खूबसूरत और इतना मजबूत क्यों कहलाता है? कई बार खून के रिश्तों पर भी भारी पड़ जाता है। उसकी वजह यह है, पल में रूठ जाते हैं, पल में मन जाते हैं, और यही जो सिफत है वो सब पर भारी है। हाथ मिलाते हैं जब दोस्ती, हाथ मिलाते हैं जब दोस्त वफा के साथ, दूर हो जाते हैं सब गम हवा के साथ।

0: आज का मेरी पसंद प्रोग्राम हमने खराज तहसीन के तौर पर पेश किया दोस्ती के रिश्ते को। ये थी इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल एप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशा जारी है। सफेद खून, आगा हर्ष कश्मीरी के तहरीर करदार ड्रामे के रेडियो रूप का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनिए।
1: आखिर कमबख्तों ने अपने बाप को पागल बना दिया। खैर, धर्म, खुदा का कहर जारा की शक्ल में आया है, वही इनसे पूरा इंतकाम लेगी।
2: लेकिन अब्बा, बादशाह सलामत अब कहाँ है?
1: किले में, मैंने जारा के पास भिजवा दिया है। देखो बैरम, हम पर बादशाह का हक है और वो हक इस तरह अदा हो सकता है कि हम, तुम और जो भी ये हक अदा करना चाहते हैं वो सब मिलकर जारा और उसके शौहर की मदद करें।
2: अच्छा, उन्होंने अपनी फौज का सिपे सालार किसको बनाया है?
1: एक तो तुम हो और दूसरा
2: तुर्रम।
1: बैरम, तुम तो मेरे बेटे हो, इसलिए वही करोगे जो बाप की मर्जी होगी। अब बाकी रहा तुर्रम, उसे तुम मेरा ये खत ले जाकर दिखा दो।
2: अब ये खत हर्फ ब हर्फ माह पारा और दिलारा को जाकर सुनाता हूं। चल बैरम चल, इसी तरह बूढ़ों की बेवकूफी से जवान अक्लमंदों का फायदा।

0: हमें नहीं जानता, हमें नहीं पहचानता, हम बादशाह हैं, बादशाह।
1: अफसोस अरसलान, गरीब शहंशाह फिर जुनून के जोश में कन्हे से बाहर निकल आया। खुदा उन जालिमों को भी यूं ही बर्बाद करे।
0: मैंने ये आवाज कहीं सुनी है, मैंने तुमको और इनको कहीं देखा है।
1: हुजूर, मैं आपका गुलाम सदान हूँ और ये अरसलान हैं।
2: सदान, ऐसी हालत में तो एक गरीब शख्स को भी नहीं देखा जा सकता।
1: हाँ अरसलान, अब मेरी आंखें आंसू बनकर बह जाएंगे।
0: तू रोता है? अगर तुझे हमारी किस्मत पर रोना है तो हमारी आंखें ले और सब्र कर। हम भी जब इस तमाशगाह में आए थे तो यूं ही रोया करते थे।
1: हाय हाय, कैसी अच्छी तबीयत बर्बाद हो गई।
0: यही है सिपाही है, यही है सिपाहियों, सिपाहियों यही है, इसे पकड़ लो, इसको पकड़ लो। इसका नाम महापारा है, महापारा। अरे इसने अपने बाप को ठोकरों से मारा है। वो दूसरी भी आई, इसका नाम दिलारा है। इसकी बिगड़ी हुई शक्ल से इसकी तबीयत की बुराई आश्कारा है, है? वो भी भाग गई।
2: गूंजते थे जिनके डंकों से जमीन और आसमान, चुप पड़े हैं कब्र में अब वो, ना हूं ना हां।
0: कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इंसाफ को रुपयों ने खरीद लिया है, हाकिमों को रिश्वत दी गई है, रिश्वत। ओ, तुम सब डाकू हो, तुम सब दगाबाज हो, दगाबाज हो, दगाबाज हो।
3: ये हैं, संभाल लो इन्हें, ले चलो किले में।
0: छोड़ दो मेरे सिंह, छोड़ दो। अरे कोई बचाने वाला नहीं,
4: अरे आइए,
0: कोई मेरे हाथ पर तरस खाने वाला नहीं।
3: अब्बा हुजूर, मैं जारा हूँ, आप किले में तशरीफ ले चलिए, बंदी आपकी खिदमत करेगी।
0: मुझे मत छेड़ो, मैं एक बेवकूफ बूढ़ा शख्स हूँ, मुझ पर हंसना नहीं हंसना। मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी जारा है।
3: जी हाँ, मैं वही हूँ, ये मेरे शौहर है। आप मुझे दुआ दीजिए अब्बा जान।
1: लाइए लाइए, मैं हाथ को बोसा दूं।
0: इसे धो डालो, इसमें फला की बू आती है, इसमें फला की बू आती है। अरे तुम पीछे हटे नहीं, ओ बेवकूफो, हम लड़कर मर जाएंगे मगर तुम्हारी गुलाबी कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे।
3: अफसोस, औलाद ने बाप की तबीयत किस कदर बदल दी।
1: जरा ऐसी हालत में अच्छे इंसान का पागल हो जाना कुछ ताजुब नहीं है। हुजूर, अब इनकी ऐसी निगरानी कीजिए कि किले से बाहर ना आने पाए। जब से आपने इस सरहदी किले पर कब्जा किया है, उस वक्त से दुश्मन के सिपाही चारों तरफ फिरा करते हैं।
4: अब तो वो एक इंच जमीन भी मुझसे वापस नहीं ले सकते। मुझे तो बस अपनी बाकी फौज का इंतजार है। फिर ये किला तो क्या, इनको अपने बचे हुए मुल्क का बचाना भी दुश्वार है।
2: खुदा आपको फतेह हासिल करे।
3: आमीन, वो जरूर करेगा, क्योंकि ये मेरा प्यारा शौहर हिस्सो हवस से गैर मुल्क हमला करने नहीं आया, बल्कि मेरी मोहब्बत में आया है
4: और इंसानियत का फर्ज मुझे यहाँ खींच लाया।
2: खुदा तो हक है और हक का साथ दे। आमीन।
1: देखा?
5: ताज्जुब तो ये है बैरम, कि इस खत को लिखते हुए उस बेवकूफ साधन ने अपने अंजाम पर भी निगाह न की।
1: मुझे खुद ताज्जुब है मलका दिलारा, और इस सर की खैर ख्वाही के वास्ते मैंने सादत मंदी की।

0: भी परवाह न की।
1: तो क्या ऐसे दगाबाज सादान को सख्त सजा न देनी चाहिए?
0: क्यों नहीं देनी चाहिए, मगर मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि
1: क्योंकि वो तुम्हारा बाप है।
0: अगर मेरा बाप ना होता तो मैं खुद अपने हाथों से फांसी देता।
1: खैर, ये फर्ज तुम्हारी तरफ से हम बजा लाएंगे।
0: मेरी भी क्या बुरी किस्मत है कि ये सब जानते हैं कि मैंने बड़ी नमक हलाली की है, मगर फिर भी लोग मुझे बदनाम करेंगे।
1: प्यारे बैरम, मैंने अपना दिल जो शौहर की अमानत था तुम्हें दे दिया, खुदा तक की परवाह न की, और तुम हो कि इंसानों की परवाह करते हो।
0: मलिका,
1: आओ आओ मलिका महापारा, मेरी प्यारी बहन।
2: मैंने नमक हराम सादान की गिरफ्तारी के लिए कुत्ते छोड़ रखे हैं दिलारा,
1: और अब वो बच नहीं सकता।
2: अगर वो यहाँ आया तो मैं उसकी बोटियां नुचवा दूंगी
1: और मैं उसकी हड्डियां कुचलवा दूंगी।
0: जनाब, इंसाफ तो इससे भी ज्यादा सजा तजवीज करता है, मगर आप रहम दिल हैं, इसलिए थोड़ा रहम कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं चला जाऊं, क्योंकि मैं अपने बाप सादान को बुराई का बदला पाते हुए देखूंगा तो मुझे शर्म आएगी। लीजिए, अब सादान इधर ही आ रहे हैं, मैं जल्दी से भागता हूँ।
2: बदमाश, तूने बूढ़े खाकान को जारा के पास किस लिए भेजा है?
3: इसलिए कि मैं ये नहीं देख सकता था कि तू अपने नाखूनों से उनके झुर्रियों पड़े चेहरे को नोच खाए।
2: खामोश
3: जालिमो, खौफनाक जंगल, अंधेरी रात और उसमें आफतों का मारा एक बूढ़ा शख्स बेहाल, मैं उसे लेकर आया, गिड़गिड़ाया, समझाया, मगर वहशियो तुमने अपने ज़ईफ बाप पर तरस ना खाया और इतना ना कहा नौकरों से कि दरवाजा खोल दो और उसे अंदर बुला लो।
1: जल्ला दो, इसकी जबान काट लो।
3: हाँ, जल्दी करो, जल्ला दो, वरना इनके सब ऐब खुल जाएंगे।
2: खत लिखकर दूसरों के नौकरों को फुसलाना, ये कार्रवाई किस कदर जलील है।
3: एक नावाकिफ को सांप की दोस्ती से बचाना इंसानियत की दलील है।
1: सादान, तू बूढ़े के लिबास में शैतान है
3: और तू औरत के जामे में हैवान है।
2: ये दिमाग और ऐसे बेहुदा जुनून,
3: औलाद और ऐसा सफेद खून।
2: बदमाश, पाजी, जल्लाद, मार हाथ, लगा चोटे ताकि ये सर इन कदमों पे लोटे।
4: ठहरो जल्लाद, ये ले, संभाल मेरे खंजर का वार।
2: ये क्या किया बेदादगर, जल्लाद को क्यों मार डाला?
4: वो किया जिसका ये सजावार था, बेकसूर सदान पर वार कर रहा था।
2: सदान ने हमको धोखा दिया
4: और तुमने अपने बाप को धोखा दिया।
1: मेरे शोहर अकरम, मुझे तुम्हारी अक्ल पर अफसोस आता है।
4: मुझे तुम पर अफसोस आता है दिलारा, तुमने अपने बूढ़े बाप को चीनों की तरह नोच नोच कर खा लिया। क्या तुम उसकी बेटियां नहीं हो? क्या वो तुम्हारा बाप ना था? तुम नालायकों ने उसे पागल बना दिया। अगर सदाम के दिल में रहम आया, अगर ये नमक खुआरी का फर्ज बजा लाया तो इसने कौन सी गुनाहगारी की?
3: ओ खुदा, इन बेटियों के दिलों में इंसाफ दे।
2: चुप बदमाश, क्या ये इंसाफ नहीं है कि तू खाक और खून में मिलाया जाए, और बैरम का जिसने तेरा पुर फरेब खत हमें ला कर दिया है रुतबा बढ़ाया जाए?
3: ओ खुदा, क्या मेरे बेटे बैरम ने मेरे साथ धोखा किया? अफसोस, अब मेरी आंखें खुल गई, ना कसूर परवेज के साथ भी बैरम ने ही दगाबाजी की।
1: ऐसी अंधी अकल भी किस काम की जो ये भी नहीं देख सकती कि सादान के साथ नेकी करने से क्या बुराई होगी।
4: सिपाहियों, छोड़ दो सादान को।
1: ये नहीं छूट सकता।
4: सिपाहियों, तुमने मेरा हुक्म नहीं सुना?
2: वो नहीं सुन सकते।
4: मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इन दोनों औरतों को कैद कर लो।
1: और मैं भी हुक्म देती हूँ कि अकरम का सर काट लो।
4: सिपाहियों, आगे मत बढ़ो। सिपाहियों, बदमाशों!
0: ऐ खुदा, ये क्या हो रहा है?

0: वाह वाह, मौसीकी भी क्या उम्दा सुन है। इसे सुनकर तबीयत बहल जाती है, मगर मेरा दिल तो उस वक्त खुश होगा जब मेरे सर पर खाकान का ताज होगा और इस हाथ में सल्तनत की बागडोर होगी। अगर मेरा आज का सोचा हुआ दांव चल गया तो ये सब कुछ भी बहुत जल्द हाथ आ जाएगा।
1: क्यों बैरम?
0: कौन? ओ हुजूर हैं।
1: बैरम, तुमने फिर वही अदा दिखाई। देखो, अगर तुम मुझको हुजूर कहकर पुकारते रहे तो मैं ऐसी मोहब्बत से बाज आई।
0: क्यों प्यारी माह पारा, क्या तहजीब से बात करना भी कोई बुराई है?
1: खूब तो मालूम हुआ कि तुम्हारे दिल में मेरी इज्जत है, मोहब्बत नहीं।
0: नहीं माँ पारा, इज्जत और मोहब्बत दोनों।
1: जी हाँ, अगर सारा दिल ही मेरी मोहब्बत में वक्फ कर दिया होता तो दिलारा की मोहब्बत को कहाँ रखते।
0: प्यारी माँ पारा, तुम्हारा दिल कितना बदगुमान है, मगर मैंने कल जो बात कही थी कुछ उसका भी ध्यान है?
1: हाँ बैरम, मैं तमाम रात सोचती रही मगर मुझे कोई तजवीज नजर नहीं आई, कुछ तुम ही बताओ।
0: तो सुनो, खाकान और जारा का कत्ल करा दो।
1: लेकिन शायद दिलारा इसके खिलाफ हूँ।
0: हो क्या, अरे वो तो है ही। देखो प्यारी, अगर तुम ये चाहती हो कि इस सल्तनत का तुम्हारे सिवा कोई हकदार ना हो तो एक तदबीर करो।
1: वो क्या?
0: देखो, रैयत समझती है कि खाकान और जारा पर बहुत जुल्म हुए, इसीलिए लोग बलवा कर उन्हें छुड़ाना चाहते हैं। अगर वो दोनों आजाद हुए तो ये सर और ताज दोनों जाते रहेंगे।
1: तब?
0: इसलिए मैं आज दो कातिलों को भेजकर खाकान का कत्ल करा दूंगा।
1: इसके बाद?
0: इसके बाद तुम कैदखाने में जाकर जारा का अपने हाथ से कत्ल कर देना और जारा के कत्ल का इल्जाम दिलारा पर लगा देना। सोचो मत। देखो, ऐसा करने से खाकान मेरे हाथ से, जारा तुम्हारे हाथ से और दिलारा बागी रियाया के हाथ से शहीद होगी और फिर हमारे लिए हमेशा की ईद होगी।
1: अच्छा, तो मैं जाती हूँ।
0: ऐ मेरे दिल की रोशनी।
1: ओ बैरम, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, जाती हूँ। हो
0: हाँ?
1: बहुत हो, लैला मजनू की जोड़ी जा रही है। क्यों बैरम, अब तो खूब मुलाकातें होती हैं, घुल मिल के बातें होती हैं।
0: दिलारा, क्या खास बातें होती हैं, जाने भी दो दिलारा।
1: क्यों, खैर तो है?
0: है मेरी प्यारी दिलारा, शायद जमाने का खून सफेद हो गया है या इन सितारों का कुछ उल्टा फेर हो गया है।
1: है? ऐसा भयानक मजमून?
0: खून, खून प्यारी दिलारा, तुम्हारा खून।
1: मेरा खून? सबक
0: दिलारा, ये तो सबको मालूम है कि रैयत समझती है कि खाकान और जारा पर बहुत जुल्म ढाए गए हैं, इसलिए रैयत बलवा कर उन्हें छुड़ाना चाहती है।
1: फिर?
0: इसलिए महापारा को ये यकीन हो गया है कि अगर वो दोनों कैद से छूटे तो ये सर और ताज दोनों जाते रहेंगे। इसलिए महापारा आज ही रात को खाकान को दो कातिलों से कत्ल कराएगी और तब जारा को अपने हाथ से खाक और खून में मिलाएगी और उसके कत्ल का इल्जाम तुम पर लगाएगी।
1: इस कदर नियत में फितूर?
0: हाँ प्यारी दिलारा, अब तो तुम समझ गई होगी कि इसका मतलब क्या है।
1: यही के खाकान को कातिलों के हाथ से और जारा को अपने हाथ से और मुझे बागी रैयत के हाथों से मरवा दिया जाए
0: और खुद ताज और तख्त की मालिक बन जाए। मगर तुम उस नागिन को डसने का मौका ही क्यों दो?
1: तो क्या करूं?
0: क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस वक्त महापारा की छुरी जारा के खून में डूब चुकी हो तो फौरन तुम वहां पहुंच जाओ और शोर करके उसे गिरफ्तार करवा दो।
1: लेकिन अकेली मैं?
0: फिक्र मत करो,

0: आज रात जितनी मदद मुझसे हो सकेगी मैं करूंगा, और कल सुबह तुम्हें इस मुल्क की अकेली मलिका बनने की मुबारकबाद देने सबसे पहले मैं ही आऊंगा कब्रिस्तान में।
1: ठीक है, तो मैं जाती हूँ और उसकी टोर लगाती हूँ।
0: हाँ जरूर। वाह मियां बैरम वाह। इन सयानी डायनों को शीशे में उतारना यारों ही का काम है। वाह पैरम। माह पारा ताकत और जोश में दिलारा से कहीं ज्यादा बढ़कर है। जब ये भूतनी उस चुड़ैल से लिपटेगी तो उसके एक ही वार में इसका बेड़ा पार होगा। फिर जो भी बाकी रहा वो सुबह मेरे तमंचे का शिकार होगा। फिर बंदा अकेले ही इस मुल्क का मालिको मुख्तार होगा।

0: दे।
1: क्या नींद में?
2: कौन हो तुम?
0: शोर मत मचाओ।
2: क्या चाहते हो तुम?
0: दो आदमियों के लिबास में एक शख्स की मौत।
2: मौत किसकी?
1: तुम्हारे अब्बा की।
2: क्यों? इनका कसूर, इनका गुनाह?
0: कोई नहीं।
2: क्या इसीलिए कत्ल करते हो कि ये बेकसूर हैं?
0: चुप हो जाओ। कामिने एक तड़पती हुई लाश देखना चाहते हैं।
2: इस गरीब को तुमने कत्ल भी किया तो क्या पाओगे? मेरे भाइयों, मैं एक शहजादी होकर तुमसे भीख मांगती हूँ कि मेरे बाप की जिंदगी बख्श दो।
1: बस चुप रहो।
0: उठाओ बूढ़े को। हाँ। से बजा से।
3: कौन है?
2: नहीं।
3: कौन है? छोड़ दो, छोड़ दो। अरे मेरी तारा को छोड़ दो, वरना मैं दांतों से
2: हाय हाय जालिम, वो क्या करते हो? खुदा के लिए मेरे अब्बा पर तरस खाओ, खुदा के लिए तरस खाओ।
3: छोड़ दो, ना बुरा दो, मैं तुम्हारा शहंशाह हूँ।
1: अरे शहंशाह थे, अब नहीं हो।
0: बहुत थोड़ी देर बाद तुम कुछ नहीं रहोगे, समझे? लाश में तब्दील हो जाओगे। खबरदार,
4: शहंशाह के साथ ये सलूक करने से पहले तुम्हें मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा। आओ, आओ सामने आओ।
0: अरे अरे, ये तो शहजादी जारा का शौर है।
1: हाँ हाँ,
0: बेकार जान गंवाने से क्या फायदा? हमारी रकम तो हमें मिल गई।
4: भाग कर कहाँ जा रहे हो? हिम्मत तो सामना करो, ठहरो, रुक जाओ। भाग गए बुजदिल। चलिए शहंशाह, शाही दरबार आपका इंतजार कर रहा है।
3: मैं शहंशाह? शाही दरबार? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। ए नेक दिल नौजवान, तुम कौन हो?
4: शहंशाह, मैं आपकी छोटी बेटी जारा का शौहर हूँ। आइए मेरे साथ आइए शहंशाह, आइए।
3: चलो नौजवान, चलो।

0: भेड़िए आए हैं और उनको पकड़ कर ले गए हैं। आसमान सुन रहा था, ये जमीन देख रही थी, मगर किसी ने तरस न खाया, किसी ने उनको न बचाया।
1: जारा, अब तुझे भी कोई न बचाएगा।
0: कौन? महापारा, मेरी अच्छी बहन, दौड़ दौड़, वरना वो बेचारा गरीब जल्लादों के हाथों कत्ल कर दिया जाएगा।
1: कौन गरीब, कौन बेचारा?
0: अरे क्या तू नहीं जानती, वही गरीब जिसकी बदौलत आज तू शहजादी कहलाती है।
1: क्या तेरा बाप?
0: मेरा बाप? तो क्या वो तेरा बाप नहीं? क्या तू उसके गोश्त और लहू से पैदा नहीं हुई?
1: बस खामोश, मैं जबान काट ली जाएगी।
0: तू जबान काट लेगी?

0: के लोगों को आंख के इशारे से सारी बात बताऊंगी,
1: वो भी फोड़ दी जाएंगी।
0: तो मैं अपना सर उस गरीब के लिए तेरे कदमों पर झुकाऊंगी,
1: वो भी अलायदा कर दिया जाएगा।
0: रहम रहम जल्लाद रहम, ओ खुदा।
1: बस हो चुका, अब सर झुका, मैं खंजर निकालती हूँ। ये कैसी आवाज, कोई अंदर तो नहीं छुपा हुआ है? देख क्या,
0: हाय हाय, कोई तरस खाने वाला नहीं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? महापारा तो गई, मैं कहीं छिप जाऊं। हाँ, उधर छिप जाती हूँ, उधर छिप जाती हूँ।
2: प्यारे बैगम, जारा का पलंग तो खाली है, कहाँ है जारा और कहाँ है महापारा?
3: अब शायद महापारा सारा को कत्ल करने के लिए दूसरे कमरे में ले गई हो। मैं देखता हूँ, तुम यहीं ठहरो।
2: मैं यहीं ठहरती हूँ, थोड़ी देर पलंग पर लेट जाऊं। कितना सुकून है।
1: कोई नहीं था, मुझे वहम हुआ तो जारा पलंग पर सो गई। ठीक है, अब मैं अपना काम करो। ले एक नापाक खस कम जहां पाक।
0: बहन ने बहन का खून किया, नहीं देख सकती
1: है? ये कौन थी, जारा? और पलंग पर कौन, दिलारा?
0: उफ, ये मैंने क्या किया?
2: जो तू चाहती थी।
1: मैं क्या चाहती थी दिलारा?
2: जारा का खून बहाए और उसका इल्जाम मुझ पर लगा।
1: दिलारा, तू धोखा खाती है।
3: गज़ब, ये क्या हो रहा है?
2: नहीं महापारा, धोखा नहीं, ये बहरम भी यहाँ है। बहरम खामोश क्यों?
1: क्या बैरम, तो क्या ये सब बैरम ने कहा?
3: ये कमबख्त तो सब कुछ कह देगी, फौरन यहाँ से भागना चाहिए।
1: ठहर शैतान बैरम, भागता कहाँ है? दो जखी कुत्ते, अपनी नापाक हरकत का इनाम तो ले जा।
3: मार डाला, लेकिन महापारा तू भी नहीं बच सकती, तू भी अपने गुनाहों का इनाम ले।

0: अब्बा जान, कदम रंजा फरमाइए। ये ताज और तख्त जो मुद्दत से आपके कदमों से महरूम हो गया था, इसे फिर दोबारा मुबारक बनाइए।
1: बस ए मेरे खून के सबसे ज्यादा पाक कतरे, अब मेरा तख्त वो लकड़ी का तख्ता होगा जिस पर मौत सुलाकर उस बादशाहों के बादशाह के दरबार में ले जाएगी।
0: अब्बा जान,
1: बाप की जान कुर्बान, गौर करके देख बेटी, ये वही हाथ हैं जिन्होंने मगरूर होकर तेरा हक छीना था। अब इसके इंसाफ को देख, इन्हीं हाथों से तेरा हक तुझे वापस दिलाता है।
2: यूं पाते हैं एजाज जो करते हैं अमन नेक।
1: मेरे शरीफ दोस्त सरसलाम, तुमने जो मेरी खिदमत की है उसका शुक्रिया मैं जबान से अदा नहीं कर सकता।
2: बुझो, इस गुलाम को बार बार क्यों शर्मिंदा करते हैं? सच्ची हमदर्दी

0: और हमेशा याद रखने वाली वफादारी वो थी जो शरीफ सैदान ने दिखाई।
1: हाँ, मेरा बावफा सादान, शहीदे जफा सादान, जोहाक ना फिराउन ना शद्दाद ने किया, वो तुझ पर और मुझ पर मेरी औलाद ने किया। सीने में हो गया है दिल ना उम्मीदे खून, देखा तो क्या सुना भी ना था ऐसा सफेद खून।
2: अब्बा जान, जो खुदा को मंजूर था उसका होना जरूर था।
1: बेटी बजा फरमाती हूँ, आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक मरतबा दोबारा मेरे सामने हाथ मिलाओ। अहले जमी पे सूरते मेरे फलक रहो, जिंदा रहो, निहाल रहो, हश्र तक रहो।
2: आमीन।

0: सफेद खून नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप स्वर्गीय आगा हश्र कश्मीरी के मंच नाटक का श्री सत्येंद्र शरत द्वारा किया रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजयलक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री कीमती आनंद, बीएल टंडन, योगेंद्र टिक्कू, माला कुमार, गीता वर्मा, मंगत राम, कमल साथी, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, राकेश कुमार शर्मा और शारदा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फेडेज पर हमारी नशियात का सिलसिला जारी है। यहां सुनिए फिल्मी नगमे। फिल्मी मौसीकी का आगाज लैला मजनू फिल्म के नगमे से, मोहम्मद रफी की आवाज में, मौसीकी जयदेव की।

0: दोनों फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार थे साहिल लुधियानवी और मौसीकी तरतीब दी थी जयदेव ने। जयदेव की ही मौसीकी में एक और नगमा आप तक पहुंचाते हैं, आवाजें हैं रूना लैला और भूपेंद्र की, फिल्म है घरौंदा, नगमा निगार गुलजार।
1: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

0: ने आशा भोसले का गाया हुआ जयदेव की मौसीकी।
1: नदी

वृक्ष धारे नन्ना वृक्ष धारे न जाओ शाम पैया परू, वृक्ष धारे न जाओ शाम पैया परू।

नीच धारे जो जाओ तो जय पे करो उस पारी।

लिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए रमेश शास्त्री का लिखा हुआ नगमा बरसात फिल्म से लता मंगेशकर के आवाज में। मौसीकार हैं शंकर जयकिशन।

इसमें अहमद के साथ ही फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी। ये आकाशवाणी है। अब आप तलीम अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत के मकसद के हुसूल की समत आगे बढ़ते हुए तंदुरुस्त और जहनी एतबार से मजबूत रहें। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज करते हुए कहा कि नौजवानों को मुनशियात से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। अमरीका में भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा ने जोर देकर कहा है कि अगर पाकिस्तान दो तरफा मामलात पर इश्तराक चाहता है तो उसे दहशतगर्दी का अपना बुनियादी ढांचा खत्म करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक राय का दावा करते हुए ईरान पर फौजी हमले फिलहाल रोक दिए हैं। यूरोपीय यूनियन स्पेन के सियूटा में माइग्रेशन बहरान को हल करने के लिए मंगल को इमरजेंसी बातचीत का अहतमाम करेगी। और बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में पहली बार बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क विकसित भारत बनने की समत आगे बढ़ रहा है और मुल्क के नौजवानों को तंदुरुस्त जहनी एतबार से मजबूत और खुद एतमादी से सरशार होना चाहिए। आज नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के आगाज के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि नौजवानों को मुनशियात से हमेशा दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसके आगाज के साथ साथ मुनशियात की लानत के खिलाफ पूरे मुल्क में जनभागीदारी मुहिम भी शुरू हो रही है जो 100 हफ्ते तक जारी रहेगी। जनाब मोदी ने कहा कि मुआशरे से मुनशियात के खात्मे के लिए बेदारी को फरोग देने और अवामी शमूलियत की हौसला अफजाई के लिए पूरे मुल्क में हर इतवार को हफ्तावार सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि मनुष्यात की लत से लोग अपने मकासद और अपने ख्वाब पूरे करने के रास्ते से दूर हो जाते हैं। इस लानत से न सिर्फ कुंबे बर्बाद होते हैं बल्कि मुल्क की ताकत भी कमजोर होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को मनुष्यात की लानत से महफूज रखने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि नौजवानों को इस लानत के संगीन मुजमरात को समझना चाहिए क्योंकि इससे आखिरकार करियर तबाह हो जाते हैं और मुस्तकबिल भी बर्बाद होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कुंबों पर जोर दिया कि वो मुआशरे में बदनामी के डर से मुनशियात के इस्तेमाल के केसों को पोशीदा न रखें। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के कुंबों को बरवक्त मदद के लिए आगे बढ़कर खुलकर बात करनी चाहिए और माहिरीन से सलाह लेनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुंबों को इब्तदाई मरहले में ही तंबीह की अलामतों का पता लगाने की खातिर खुली बातचीत का माहौल कायम करना चाहिए और बच्चों को बरवक्त मदद फराहम करनी चाहिए। जनाब मोदी ने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा और प्रोफेसर साहबान से भी अपील की कि वो तलबा के साथ गुफ्तगू में मुनशियात की लानत के खतरात के बारे में बाकायदगी से बात करते रहें और कैंपस में बेदारी की मुहिम का एहतमाम करें। इस प्रोग्राम में मुल्क भर में 28,000 मुकामात से 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम के शुरका में स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, यूथ क्लब, गैर सरकारी तंजीमों और रूहानी तंजीमों के शुरका के साथ साथ माय भारत और नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकार भी शामिल हैं। अमरीका में भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा ने जोर देकर कहा है कि अगर पाकिस्तान दो तरफा मामलात पर भारत के साथ इश्तराक चाहता है तो उसे दहशतगर्दी के उस बुनियादी ढांचे को पहले खत्म करना होगा जो उसने बना रखा है। पाकिस्तान ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे को मुअत्तल रखने के भारत के फैसले पर एहतजाज के लिए हाल ही में इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस तलब की थी। जनाब विनय मोहन क्वात्रा ने एक न्यूज मैगजीन में शाये होने वाले मजमून में पाकिस्तान के एक साबिक वजीर खारिजा के उस बयान पर नुक्ताचीनी की है जिसमें उन्होंने दरियाए सिंध से मुतालिक

0: अबी मुआहदे के बारे में पाकिस्तान के मुतालबात पूरे न होने की सूरत में भारत के खिलाफ जंग की धमकी दी थी। भारतीय सफीर ने कहा कि अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत के खिलाफ जंग लड़ने की धमकी देना पाकिस्तान की एक पॉलिसी बन गई है। जनाब कतरा ने यह भी कहा कि कॉन्फ्रेंस में तलब करके भारत को मुर्रिदे इल्जाम ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को पानी की अपनी कमजोर सलाहियत को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी हर अंदरूनी नाकामी के लिए भारत पर इल्जाम लगाना पाकिस्तान की पुरानी रविश है। पाकिस्तान में बलोच शहरियों की मुबैना तौर पर जबरी गुमशुदगी के सिलसिले में बढ़ती हुई तशवीश के दरमियान इंसानी हकूक से मुतालिक एक तंजीम ने इल्जाम लगाया है कि मजीद 5 बलोच शहरियों को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जबरी तौर पर लापता कर दिया है। बलोच नेशनल मूवमेंट के इंसानी हकूक से मुतालिक शोबे पांग के मुताबिक मुतअद्दिद बलोच शहरियों को मुबैना तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे, पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसियों और फौजी एहलकारों ने हिरासत में लिया है। तंजीम का कहना है कि जबरी गुमशुदगियों का यह सिलसिला पाकिस्तान के बैन अलाक्वानी इंसानी हकूक से मुतालिक जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है और इसकी वजह से मुतासर कुनबे तवील अरसे से शदीद तौर पर जहनी अजियत का सामना कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने ईरान पर फौजी हमला फिलहाल न करने से इत्तेफाक कर लिया है। इससे कबल ईरान और मगरबी एशिया के कई मुल्कों ने हमले रोकने की अपील की थी। सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि एक मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक राय हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका फौजी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सिफारतकारी के लिए मौका फराहम करने की खातिर हमलों को मुअत्तल करने का फैसला किया है। चीन में भारत के सफीर विक्रम दुर्रईस्वामी ने कहा है कि अगले हफ्ते से भारतीय वीजे के लिए दरख्वास्त देने वाले चीन के शहरियों के लिए दस्तावेजी अमल को मजीद आसान बनाया जाएगा ताकि उनके लिए भारत का सफर आसान हो सके। बीजिंग में भारतीय सिफारतखाने के पहले ओपन हाउस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सिफारतखाना सकाफती सरगर्मियों में तौसी, काम से मुतालिक मसाइल का सामना करने वाले भारतीय शहरियों के लिए कानूनी मदद करने और कौंसिल खाने की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए ओपन हाउस प्रोग्राम का बाकायदगी से इनेकाद करेगा। रूस में एक इटालियन रेस्तरां में घरेलू साख्त का धमाका खेज हरबा फटने से 3 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए। यह धमाका गुज़िश्ता रात वस्ती मास्को के कुर्दियास के स्क्वायर में हुआ। रूस की कौमी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी के मुताबिक धमाका खेज मादा ले जाने वाली एक खातून को सिक्योरिटी गार्ड ने उस वक्त रोका जब उसने रेस्तरां में दाखिल होने की कोशिश की। यूरोपीय यूनियन, स्पेन और कुछ रुकन मुल्कों के दरमियान तनाजा के बाद मंगल को सियोटा में माइग्रेशन बहरान से निमटने के लिए हंगामी मुजाकरात का इनेकाद करेगी। मराकश से स्पेन के इलाके में 60,000 तारिकीन वतन के दाखिल होने के बाद यूरोपीय यूनियन के 22 ममालिक ने एक मजबूत रद्देअमल और मजबूत बैरूनी सरहदी कंट्रोल का मुतालबा किया है। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ख्वातीन के ताइपे ओपन सुपर सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में वियतनाम की 6 नंबर की खिलाड़ी ग्वेन थी लिन को 21-16 से हरा दिया। इस तरह 17 साल की तन्वी शर्मा ने पहली बार BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है और वो ताइपे ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों का आज आखिरी दिन है और भारत सोने के 13 तमगों समेत 39 तमगों के साथ चौथे मुकाम पर है। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत के मकसद के हुसूल की समत आगे बढ़ते हुए तंदुरुस्त और जहनी एतबार से मजबूत रहें। वज़ीर आज़म ने नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज करते हुए कहा कि नौजवानों को मुनशियात से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए। अमरीका में भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा ने जोर देकर कहा है कि अगर पाकिस्तान दो तरफा मामलात पर इश्तराक चाहता है तो उसे दहशतगर्दी का अपना बुनियादी ढांचा खत्म करना होगा। यूरोपीय यूनियन स्पेन के सियोटा में माइग्रेशन बहरान को हल करने के लिए मंगल को इमरजेंसी बातचीत का एहतमाम करेगी। और बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में पहली बार BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1,071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर।

0: और डीडी फ्रेडिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।
0: तब तक के लिए
1: आकाशवाणी पर सर्विस देंदी एक पंजाबी सेवा है। शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दा आगाज कर रहे हैं शेरी जबान सरायकी दे प्रोग्राम झोक माही दे नाल।

0: ऑल इंडिया रेडियो दास सिराय की प्रोग्राम है हरजीत कौर हाजर है तुहाडे किते प्रोग्राम घिन के मेरा ख्याल है तुसा सारा ठीक ठाक हो सो ते वाला शुरू करें दे हाँ प्रोग्राम सब तो पहला मैं तुहा को एक कहानी सुनवे दी पई हाँ कहानी दा नाम है कंजूसी दा फल कहानीकार हिन
1: मैं प्रेम सरूजा अपने सब सुनने वाले भेणा ते भरावां को राम राम ते नमस्ते करे ना अज मैं तुहाडे वास्ते एक कहानी गिन के आया हां हुण कहानी दा नां है कंजूसी दा फल एक गांव विच एक जमींदार रांदा हाई हुंदा नाम छज्जू मल हाई छज्जू मल आखण को ते सेठ हाई पर हाई बहु कंजूस कंजूस ही एडा के ढेड भर के रोटी भी कहना खांदा हाई उत्तों ना अपनी कुआर को खावन देंदा हाई तुसा आप सोचो जड़ा बंदा एडा कंजूस होवे ओ अपने नौकर को पूरी रोटी कित्थों देसी एक डीं दी गाल है हुंदी कवार सवेरे सवेरे हुंदे कोल आ खड़ोती छज्जू मल ने आख्या के गाल है सवेरे सवेरे आ खड़ोती है हुंदी कवार ने आख्या तुहाडी मां कल राती मेरे सुपने विच आई हाई वल क्या थिया छज्जू मल ने आख्या ओए थीवना के हे तुहाडी मां मेको अखेंदी है मेको भुख लगी खड़ी है कोई शह खावन को दे वल तू क्या कीता छज्जू मल ने आख्या ओए करना के आई थोड़ी जी मिठाई रसोई विच पई आई मैं वो मिठाई मां को दे दिती ए गाल सुनदे ही छज्जू मल को भा लग गई ओ उच्चा उच्चा अपनी कवार नाल लड़न लग पिया हुंदी उच्ची उच्ची आवाज सुन के गांव वाले आ खड़ोते उन्होंने छज्जू मल को पुछया के गाल है छज्जू क्यों अपनी कवार नाल लड़दा पे छज्जू मल ने आख्या इन्हें मेरा बहु वड्डा नुकसान कर दिते गांव वाले पुछन लगे कई शायद नुकसान कर दिते सर छज्जू मल ने आख्या इन्हें मेरी मां को मिठाई खवा दिती है ओए तेरी मां ते 5 साल पहले मर गई आई इन्हें कड्डू हूं को मिठाई खवा दिती ओए कल रात को मेरी मां हिंदे सुपने विच आई हाई ही मोई ने हूं को मिठाई खवा दिती गांव वाले आखन लगे कि छज्जू के गल ग्रेंदा पे तेरी कवार ने मिठाई सपने विच खवाई है सचमुच थोड़ी खवाई है छज्जू मल ने आख्या भाई जी अगर खवावनी आई ते रात दी रोटी बची पई आई हुकू खवा देंदी मिठाई खवावन दी के लोड़ आई ए गाल सुन के गांव वाले पिट मरे ते

गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम दा आखरी गीत है आ सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया दिल वाचा मारता आजा परदेसिया वास्ताई प्यार दा।

1705 ईस्वी विच इस किले नूं अपने चरणा दी छो बख्शी सी। गुरु साहिब दे आगमन ने इस किले नूं एक अध्यात्मक सुकून प्रदान किया। गुरु साहिब दी पवित्र याद विच किले दे अंदर एक सुंदर गुरुद्वारा किला मुबारक सुशोभित है, जो अज दुनिया भर के श्रद्धालुओं लई अथाह श्रद्धा ते शांति दा केंद्र है। समें बठिंडे दे किले दी वास्तु कला अपने आप च विलखण ते प्रभावशाली है। कई लेखकां ने अक्सर इस दी विशालता दी तुलना एक समुद्री जहाज नाल कीती है, जो रेगिस्तान भाव मालवे दे सुके इलाके च खड़ा होए। एक किला मुख तौर ते विशाल इट्टां ते मिट्टी ते गारे नाल बनिया है। इस दीआं मोटीआं कंधां ने सदियां दे मौसमां ते हमलावरां दीआं तोपां दे गोलियां दा सामना बड़ी निडरता नाल कीता है। किले दे उच्चे ते विशाल गोलाकार बुरज इस नूं एक शानदार ते रूपदार दिख प्रदान करदे ने। सानूं इह बुरज पुरातन समें विच दुश्मन दीआं हरकतां ते नज़र रखण लई वरते जांदे सन। इह किला पंजाबी कवियां इतिहासकारां ते नावलकारां लई हमेशा प्रेरणा दा स्रोत रहा है। इस किले दीआं कंधां ते उहदीआं चुरड़ियां उहनां च बेअंत कहानियां राज ते दर्द लुके ने। इस किले ने पंजाब दे मालवा खेतर दे लोक गीतां ते बोलियां विच वी अपनी डूंघी थां बनाई है, जिथे इह स्थानक लोकां दी पछाण ते माण दा प्रतीक बन के उभरदा है।

नाल पानी ही पिला दे घुट नहीं हो तेरा झूठा कानू करिए गलास गोरिए संग भुख नाल पानी ही पिला दे घुट नहीं हो तेरा झूठा कानू करिए।

0: हां जी बाल साहब कथा संग्राम दी दा दूजा भाग ए आपां सजणा सांझा करदे आ
1: सुना दिओ जी।
2: मैं इतिहास मां भारती दियां गुलामी दियां जंजीरां तोड़न लई भारत दे वीर सपूतां दे संघर्ष ते कुर्बानियां नाल लबरेज संग्राम दा इतिहास। मैं तुहाडे नाल वादा कीता सी कि तुहानूं विस्थार नाल दसांगा ब्रिटिश हकूमत तों आजादी हासिल करन लई भारतीयां दे संघर्ष दी एक एक गल एक एक घटना बारे ते नाले तुहानूं सुनावांगा आजादी दे इस संग्राम विच अपने प्राणा दी आहूति देण वाले महान वीर योद्धा दी गाथा। मैं अपना वादा निभाउण ते कथा संग्राम दी सुनाउण आ गया।

इस क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ शहर से। मेरठ के विद्रोही सैनिकां ते पुलिस फोर्स ने अंग्रेजा के खिलाफ एक सांझा मोर्चा गठित करके क्रांतिकारी घटनावां नूं अंजाम दिता। सैनिकां दे विद्रोह की खबर फैलदे मेरठ की शहरी जनता ते आले दुआले दे पिंडां दे लोक भी मेरठ की सदर कोतवाली विच इकट्ठे हो गए। इसे कोतवाली दे कोतवाल धन सिंह की अगवाई विच मेरठ की पुलिस बागी हो गई सी। कोतवाल धन सिंह ने मेरठ की जनता की अगवाई की ते रात दे ठीक 2 बजे

ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 56 ਘੋੜ ਸਵਾਰ 38 ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ 10 ਤੋਪਚੀ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, छात्र मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन समझौतों में से एक के अंतर्गत चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रौद्योगिकी आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद और ऑस्ट्रेलिया के रीबाउंड संस्था के सहयोग से लागू की जाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर में प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। केरल में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूब नारंग महिलाओं की 78 किलोग्राम

0: सभी किसान भाई बहनों को अरुणेश कुमार और राजेश कुमार का राम राम। तो किसान भाई बहनों, आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत को लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं और आप सभी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज अपने इस कार्यक्रम में हम आपको पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत तो सुनाएंगे ही, उपदेश भी सुनाएंगे और इसके साथ साथ आपके संदेश भी लेंगे और आपको एक योजना नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी बताएंगे और आपका जो सवाल आए हैं खेती किसानी से संबंधित जो आपकी समस्या है उसका समाधान भी करेंगे।
1: बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले में जो फरमाइश में कुछ नाम रह गए हैं वो पहले बताना चाहेंगे कि सुरेश चंद गोला को सुनने के लिए जो मानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति का मैसेज आया है। मध्य प्रदेश के राजपुर से घेसु दिलवारे का संदेश आया है। स्वर्ण सिंह गांव लोहरगढ़ ठाकुरवाला से दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरनूर और सुखदीप सिंह का मैसेज आया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत बठाना पाटन जिला दुर्ग से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा का मैसेज आया है। इसके अलावा इनको सुनने के लिए चौधरीवास हिसार से राजू अग्रवाल, केशव, विवेक, काया है और ये अगला मैसेज है। सालेम महासमुंद छत्तीसगढ़ से जीतू ध्रुव, केवल, किरण, दिव्यांशी, खेमू और
0: दुर्गा। इसके अलावा एक संदेश हमारे पास भी आया है जस जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का।
1: इसके अलावा जो है वो इनको सुनने के लिए जसपुर उत्तराखंड से रियासत, नाजमा, रियाज, मोहम्मद, समरीन और उसके अलावा जो अगला मैसेज है वो आया है गांव नलोई सिवान सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन, राजबाला, कार्तिक, कुसुम और वेदांश का।
0: और हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और वाडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा और जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलेस और मेरठ से कविता गौड़ और दिग्दर्शन का।
1: इसके अलावा राजस्थान के गोविंदगढ़ माझी से राजू टुटेजा, खुशदेल, उर्मिला टुटेजा। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं सुरेश चंद गोला से।

0: अभी हमारे किसान भाई बहनों ने ये उपदेश सुना और सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोले का ये महीना कहा जाता है और हम सभी भोले के भक्त हैं और भगवान भोले सबका मंगल करें, यही हम जो है कामना करते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा कर लेते हैं राजेश भाई नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में।
1: बिल्कुल, ये वो योजना है जिसका उद्देश्य महिला स्व सहायता समूह को कृषि ड्रोन उपलब्ध कराकर उन्हें ड्रोन सेवा प्रदाता बनाना और किसानों को आधुनिक कृषि सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराना है।
0: बिल्कुल, और इस योजना के तहत 2024-25 में और 2025-26 की अवधि के दौरान लगभग 15,000 चयनित महिलाओं को स्वयं सहायता समूह यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उनको ड्रोन प्रदान किए गए और इस वजह से उनको ये सुविधा दी गई कि वो किसानों को किराए पर कृषि संबंधित सेवाएं

0: जैसे कि उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव करने वाली जो दवाइयाँ आती हैं ये सब दे सकें और ड्रोन की सरलता से उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें। तो इससे फायदा ये होता है कि महिलाएं एक तरफ सशक्त होती हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारे किसान भाई बहनों को भी काफी इससे मदद मिल जाती है।
1: बिल्कुल अरुणेश, और नमो ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय सेंट्रल सेक्टर योजना है, और जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से जहां एक तरफ सशक्त बनाना है, वहीं खेतों में ड्रोन तकनीक का उपयोग बढ़ाना, किसानों की जो लागत है वो कम करना और कार्यकुशलता को बढ़ाना है। और इस योजना की जो प्रमुख विशेषताएं वो ये है कि 15,000 चयनित महिलाएं SHG को ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। ड्रोन पैकेज पर 80% तक केंद्रीय वित्तीय सहायता, अधिकतम 8 लाख तक देने का प्रावधान है। शेष राशि के लिए ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। और एक सदस्य को 15 दिन का ड्रोन पायलट प्रशिक्षण, दूसरे सदस्य को परिजन को 5 दिन का ड्रोन सहायक प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसके लिए जो पात्रता है वो ये है कि महिला स्व सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए, SHG का संबंधित सरकारी मानदंडों के अनुसार चयनित होना चाहिए हो। योजना का लाभ व्यक्तिगत किसानों के बजाय चयनित महिला SHG को दिया जाता है। तो ये इस योजना की जो है वो खास बातें हैं, और जो कई इसको लेकर के जो पहल है वो लगातार सरकार की तरफ से, आप अगर देखें तो जितनी भी योजनाएं हैं, सिर्फ नमो ड्रोन दीदी योजना ही नहीं, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनको उसका बेनिफिट मिले। और कई ऐसी योजनाएं हैं जो खासकर किसान भाई और बहनों को लक्ष्य कर वो योजनाएं लाई गई।
0: बिल्कुल, और इस योजना की एक और अच्छी बात यह है कि जो भी महिलाएं इस योजना के से जुड़ना चाहती हैं, उनका अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG यानी स्वयं सहायता समूह है, वो बना सकती हैं और उनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, टेक्निकल रूप से उनको दक्ष बनाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। और महिला स्व सहायता समूहों द्वारा ड्रोन स्प्रे सेवा किराए पर किसानों को प्रदान करने के लिए उन्हें वार्षिक 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित करने का मौका भी मिलेगा। तो ये बेहद अच्छी योजना है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हैं और अपने किसान भाई बहनों का मनोरंजन करते हैं।
1: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं उपदेश सूरज सिंह अधाना से।

0: ये सुन रहे थे सूरज सिंह अधाना से। और अब मैं देख रहा हूँ कि अवनेश भाई काफी देर से आप जो है वो लेटर जो है संदेश उसमें से सवाल निकाल रहे थे आप और पढ़ रहे थे लगातार, तो क्या है
1: हाँ
0: वो?
1: जी बिल्कुल, हमारे पास एक जो है मैसेज आया है और बहुत ही अच्छा सवाल दरअसल इन्होंने किया है। और जैसा कि आप जानते हैं राजेश भाई कि आजकल का जो मौसम है वो बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम की वजह से क्या होता है ना कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो अपना खेती किसानी से संबंधित जो भी कार्य करते हैं तो उसमें वो अतिरिक्त सावधानी रखते हैं। इसीलिए हमारे पास जो एक संदेश आया है और ये दरअसल सवाल के रूप में इन आया है कि क्या जो है हम आजकल का जो मौसम है यानी जो बारिश का मौसम है इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जैसे जो किसान भाई हैं उनको कौन कौन से खेती किसानी से संबंधित कार्य करना चाहिए। और ये मैसेज आया है हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन दिव्यांश का और मदन लाल वर्मा जी का। तो आप क्या कहेंगे कि भाई हाँ ये तो बात सही है, कहीं कहीं हमारे देश के कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, असम में तो बाढ़ आई हुई है, तो कहीं पर जितनी उम्मीद है उतनी ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, मौसम विभाग लगातार बारिश को लेकर के एक अपना भविष्यवाणी करता है। तो ऐसे में जो हमारे किसान भाई बहन हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो अभी इस हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो खेती और किसानी से संबंधित कौन कौन से कार्य कर सकते हैं इसके बारे में बताइए।
0: बिल्कुल, तो वर्मा जी का बड़ा अच्छा सवाल है और इनके सवाल के लिए जो कृषि वैज्ञानिक है उनका ये कहना है कि जो वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वो किसी प्रकार का छिड़काव न करें, खड़ी फसल और सब्जी नर्सरियों में उचित प्रबंधन रखें, दलहन फसलें और सब्जी नर्सरी में जल निकासी की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त रखें। धान की फसल में यदि पौध का रंग पीला पड़ रहा हो तो पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली और नीचे की हरी हो तो इसके लिए जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल करें और उसको हेप्टाहाइड्रेट 21% को 6 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से 300 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। इसके अलावा कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से किसानों को यह भी सलाह दी गई है कि बाजरा, मक्का, सोयाबीन और सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य जो है वो अगर मौसम साफ हो तो शीघ्र करें और सभी फसलों में सफेद मक्खी चूसक कीटों को नियमित निगरानी करें। ये वो समय है जब चारे के लिए ज्वार की बुवाई के लिए उपयुक्त समय है और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि किसान भाई पूसाचरी 9, पूसाचरी 6 और अन्य संकर किस्मों की बुवाई करें और बीज की मात्रा 40 किलोग्राम हेक्टेयर रखें। जिन किसानों के टमाटर, हरी मिर्च, बैगन, अगेती, फूलगोभी की पौध तैयार है वे मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई मैंडों पर करें और जल निकासी की उचित प्रबंधन रखें। इसके अलावा कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से भी सलाह दी गई है किसानों को कि इस मौसम में किसान ग्वार यानी पूसा नवबहार, दुर्गा बहार, मूली पूसा चितकी, लोबिया पूसा कमल, भिंडी पूसा A4 सेम और पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, पालक पूसा भारती चौलाई जो कि पूसा लाल चौलाई, पूसा किरण आदि फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार हो तो बुआई ऊंची मेड़ों पर कर सकते हैं। बीज किसी प्रमाणित जगह से खरीदें, जल निकासी का उचित प्रबंधन हो। किसान वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं, जल निकासी का उचित प्रबंधन रखें। इस मौसम में किसान स्वीट कॉर्न यानी माधुरी और वीन ऑरेंज साथ ही बेबी कॉर्न HM4 की बुआई कर सकते हैं, जल निकास का उचित प्रबंध करें। कद्दू वर्गीय और अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है क्योंकि वे परागण में सहायता करती है, इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। कीड़ों और बीमारियों की निरंतर निगरानी करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें और सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें। और आखिर में ये कि किसान प्रकाश पंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी लाइट ट्रैप। इसके लिए प्लास्टिक के टब या किसी बड़े बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशक दवाई मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल में गिरकर मर जाएंगे। इस प्रपंच से आप अनेक प्रकार के जो हानिकारक कीटों का नाश हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल राजेश भाई, आपने तो काफी विस्तार से हमारे किसान भाई बहनों को बता दिया है कि आजकल के मौसम को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ करना चाहिए, और ये जो आपने उनको जानकारी दी है ये जो है जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है उनसे जो आपकी बातचीत होती रहती है उसके आधार पर आपने ये हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी है। तो आगे बढ़ते हैं और अपने किसान भाइयों का मनोरंजन कराते हैं
0: और सुनते हैं माटी के लिए लाल मेरा वो क्या कह रहे हैं योगेश कुमार और उनके पूरे साथी।

0: और इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम कृषि जगत का समय समाप्त हो रहा है। तो हम अपने सभी किसान भाइयों को कहते हैं
1: विदा। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम, राम। और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार परासर और संयोजक शिव नंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7:35 हुए हैं।

0: जगजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे गजल। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को आपसे कुछ क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की। दिल्ली पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। उत्तरी रेलवे के दिल्ली मंडल ने नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को झंडी दिखाकर रवाना किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
5: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन और वैधानिक उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार 5,00,000 रूपये से 7,50,000 रूपये तक की मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित यह योजना पीड़ित परिवारों को निर्धारित परिस्थितियों में समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के साथ प्रशासनिक उत्तरदायित्व को और अधिक मजबूत करेगी। एक रिपोर्ट।
6: दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना दिल्ली जेलों में कैदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा भुगतान योजना 2025 के नाम से लागू होंगी। योजना केवल उन मामलों पर लागू होंगी जिनमें इस योजना की अधिसूचना की तिथि और उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। अधिसूचना के अनुसार कैदियों के बीच आपसी झगड़े अथवा जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना या मारपीट के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 7,50,000 रूपये का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, चिकित्सा और पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में 5 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक मृत्यु अथवा बीमारी से हुई मृत्यु के मामले में मुआवजा देय नहीं होगा। इसके अलावा जेल से फरार होने अथवा वैध अभिरक्षा से भागने के दौरान हुई मृत्यु और आपदा या विपदा के कारण हुई मृत्यु भी इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगी। योजना के तहत संबंधित जेल अधिकारी को प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के अंतिम कारण, कैदी के चिकित्सा इतिहास तथा मृत्यु से पूर्व उपलब्ध कराए गए उपचार का विवरण महानिदेशक दिल्ली को भेजना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार कानून के शासन, मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति

0: पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मयूर विहार फेज टू में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल की साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सा सेवाओं का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की तथा उनके अनुभव, सुझाव और अपेक्षाएं सुनी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हर मरीज का विश्वास सर्वोपरि है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा है कि किसी भी शिक्षण संस्थान की असल पहचान केवल उसकी रैंकिंग या अच्छे आधारभूत संरचना से नहीं, बल्कि उन जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों से होती है जिन्हें वो पीढ़ी दर पीढ़ी तैयार करता है। उपराज्यपाल ने यह बात दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित किरोड़ी मल कॉलेज के ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उपराज्यपाल ने कहा कि किरोड़ी मल कॉलेज 7 दशकों से अधिक समय से दिल्ली विश्वविद्यालय के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सभी 6 विदेशी नागरिक अपनी यात्रा के दौरान तय 15 दिन की समय सीमा से ज्यादा समय तक राजधानी के होटल में रुके पाए गए। पुलिस ने कहा कि विदेशी नागरिक के पास से पासपोर्ट, वीजा और यात्रा से जुड़े दस्तावेजों की जांच की मांग की गई, साथ ही विदेशी पंजीकरण कार्यालय के जरिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा विदेशी पंजीकरण कार्यालय ने उनके आने जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं और देश से वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी 6 लोगों को हिरासत केंद्र में भेज दिया गया है। उत्तरी रेलवे के दिल्ली मंडल ने रेलगाड़ियों में बिना टिकट की यात्रा की समस्या को रोकने के लिए नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यात्री वैध टिकट के साथ यात्रा करें और रेलगाड़ियों में अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके। इन अभियानों के परिणाम स्वरूप कई लोगों को पकड़ा गया और जुर्माना भी वसूला गया। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि जांच के दौरान बिना टिकट और अनियमित टिकट वाले कुल 101 यात्रियों का पता चला और 92,000 रूपये से अधिक का रेलवे राजस्व वसूला गया। दिल्ली सरकार ने राजधानी की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक सक्षम, आधुनिक और पेशेवर बनाने की दिशा में दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DSDMA के अंतर्गत कार्यरत स्टाफ के मानदेय में 100% तक की वृद्धि करने की घोषणा की है।
2: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय उन कर्मियों को न्याय दिलाने की दिशा में उठाया गया है जिन्होंने वर्ष 2009 से लगातार दिल्ली की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की रीढ़ बनकर कार्य किया, लेकिन पिछले 16 वर्षों में उनके मानदेय में एक बार भी संशोधन नहीं हुआ। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये संशोधन किसी प्रकार की अनुग्रह राशि नहीं बल्कि जिम्मेदारियों, अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप एक न्याय संगत तथा प्रतिस्पर्धी वेतन संरचना सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य में इस संवर्ग को और अधिक मजबूत तथा पेशेवर बनाने के उद्देश्य से प्रदर्शन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि करने पर विचार करेगी। साथ ही कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुरक्षा तथा प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और क्षमता निर्माण जैसे कल्याणकारी उपायों पर भी योजना लाएगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी सेक्टर 15 के श्री अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी में एरोबिन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि एरोबिन की सहायता से एक बार में एक बिन में 10 किलो गीले कूड़े को बायोकल्चर की सहायता से 40 दिनों के अंदर कंपोस्ट खाद में बदला जा सकेगा।
3: महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण और निस्तारण करने में सहायता मिलेगी। श्री वाही ने कहा कि इस प्रकार की छोटी छोटी पहलों को अपनाकर हम कूड़े को लैंडफिल साइट पर जाने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान दिल्ली नगर निगम के स्वच्छता बेड़े में अनेक आधुनिक मशीनों को भी शामिल किया गया है जिससे पूरे

0: शहर में स्वच्छता के स्तर को और बेहतर बनाने में मदद मिल सके। महापौर ने दिल्ली वासियों से भी अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने में दिल्ली नगर निगम का सहयोग करें तथा राजधानी को स्वच्छ और हरित बनाने के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। महापौर ने स्वास्थ्य जाँच शिविर का भी शुभारम्भ किया। आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज रोहिणी सेक्टर 10 के जेएमडी टेंट में लक्ष्मी तरु फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रक्त की एक एक बूंद किसी के जीवन में नई उम्मीद बनकर पहुंचती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। भारत की स्वतंत्रता के 79 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी साइक्लोथॉन एक्सपीडिशन 2026 का भव्य फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मुक्केबाज तथा ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम विशेष रूप से मौजूद रहीं। साइक्लोथॉन को झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत की आजादी के 79 साल पूरे होने के जश्न के तहत इस साइक्लोथॉन में 79 एनसीसी कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। एनसीसी फिटनेस अनुशासन और समाज सेवा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ भी करवा रहे हैं।
2: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: श्री मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग केवल फिटनेस नहीं है बल्कि प्रदूषण का सॉल्यूशन भी है। इस अवसर पर ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नेवर गिव अप की बात ध्यान में रखनी चाहिए।
3: मुझे बहुत अच्छा लगा आज यूके में मुझे भी बुलाया गया है और ये साइक्लोथॉन 2026 दिल्ली में हुआ है। युवाओं लोग के लिए बहुत बहुत जरूरी है और मैं आ रही हूँ कि उन लोग सपोर्ट करने के लिए।
1: राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के प्रतीक तिरंगे के अभिकल्पक यानी डिजाइनर और महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी की जयंती पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी श्री वेंकैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज निर्माता पिंगले वेंकैया ने भारत की विविधता को एक राष्ट्र भाव में बांधा। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर मौसम सामान्य रहा, हालांकि राजधानी के कई क्षेत्रों में दोपहर में वर्षा हुई। आज का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि दिल्ली में कल हल्की बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन को मुआवजा देने की अधिसूचित की। उत्तरी रेलवे ने दिल्ली मंडल ने नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज। रात्रि के 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कवि गोष्ठी।
5: यह आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं डॉक्टर अलका मिश्रा, श्री प्रदीप मिश्रा और डॉक्टर ज्योति उपाध्याय। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं डॉक्टर अलका मिश्रा।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं सरस्वती वंदना से। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति उपाध्याय हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप सरस्वती वंदना करके इस कार्यक्रम का आगाज करें।
1: बहुत आभार आपका।
2: माँ चरणों में तू स्थान दे, माँ चरणों में तू स्थान दे, शब्दों का मुझको ज्ञान दे, आहत ना मेरे भाव करें, माँ लेखन को वरदान दे।
1: इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं शारदे के चरणों में अपनी वंदना प्रस्तुत करते हुए कहती हूँ।

0: बहुत सुंदर वंदना। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे साथ उपस्थित हैं बहुत उम्दा रचनाकार, श्रेष्ठ कवि, मंचों पर अक्सर छाए रहते हैं, आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी सर। तो मैं उनको एक मुक्तक के साथ बुलाती हूँ, सुनिएगा। कि नेमत खुदा की जो आपने दिल खूबसूरत सपाया है, नेमत खुदा की आपने दिल खूबसूरत सपाया है, तभी तो हर कोई आपको बेहतरीन नजर आया है। यूं ही बांटते और पाते रहिए जमाने भर की खुशियाँ, यूं ही बांटते और पाते रहिए जमाने भर की खुशियाँ। ये मांगा है खुदा से मैंने और दुआओं में सर झुकाया है, ये मांगा है खुदा से मैंने और दुआओं में सर झुकाया है। बहुत स्वागत आपका सर।
1: क्या बात है, तहे दिल से शुक्रिया इतनी खूबसूरत कते के लिए। और अपनी बात शुरू करते हैं, हम अमूमन गीत और गजल लिखते हैं, तो आज की महफिल में एक कते से शुरू करते हैं और फिर एक

0: मुश्किल होता है। मुस्तकबिल में राह बनाना मुश्किल होता है और माजी के अक्स छुपाना मुश्किल होता है। दिल को तो समझा लेते हैं किसी बहाने से, दिल को तो समझा लेते हैं किसी बहाने से, लेकिन आंखों को समझाना मुश्किल होता है। लेकिन आंखों को समझाना मुश्किल होता है। तो देखिए एक गजल रखते हैं आपके सामने, गौर फरमाइए मसले से कि कारवां के साथ में रह कर के भी तन्हा मिला, कारवां के साथ में रह कर के भी तन्हा मिला, पर आदमी तन्हा मिला। और शेर देखें कि दिल में हसरत दोस्ती करने की लेकर चांद से, दिल में हसरत दोस्ती करने की लेकर चांद से, बाम पर कल शब सितारों को कोई तन्हा मिला, बाम पर कल शब सितारों को कोई तन्हा मिला। अरे एक और शेर देखें कि खामशी लब पर निगाहों में लिए संजीदगी, खामशी लब पर निगाहों में लिए संजीदगी, एक मुसाफिर रास्ते पर बाखुशी तन्हा मिला, एक मुसाफिर रास्ते पर बाखुशी तन्हा मिला। और तबसरा देखिए मौजूदा माहौल के ऊपर कि सिर्फ दिल रखने की या मतलब की बातें कीजिए, सिर्फ दिल रखने की या मतलब की बातें कीजिए, दोस्तों अक्सर मोहब्बत का वली तन्हा मिला, दोस्तों अक्सर मोहब्बत का वली तन्हा मिला। और जिसने रिश्तों को निभाया और वफा की बेसबब, जिसने रिश्तों को निभाया और वफा की बेसबब, वो अमूमन दहर में ताजिंदगी तन्हा मिला, वो अमूमन दहर में ताजिंदगी तन्हा मिला। और मक्ता देखें कि था वहम उसको मोहब्बत है खुदा की बंदगी, था वहम उसको मोहब्बत है खुदा की बंदगी, बज्म यारा में हमें कल अजनबी तन्हा मिला, बज्म यारा में हमें कल अजनबी तन्हा मिला।
1: बहुत ही उम्दा गजल।
0: हमने कहा था गीत और गजल लिखते हैं तो गजलों के अंदाज में ही गीतिकाएं लिखते हैं। द्विपदीय बंद एक गीतिका देखें आपके सामने रखते हैं, अलग अंदाज अलग तरीका। अगर मगर और काश हूं मैं, जिंदगी का यही तरीका है, हम कभी भी पक्का नहीं कर पाते, अमूमन ऐसा होता है। अगर

और जीवन के झंझावातों में, जीवन के झंझावातों में उलझा हूं अनकाश हूं मैं, उलझा हूं अनकाश हूं मैं, अपनी स्वयं तलाश हूं मैं। और एक अंदाज देखिए कि मन का तेरे था गुलाब कल, मन का तेरे था गुलाब कल, अब जल रहा पलाश हूं मैं, अब जल रहा पलाश हूं मैं। और पहले सदृश नहीं है कुछ भी, पहले सदृश नहीं है कुछ भी, कब अपने संकाश हूं मैं, अपने जैसा, पहले जैसा नहीं हूं पर फिर भी आज अपने जैसा हूं, अपने ही संकाश हूं मैं, आसक्ति के बंधन में था, आसक्ति

0: मैं अब दुर्गम कैलाश हूं मैं, अपनी स्वयं तलाश हूं मैं। और अंतिम बंद के प्रेम मोह अजनबी भस्म सब, प्रेम मोह अजनबी भस्म, अब एक सतत अवकाश हूं मैं, एक सतत अवकाश हूं मैं, अगर मगर और काश हूं मैं, अगर
1: वाह,
0: मगर और काश हूं मैं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा गजल। और आपने गीतिका सुनाई, बहुत ही सुंदर शब्दों का संयोजन और सुंदर अशार, आनंद आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं अब बुलाती हूँ डॉक्टर ज्योति को, और एक मुक्तक इन्हें सौंपती हूँ। सुनिएगा कि छेड़ जाते हैं दिल का तार कुछ नगमे सुहाने, छेड़ जाते हैं दिल का तार कुछ नगमे सुहाने, कि पाए हैं किसी ने नेह के कोई खजाने, नहीं चाहत बहुत की जो मिला वो है अनोखा, चलो इन प्यारे रिश्तों को कहीं दिल में सजा लें, चलो
0: वाह,
1: इन प्यारे रिश्तों को कहीं दिल में सजा लें।
0: बहुत
1: और ऐसा ही
0: अच्छा।
1: मेरा रिश्ता ज्योति जी से है, आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपनी कुछ रचनाओं से
2: बहुत
1: मुझे
2: आभार आपका
1: पढ़ें।
2: दीदी। देखिए दीदी ने बोला नेह के बहुत सारे खजाने होते हैं, तो सच में नेह के हमारे नैनों में बहुत खजाने होते हैं, आशाएं होती हैं, उत्साह होता है, विश्वास होता है, प्रेम होता है, और कहीं ना कहीं ऐसे भाव होते हैं जो आंखें कहीं ना कहीं कह जाती हैं। प्रेम लिखती हूँ, प्रेम गाती हूँ, प्रेम पढ़ती हूँ और प्रेम ही सुनाती हूँ, तो अपना काव्य पाठ में प्रेम से ही प्रारंभ करना चाहूंगी। प्रेम के
0: बढ़िया,
2: भावों
0: स्वागत।
2: को कुछ माइयों के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि प्रेम रहता तो सदैव दिल में है, परंतु वो दिखता हमारी आंखों में है। तो क्या कहती हूँ सुनिएगा।

सरल प्रवाहित सर जैसा था। जीवन में जो परिवर्तन आए वक्त के साथ, सरल प्रवाहित सर जैसा था अब दुर्गम।

देखिए, जब प्रेम की बात होती है तो प्रेम को परिभाषित तो करना नामुमकिन है, क्योंकि प्रेम ऐसा भाव है जो अपरिभाषित होता है। परंतु फिर भी एक पुस्तक के माध्यम से प्रेम क्या है, अपने लेखन के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ।

जी हाँ, प्यार ना हार है ना जीत है, क्योंकि प्यार एक ईश्वरीय मार्ग है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रेम का अर्थ किसी को पा लेना नहीं, किसी में खो जाना होता है। तो अपने प्रभु श्री श्याम के चरणों में अपने भावों को समर्पित करती हुई ये राधिका क्या कहती है, सुनिएगा।

जैसे कि मैं प्रारंभ से ही प्रेम की बात कर रही हूँ, तो प्रेम जो कि सृष्टि का आधार है, निराकार है और जिसका सभी पर पूर्ण रूप से अधिकार है। जब प्रेम की बात आती है तो मैं प्रेम संबंधों की बात करती हूँ। प्रेम संबंधों में हर प्रकार के संबंध सम्मिलित होते हैं, जिसमें कि माता पिता का उनके बच्चों से, भाई बहनों का आपस में प्रेम, दोस्तों का, पति पत्नी का, माँ बेटे का। तो ऐसा ही ये गीत आप सभी से जुड़ने जा रही हूँ, जिसमें एक बेटी जब विदा होती है तो अपने बाबुल के घर से लेकर अपने पिया के घर तक उसके मन के जो भाव होते हैं, किस प्रकार से उन भावों को अपने बाबुल से, अपने पिया से साझा करने का प्रयास कर रही है, या फिर अपने मन में उन भावों को किस प्रकार से महसूस करने का प्रयास कर रही है, इस गीत के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ।

0: बहुत आभार आपका।
1: बहुत ही सुंदर गीत और माया से आपने हम सबको जोड़ा, आनंद आ गया।
2: और अब मंच की संचालिका महोदय को आवाहन करते हैं सुश्री अलका श्री मिश्रा कि वो भी अपने गीतों से, अपने बंदों से मंच को अवगत कराएं। और बेहतर बातें करो मोहब्बत रहने दो, बेहतर बातें करो मोहब्बत रहने दो, सुनो जिंदगी को कुछ फुर्सत रहने दो, और जाने कितने लोग जरूरत

0: बंद है यहाँ, आपको सुनने के लिए बैठे हैं, खुद को थोड़ा उनकी बाबत रहने दो, संचालन के साथ कुछ सुनाइए, स्वागत है।
1: बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने काव्य पाठ का आगाज जो है एक दोहे से करूंगी, राम जी के चरणों में सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि नित्य सवेरे सुमिर ले रघुनंदन का नाम, नित्य सवेरे सुमिर ले रघुनंदन का नाम, मुक्ति मिले दुख दर्द से बन जाए सब काम, मुक्ति मिले दुख दर्द से बन जाए सब काम। और एक मुक्तक संपूर्ण नारियों को सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि अगर

0: और कई बार ऐसा होता है कि लोग बात कहते हैं कि आप बड़े हो रहे हैं, ये मत कीजिए, ये बंदिशें, तो उस पर चार लाइनें और एक अपनी नज्म कहती हूँ, सुनिएगा। कि उम्र का वह दौर भी गुजर गया, उम्र का वह दौर भी गुजर गया, धड़कते दिल का शोर भी किधर गया, बेपता मंजिलों की तलाश में, बेपता मंजिलों की तलाश में, धूप का वो टुकड़ा अजी किधर गया, धूप का वो
1: बढ़िया
0: टुकड़ा अजी किधर गया।
1: बढ़िया।
0: और एक नज्म कहती हूँ, सुनिएगा। कि उम्र की बात ना कीजिए हमसे, उम्र की बात ना कीजिए हमसे, अभी तो हमने सच में जीना शुरू किया है, अभी तो हमने सच में जीना शुरू किया है, अभी तो ख्वाहिशें नया जन्म ले रही हैं, अभी तो ख्वाहिशें नया जन्म ले रही हैं, अभी तो मुस्कानों को नया आकार दिया है, अभी तो मुस्कानों को नया आकार दिया है, अभी तो सुबहों में उगाया है नया सूरज, अभी तो सुबहों में उगाया है नया सूरज, रातों को चांदनी से अभी गुलजार किया है, रातों को चांदनी से अभी गुलजार किया है, अभी तो मेरी नज्में आकार गढ़ रही हैं, अभी तो मेरी नज्में आकार गढ़ रही हैं, इन्हें अभी लफ्जों से बस तराश दिया है, इन्हें अभी लफ्जों से बस तराश दिया है, और अभी तो पंख उगाए हैं हसरतों ने मेरी, अभी तो नए पंख उगाए हैं हसरतों ने मेरी, और लो यहीं से आसमां को हमने नाप लिया है, उम्र की बात ना कीजिए हमसे, अभी तो हमने सच में जीना शुरू किया है। और एक गजल कहती हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है, सुनिएगा।

0: खाली आ जाए,
1: अकबर।
0: क्यों हर एक रिश्ते को एक नाम ही दिया जाए, क्यों ना कुछ रिश्तों को बेनाम ही जिया जाए।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे डॉक्टर अलका मिश्रा, श्री प्रदीप मिश्रा और डॉक्टर ज्योति उपाध्याय। गोष्ठी का संचालन कर रही थी डॉक्टर अलका मिश्रा। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कवि गोष्ठी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़।
3: मैं हूँ आपका जलदाता, ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूँ, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। रात्रि के 8:30 हुए हैं। समय हो गया है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अमित कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म मोहब्बतें से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर।

मोहब्बतें फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में। और अब सुनते हैं अगला गीत, विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज में।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। एसबीआई रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की।

0: ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार, केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में आप राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
0: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
0: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
2: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
3: पेडागॉजी इज देयर एंटायर वे ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन।
0: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितम्बर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
5: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन

0: करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरल में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
2: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केनी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi river recedes. Rainfall intensity decreases in Keralam, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight.

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आइए सुनते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में गैर फिल्मी गजलें। हाजिर इस प्रोग्राम की पहली पेशकश मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की गजल।

0: स्पोकेन ने काउंटी में तेजी से फैल रही आग की वजह से तकरीबन 4000 इमारतों को खतरा लाहिक हो गया है। गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा की रियासत हुकूमत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त युवा के लिए पूरी रियासत में अगले 100 हफ्ते के दौरान बहुत से प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी। संखाली में आज रविन्द्र भवन में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए डॉ सावंत ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के नजरिए को हकीकत में बदलने के लिए मनुष्यात से पाक नौजवान जरूरी हैं। जनाब सावंत ने नौजवानों के नशीले मादों से दूर रहने, सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने और मुल्क की तामीर में सरगर्म ताउन करने की अपील की। 2026 के दौलत मुश्तरक खेल मुकाबले आज रात ग्लासगो में मशहूर हाइड्रो एरेना में शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। यह तकरीब भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे शुरू होगी, जिसमें 11 दिन तक जारी खेलकूद की महारत, दोस्ती और सकाफती तनवु का जश्न मनाया जाएगा। इस मौके पर अहमदाबाद को दौलत मुश्तरक खेलों का परचम और मेजबानी की छड़ी हॉस्ट बैटन सौंपी जाएगी, जो 2030 के खेल मुकाबलों की भारत की मेजबानी की अलामत होगी। इन खेल मुकाबलों में भारत की शानदार कारकर्दगी रही, मुक्केबाज में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली, जोड़ों में भी तारीखी कामयाबी रही। भारत ने सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे हासिल किए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नशीले मादों की रोकथाम की 100 हफ्ते की मुल्कवाइड मुहिम का आगाज किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशीले मादों से पाक नौजवान जरूरी हैं। एसबीआई की तहकीक में रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान भारत की जीडीपी की शरह तरक्की से मुतालिक अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने जेल में गैर फितरी तरीके से मौत हो जाने पर कैदियों के कुंभों के लिए 7.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है, क्योंकि महानदी दरिया के पानी की सतह में कमी आ गई है। केरलम में बारिश की शिद्दत कम हुई है, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। इंडोनेशिया में मडुरा जजीरे से कुछ दूर एक छोटे जहाज में आग लग जाने के हादसे में 5 अफराद हलाक और 41 लापता हो गए। और 2026 के दौलत मुश्तरक खेल मुकाबलों के इख्तितामी तकरीब आज रात मुनक्किद होगी, जिसमें 2030 के इस सदी के खेल मुकाबलों के लिए मेजबानी के तौर पर भारत को बाकायदा मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम हेल्थ टिप्स। आइए हेल्थ टिप्स के इस प्रोग्राम में जानते हैं गॉल ब्लैडर और किडनी में होने वाली पथरी के हवाले से कुछ जरूरी बातें।
2: आदाब, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी, वजूहात, बचाव और इलाज। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आर पी अरोड़ा। आप सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं और चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल जो है गॉल स्टोन और किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में तो आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि पानी की वजह से कभी कभी स्टोन बनने लगते हैं, स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन पिता जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, उसमें कैसे बन जाता है जबकि उसमें कोई चीज जा ही नहीं सकती?
3: गॉल ब्लैडर में बाइल की कंसंट्रेशन से बनते हैं, जिनकी बॉडी में टेंडेंसी रहती है कि बाइल उनका ज्यादा गाढ़ा होता है। लीवर से जो जूसेस जाते हैं वो पहले गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होते हैं, वहां से जब हम कोई तली हुई चीज या हैवी खाना खाते हैं उस समय बाइल रिलीज होता है गॉल ब्लैडर की सिकुड़ने से। और गॉल ब्लैडर की वॉल में इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू जा सकता है और इन्फेक्टेड गॉल ब्लैडर में स्टोन्स जल्दी बनते हैं, और जिसका बाइल ज्यादा थिक है, गाढ़ा है, उनमें स्टोन्स ज्यादा बनते हैं। और कुछ डाइट के फैक्टर्स जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन, बिलिरुबिन स्टोन्स बनाते हैं, वो भी हो सकते हैं।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर पहले हम चूंकि सिर्फ पित्त के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर किडनी और प्रोस्टेट के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर ये कहा जाता है कि साहब अगर इसमें पथरी हो जाए तो निकलती नहीं है, इसको सर्जरी करानी पड़ती है, ऑपरेट कराना पड़ता है, क्या इफेक्ट है?
3: गॉल ब्लैडर स्टोन में सर्जरी, गॉल ब्लैडर और स्टोन दोनों का रिमूवल एक साथ ही है। कुछ केसेस में गॉल ब्लैडर से स्टोन स्लिप करके अपने आप भी निकल जाते हैं, लेकिन ऐसे स्टोन्स जो स्लिप करके निकलते हैं वो जॉन्डिस, फीवर और प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, जिनसे बाद में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है।

0: यानी गॉलब्लैडर में छोटे स्टोन्स हैं, बड़े स्टोन्स हैं, किसी तरह के भी स्टोन्स हैं, तो हमें गॉलब्लैडर सर्जरी करा लेना ही अच्छा है। और स्पेसिफिकली सो जिनके सिर में सिम्टम्स ज्यादा हैं उनको तो जरूर कराना है। एसिम्टोमेटिक को फॉलोअप पे रहना चाहिए, जिन केसेस में जरूरत पड़ती रहे उनको ऑपरेट होते रहना चाहिए।
1: सिम्टम क्या क्या होते हैं डॉक्टर इसके?
0: अपच सबसे कॉमन सिम्टम है,
1: इनडाइजेशन,
0: जिसको हम अपच कह सकते हैं, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं मैदा खराब है, पाचन शक्ति कम है
1: जी।
0: और तला हुआ और हैवी खाना जब भी खाएंगे तो तकलीफ होगी, उल्टी हो सकती है, डकार आ सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, और जब गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होगा तो फीवर भी हो सकता है और पेन बहुत सीवियर भी होता है। इसमें स्टोन्स कई बार गॉल ब्लैडर की डक्ट में फंस जाते हैं तो पीलिया भी होता है।
1: अब आते हैं किडनी की, जानी कुदरत हर इंसान के अंदर दो कुर्ते लिए रखे हैं और उनका काम ही फिल्टर करना है, लेकिन जब वो खुद फिल्टर कर रहे हैं तो उनकी जाली में ऐसी क्या चीज फंस जाती है कि वो पत्थर बन जाती है और फिर बड़ी तकलीफ होती है। अब
0: बेसिकली स्टोन बनने का जो कारण है वो क्रिस्टल्स हैं, ऑक्सीडेट क्रिस्टल्स, फास्फेट क्रिस्टल्स, कैल्शियम क्रिस्टल्स, तो
1: उनका पानी में होते हैं
0: सिस्टीन, ये पानी में होते हैं और कंसंट्रेट हो जाते हैं जब यूरिन में, और एक जगह एक पार्टिकल डिपॉजिट होता है उसको, उसके ऊपर लेयर्स बनती चली जाती हैं, तो वो लेयर्स ही बनने के बाद स्टोन का रूप ले लेती हैं। बहुत बार स्टोन सिम्टोमेटिक होते हैं, बहुत बार दर्द भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, अंदर बनते चले जाते हैं। तो आमतौर पे इसमें एडवाइस किया जाता है कि पानी खूब पिए, जिस उसका पर्पज यही होता है कि क्रिस्टल्स डिपॉजिट ही ना हो पाए, डिपॉजिट होंगे तभी बड़े होंगे, तभी स्टोन बनेंगे।
1: तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के एक किडनी में स्टोन हो तो दूसरे में भी हो जाए, या दोनों में साथ
0: आपस में इस बात की वजह से कि एक राइट में स्टोन है तो लेफ्ट में हो जाएगा, ऐसा नहीं है कोई।
1: अच्छा, अब आते हैं प्रोस्टेट की जानी, कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर के जो केसेज है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है?
0: प्रोस्टेट कैंसर के केसेज बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं इसको हम और तरीके से देखें तो जल्दी समझेंगे
1: जी।
0: पहले से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है और प्रोस्टेट कैंसर में साइंटिफिकली एस्टेब्लिश हो चुका है विद द एडवांसिंग एज इसकी इंसिडेंस बढ़ती है, प्रेवलेंस बढ़ती है। जितनी एज हमारी ज्यादा होती जाएगी उतने चांसेस होते जाएंगे प्रोस्टेट कैंसर मिलने के, और प्रोस्टेट कैंसर बहुत केसेस में एसिम्टोमेटिक विदाउट एनी हार्म पूरी लाइफ पड़ा रहता है और खत्म हो जाती है अपने आप बात। प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण बहुत बार प्रोस्टेट के जो बेनाइन डिजीज है वैसे ही होते हैं, वही यूरिनरी प्रॉब्लम्स, रात को उठना, फ्रीक्वेंसी, ऑब्स्ट्रक्शन, रिटेंशन, वो सब चीजें होती है। बहुत केसेस में प्रोस्टेट कैंसर देर से प्रेजेंट करता है, तब तक वो बोन में जा चुका होता है, और कमर में दर्द और नीचे का पैरालिसिस या जोड़ों में कहीं दर्द जहां ज्वाइंट में पहुंच गया तो उससे भी प्रेजेंट करता है।
1: जरूरत इस बात की है कि हम अवेयरनेस लाए, हेल्थ अवेयरनेस, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे से समझे। डॉक्टर साहब ने कुछ बहुत अहम बातें बताई हैं, उनको जहन में रखें, पानी बराबर पीते रहें, खाना हेल्दी खाएं, जो भी कुछ खा रहे हैं साफ सुथरा खाएं, ताकि आपका जहन, आपका जिस्म जो है सेहतमंद रहे।
2: सामने अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स के तहत कुछ जरूरी बातें, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।
3: आप सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्रा कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today being Sunday, we'll also be taking calls on your mutual fund related queries, but do remember that we do not address fund specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444-331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. My name is Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Aaj Ravivar hai, aur har Ravivar ki tarah, aaj bhi hum mutual fund se jude aapke sare sawalon ke jawab is karyakram mein denge. Koshish karenge ki de paaye. Sawal poochne ke liye aap shrotao hame in numbers par call kar sakte hain. Ye numbers hain 2331-4444, 2331-0481 aur 2371-7106. इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: जी धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ निशित कुमार।
0: Current portfolio investors turn net buyers after 4 months, infused more than 20,000 crore rupees into Indian equities in July. In bullion market, gold and silver declined last week, and domestic investors to focus on RBI monetary policy decision, corporate earnings results, and geopolitical developments for cues for next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक 4 महीने बाद कुल खरीदार बनकर उभरे। जुलाई में भारतीय इक्विटी बाजार में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। सराफा बाजार में पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई और भारतीय निवेशक अगले सप्ताह

0: views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. It further advises all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और उपयोग करते हैं आज कार्यक्रम में लिए गए पहले खबर के लिए लगातार चार महीनों की बिकवाली के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अब भारतीय इक्विटी में कुल खरीदार बनकर उभरे हैं। डिपॉजिटरी के ताजा आंकड़ों के अनुसार एफपीआईज ने जुलाई में घरेलू शेयर बाजार में 20,200 करोड़ रुपए का निवेश किया। कुल निवेश में से 6,732 करोड़ रुपए शेयर्स एक्सचेंजों पर खरीदारी के जरिए आए जबकि 13,468 करोड़ रुपए का निवेश प्राइमरी मार्केट के जरिए किया गया। वैश्विक सेमीकंडक्टर व्यापार में गिरावट के कारण एफपीआईज ने अपने निवेश का कुछ हिस्सा उभरते बाजारों की ओर लगाया। इस खरीदारी में घरेलू मैक्रो इकोनॉमिक सूचकांकों में सुधार और मजबूत तिमाही के नतीजों का भी योगदान रहा है। जुलाई में आए इस बदलाव के बावजूद एफपीआईज ने इस कैलेंडर वर्ष में अब तक भारतीय इक्विटी से 2,54,072 करोड़ रुपए निकाले हैं। इस बीच सरकार की कर नीति में बदलाव के बाद भारत के ऋण बाजार में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बरकरार है। जुलाई माह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने फुल्ली एक्सेसिबल रूट के जरिए ऋण प्रतिभूति बाजार में 3,033 करोड़ रुपए और जनरल रूट के जरिए 29,212 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, पाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान सहित 7 ओपेक प्लस सदस्यों ने बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य तेल बाजार की स्थिरता को बनाए रखना और भागीदार देशों को पिछले अतिरिक्त उत्पादन की भरपाई में तेजी लाने की अनुमति देना है। ओपेक प्लस सदस्यों ने सहयोग घोषणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की जिसके अनुपालन की निगरानी संयुक्त मंत्री स्तरीय निगरानी समिति द्वारा की जाएगी। और श्रोताओं, दिल्ली से हमारे साथ इस बीच यशपाल जुड़ रहे हैं। यशपाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: गुड इवनिंग मार्केट अंकल टीम एंड गुड इवनिंग जी अंकल। माय क्वेश्चन इज दैट आई वांट टू इन्वेस्ट सम लॉन्ग सम मनी फॉर अराउंड 2 इयर्स। ऑलरेडी आई एम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी टू एसआईपी इन लॉन्ग सम। माय पोर्टफोलियो इज वेल डाइवर्सिफाइड। The options with me are Bank of the Arbitrage Fund, Liquid Fund and Corporate Bonds. So please

0: or even in anyone's control to sort of promise something that we cannot really promise. Of course, markets will go up or down is basically a hindsight call. And even though, you know, more popular, let's say Warren Buffett kind of investors wouldn't say that. Coming back to the point that you just raised, Mr. Trump having said that peace might just return, and the idea is that his statements have for long been kind of, you know, stirring the market, which actually sort of shows the fact that we cannot depend on the short-term aspects that market continues to offer us. Also, we cannot really control what happens in the market. So the uncertainty bit is slightly out of the way for even a retail investor as well as for experts, like I said. What remains in your control are the factors pertaining to your portfolio, like I was saying, you know, your asset allocation. Make sure to have some kind of debt allocation in your portfolio, because when the markets turn red, your anxiety increases. If you have, let's say, 20% of debt in your portfolio, that will help provide some kind of cushion to your equity and maybe just help you psychologically navigate through those ups and downs. So yeah, asset allocation, rebalancing periodically, continuing with your SIPs, not stopping your SIPs, that becomes your, you know, go-to goal amid all of these chaos.
1: जी बिल्कुल श्रेया. स्नेहा, इसी बीच विनोद जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से. विनोद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: हेलो
1: जी,
2: मार्केट मंडल टीम को नमस्कार.
1: नमस्कार.
2: मैं 2017 से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट, मैंने सुना ना रिबैलेंसिंग करना चाहिए, ये सब एक्सपर्ट बोलते हैं, मुझे आता नहीं रिबैलेंसिंग कैसे करते हैं, और अगर इसको ना करें तो लॉन्ग टर्म में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्लीज बताएं. थैंक यू.
0: बिल्कुल विनोद जी, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है. रीबैलेंसिंग जो सब बोलते रहते हैं कि करना जरूरी होता है, उसका इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से होता है कि साइकोलॉजिकली ये कैसे होता है कि जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, लेट्स से आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स या फिर आप ऑल इक्विटी फंड्स लेते हैं.
1: इसलिए हम क्यों ना यहां से शुरू करें कि रीबैलेंसिंग करना होता क्या है.
0: बिल्कुल, ये एक्चुअली यही मैं शुरुआत करी थी. रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि अपने पोर्टफोलियो पे एक नजर डालना.
1: हाँ.
0: और अगर वो नजर डाल के आपको डर लग रहा है,
1: हाँ,
0: इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है. आपको अपना एक जो एंजाइटी लेवल्स है उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है. वहां पे एक चीज काम आती है जिसे हम, जैसे मैं अभी बता रही थी, एसेट एलोकेशन.
1: जी,
0: कुछ डेट और कुछ इक्विटी सोच के आपने इन्वेस्ट करा होता है, बट मार्केट के उतार चढ़ाव कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो जो एक एलोकेशन होती है जो आपने अपनी सूझबूझ से करी थी वो बढ़ जाती है. तो मान लीजिए आपने ये सोचा था कि इक्विटी आप 70 रखेंगे, आप डेट 30 रखेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा डर जाते हैं जब मार्केट का उतार चढ़ाव एकदम वायलेंट हो जाता है. तो ऐसे टाइम में अब मान लीजिए मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आपने 70 इक्विटी सोचा था, आपका इक्विटी 80 हो गया है और डेट कम हो गया है. तो मार्केट जब वो जूम कर रही है, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया है, बट एक डर बीच में रहता है कि अब यहां से गिर गई तो आपके पास तो उतना डेट है ही नहीं जो आपको एक तरीके का कुशन प्रोवाइड कर पाए. तो जब मार्केट, अगर ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो 100% गिर रहा है, वो डेट की वजह से आप 100 ना गिर के 80% गिरेंगे, तो एक मन में बैलेंस मेंटेन हो जाता है. इसे ही हम रीबैलेंसिंग कहते हैं. अब होता क्या है कि अगर आप नजर नहीं डालेंगे पोर्टफोलियो पे, तो आपको पता नहीं चलेगा, एकदम से मार्केट गिर जाएगी, आप सोचेंगे मेरा इतना ज्यादा कैसे गिर गया,
1: नुकसान कैसे हो गया,
0: नुकसान कैसे हो गया. तो उन सब थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए रीबैलेंसिंग करना इम्पोर्टेंट होता है. अगर मान लीजिए कोई वैसे ही इस तरीके से किया जाता है कि फिर आपने जितना सोचा है कि इक्विटी होना चाहिए, आप उतना बेचकर आप उसको कम कर दीजिए और उसको डेट में मूव कर दीजिए, काफी लोगों के लिए करना मुश्किल हो जाता है. तो मान लेते हैं आप अपने माइंड में एक नंबर सोच लेते हैं कि 10% से जब ऊपर नीचे होगा आप तभी ये एक्शन लेंगे. तो ये एक्शन मेरे हिसाब से, जैसे विनोद जी पूछ रहे थे, इसका लॉन्ग टर्म में फायदा नुकसान क्या होता है, तो ये बेसिकली अपना एक इंटरनल साइकोलॉजिकल बिहेवियर मैनेज करने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्निक रहती है. जैसे SIP भी इसीलिए ही हम कहते हैं करने के लिए कि मार्केट के उतार चढ़ाव से आपका एवरेज आउट हो जाता है जो एक प्राइस होता है और उसका जो मूवमेंट होता है. तो अगर विनोद जी आप ये खरीद बेच में नहीं कर पाते हैं, एक साल में भी आपसे नहीं हो पाता है, तो मान लीजिए आपका 10% का आपने नंबर सोचा है कि 10% से इक्विटी बढ़ेगा या कम होगा तभी आप एक्शन लेंगे, तो एक्शन आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप अपनी बेचने के बजाय आप अपने जो इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर रहे थे उनको

0: for next 5 to 10 years. Thank you.
1: Sure. So, Shankarji, taking up your first question, you mentioned what should govern the debt allocation. To my mind, the only way to govern that is what you mentioned, basis your risk appetite. So, while you said the requirement can also govern that, however, the requirement is something that gets built into the allocation requirement only. You start with one particular corpus in mind or one particular surplus that you can invest, and you break that down into the allocation according to your requirement and according to your risk appetite. Because debt allocation sort of acts like, you know, a non-existent bird in a particular nest, because you only respect it when market turns gloomy. Until then, you feel, why am I not in 100% into equity when the, you know, when it is green and the profits are, let's say your neighbor is saying, I am 100% into equity, I am 100% into X, Y, Z equity mutual fund, which is getting me this kind of profit. It is, and when the situation turns, like we have been discussing in this episode, that is where the debt allocation comes into picture. So the risk appetite bit is definitely one point which should govern the percentage of debt allocation you want in your portfolio. Make sure to include, take a holistic view of debt in your portfolio. Let's say you are a salaried employee, you must be investing something in EPF. Let's say you also, India continuously invests in PPF. We really like PPF as an investment. So all of these are also debt allocation in your portfolio. These should be so a holistic take on what you hold and what you want should, basis the risk appetite, should govern the debt allocation. And definitely, according to me, it should be a percentage, since it just helps you accommodate everything and piece together from a portfolio tracking standpoint as well. On your second question, how to look at a mid-cap fund. So we can actually start by saying how to look at an equity mutual fund. There are 2-3 aspects that matters the most. One is what kind of time horizon you're wanting to invest. When we say mid-cap or equity as such as an asset class, we are looking at a 5+ kind of an horizon, so that we are able to navigate all the down times and the upside, of course. So that is one. If you're sorted on that, then it comes down to let's say selecting a few funds which charge you less on expense ratio and which have had a history of giving good returns. So when I say good returns, it should not be looked at the trailing returns. One should look at in an up cycle, in a down cycle, how the rolling returns have been, how have they beaten the benchmark, and that I guess should suffice into what an equity mutual fund should be selected based on. For a mid-cap fund specifically, you can maybe look at something, a fund which has a relatively lower asset under management, because that is what helps a mid-cap mutual fund manager get hands on mid-cap. Because if it has become too big, then it becomes tough for it to let's say invest in more mid-caps, and it eventually starts investing some bit in large caps, which can actually dilute the mid-cap exposure.
2: जयपुर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ रहे हैं. जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका भी नाम है, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: थैंक यू. अब मैडम, अगर जैसे हमको इंडेक्स फंड चूज करना पड़े एकदम फ्रेश एकदम, मतलब तो निफ्टी 50 ठीक रहेगा अभी या निफ्टी नेक्स्ट 50 ठीक रहेगा, क्योंकि मार्केट डाउन हुआ, करेक्शन वेक्शन काफी हुआ है लंबे समय के लिए, तो हमें कौन सा चूज करना है?
1: जितेंद्र जी, निफ्टी 50 के जो फंड्स हो जाते हैं वो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया की, तो वो लार्ज कैप, एक तरीके से लार्ज कैप एलोकेशन ही आपको देते हैं. अब निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आपको लार्ज कैप एलोकेशन ही देते हैं, बट जो 100 बड़ी कंपनी है उनमें जो नीचे वाले 50 होते हैं उनका, तो उनमें जो एक लिक्विडिटी का एस्पेक्ट रहता है वो निफ्टी 50 से थोड़ा सा कम रहता है, ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं रहता है. तो दोनों का ही एक्सपोजर आप रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसे चुनाव करने वाली बात नहीं है. वो आप इस बेसिस पे कर सकते हैं, आप टॉप 50 का एक्सपोजर चाहते हैं कि आप बॉटम 50 का चाहते हैं. बॉटम 50 में आप ऐसा देख सकते हैं कि वो आपको, मतलब जो सेकेंड हाफ होता है वो शायद से आपको एक कुछ टाइम में बेटर रिटर्न पोटेंशियल दे सकते हैं, क्योंकि टॉप 50 ऑलरेडी काफी बढ़ चुके हैं. बट अगर आप प्लेन वेनिला इंडेक्स फंड देखना चाह रहे हैं, तो आपको निफ्टी 50 से वो काम आसानी से हो जाएगा, बस जो ज्यादा खर्चा काम लेता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से बेंचमार्क को ट्रैक करता हूँ।
2: सराफा बाजार में पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रहा। यूएस ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी, डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व के सख्त रुख के कारण बाजार में सुस्ती आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना फ्यूचर्स कारोबार में सप्ताह के दौरान 1% से अधिक लुढ़क कर 1,41,511 रूपये प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं सितम्बर अनुबंध वाली चांदी फ्यूचर्स कारोबार में 2% से अधिक की गिरावट के साथ 2,17,198 रूपये प्रति किलोग्राम पर समाप्त हुई। कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना फ्यूचर्स कारोबार में सप्ताह के दौरान 0.5% गिरकर $4,000 से अधिक प्रति ट्राई औंस पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी फ्यूचर्स कारोबार में सप्ताह के दौरान लगभग 2% गिरकर $58 प्रति ट्राई औंस पर बंद हुई। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। ये वृद्धि पहले के अनुमानों से अधिक है। कल जारी SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अनुमानों से बेहतर है।
4: Domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including the Reserve Bank of India's monetary policy decision and a fresh round of quarterly earnings reports. Market sentiment will also be driven by geopolitical developments, crude oil prices, foreign institutional investors' FII flows, commodity prices and currency movements. Market participants will closely monitor the key economic indicators, including purchasing managers' index PMI readings, foreign exchange reserve figures and monthly automobile sales data. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week. 3 main board IPOs are scheduled to make their stock market debut, while 1 new main board issue will open for subscription. Globally, investors should closely monitor geopolitical developments surrounding the West Asian conflict, along with the US employment data and a fresh batch of corporate earnings. Inflation data from South Korea will also remain on the radar. Quick comment on that, Sneha. How do you see the markets playing out next week?
1: I always believe that the market outlook is should always remain sort of cautiously positive, since I am a very optimistic person and I would like investors to also believe in that.
2: स्नेहा कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और निश्चित के सवालों के जवाब देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू स्नेहा। बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स आफ्टर 4 मंथ्स, इन्फ्यूज मोर देन 20,000 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज इन जुलाई। इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस डिक्लाइन लास्ट वीक एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स टू फोकस ऑन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिजल्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स for Q's next week. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
6: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
7: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामील इरशाद। सामिन की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। आप अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेज सकते हैं उर्दू सर्विस esd@gmail.com के जरिए। आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम की पहली पेशकश, आप सबकी पसंद, आप सबकी नजर।

मकसद मोहाली चंडीगढ़ से सतीश टीवी मल्होत्रा रितिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं अभिजीत गोहानकर राही, सरिता गोहानकर और अर्जुन गोहानकर महाराष्ट्र से, और सुनना चाहते हैं पांडुचंदन उषा चंदन प्रतीक शरद चंदन प्रथमेश चंदन के साथ कालेगांव से, कृषि निवास नागपुर से हर्षल राम भड़े, वैष्णवी राम भड़े, जाह्नवी राम भड़े सुनना चाहते हैं और बंगाली पंजा से प्रकाश राम भड़े, भारती राम भड़े सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया और शिवा चौरसिया फरुखाबाद साहबगंज उत्तर प्रदेश से।

सुनिए, अभी आप समाप्त कर रहे थे धमाएदार मजरू सुल्तानपुरी के लफ्जों से सजा हुआ ये नगमा अनामिका फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके मौसीकार थे राहुल देव बर्मन। आगे सुनते हैं इस प्रोग्राम की अगली पेशकश।

रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, जिसको सुना चाहे कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुकुद्दीन बंठाल, शबीर बनट्टी और आसिफ यकबाल ने, दिलावर खान हसीनाबानो, लीजा नायाब रघुवीर नगर से सुनना चाहते हैं, संजय डाबेराव सिकर डाबेराव कोस्तुर डाबेराव अकोट से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, मुलाना वाड़िंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शुभता मानकर और श्लोक कुमार सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं, नंदकिशोर कटे अंजलि कारवा और बाबा साहब कारवा महाराष्ट्र से, अनूप अर्जुनपुर नगर बाजार से सुनना चाहते हैं, प्रियंका कुमारी साहू, शिवानी कुमारी साहू, मुन्नी देवी साहू और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, शमा परवीन, बाबू सुफियान, अर्शी सुल्तान गिरडी झारखंड से, मरला महाराष्ट्र से विजय सोरलकर, अदमान सोरलकर और कुमार ओम सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, मिलवाकी एस से वर्षा चावड़ा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे, मिलन सरकटे, वजूद चौलका से सुनना चाहते हैं, पवन गौड़ से आशीष गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़ कासगंज से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, किशन सबकार, विजय सबकार, राज सबकार, शास्त्री नगर भी शहर से सुनना चाहते हैं और उस्मान फौजी शेख, सैरवान शेख, करिश्मा शेख लातू से सुनना चाहते हैं, बाबू ठेकेदार, शेख शागिर, शेख वजीर मोटारा बाजार से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, सुनना चाहते हैं मुंडी चौक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और बेगम सोनम शेख, मारिया शेख, मोहम्मद अरीब शेख मुंबई से सुनना चाहते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे बाजी फिल्म से नगमा गीत अदत की आवाज में। शब के 11 बज चुके हैं, प्रोग्राम तामिल इरशाद अभी जारी है। आइए इस दौरान सुनते हैं खबरें बर्रे सगीर से।
1: ये आकाशवाणी है, बर्रे सगीर की खबरों के साथ मैं फैसल हबीब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नशीले मादों की रोकथाम की 100 हफ्ते की मुल्कगीर मुहिम का आगाज किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशीले मादों से पाक नौजवान जरूरी हैं। एसबीआई की तहकीक में रवां माली साल की पहली सहमाही के दौरान भारत की जीडीपी की शरह तरक्की से मुतालिक अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने जेल में गैर फितरी तरीके से मौत हो जाने पर कैदियों के कुंभों के लिए 7.5 लाख रूपये मुआवजे का ऐलान किया है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है क्योंकि महानदी दरिया के पानी की सतह में कमी आ गई है। केरलम में बारिश की शिद्दत कम हुई है जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। इंडोनेशिया में मडूरा जजीरे से कुछ दूर एक छोटे जहाज में आग लग जाने के हादसे में 5 अफराद हलाक और 41 लापता हो गए। 2026 के दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों की खितामी तकरीब आज रात मुनाकिद होगी जिसमें 2030 के इस सदी के खेल मुकाबलों के मेजबानी के तौर पर भारत को बाकायदा मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि चूंकि भारत एक विकसित भारत बनने की जानिब गामजन है, लिहाजा मुल्क के नौजवानों को जिस्मानी तौर पर चुस्त दुरुस्त, दिमागी तौर पर मजबूत और पुर एतमाद होना चाहिए। आज नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम का वर्चुअल वसीले से आगाज करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि नौजवानों को हमेशा नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इससे नशीले मादों की रोकथाम से मुतालिक 100 हफ्ते की मुल्कगीर जन भागीदारी मुहिम का आगाज हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि नशे की लत से लोग अपने मकासद से भटक जाते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि नशे की लत न सिर्फ कुंभों को तबाह

अभी आप सुन रहे थे नगमा निगार साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ ये नगमा प्यासा फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश आकाश देव फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसको सुना जा रहा है रायपुर से नीलम मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और मिट्टू कुमार ने। रज्जाक मोहम्मद, इमरान खान, इरफान खान राजस्थान से सुनना चाहते हैं और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। आशा चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग पंचकुला से। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुता चुपाकुर झारखंड से सुनना चाहते हैं और मुकेश कासलीकर, राजेश सोनी, बाबा वडूडे महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं अजीज मतीन और शेख फारूक तेलंगाना से, और कशबा बिलरान से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम जैनब सुनना चाहते हैं।

अभी आप सुन रहे थे ये नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में आकाश दीप फिल्म से। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश तलत महमूद की आवाज में, जिसको सुनना चाहे सहारनपुर से रुगजी दिकेस्त्रो जोन दिकेस्त्रो ने, और सुनना चाहते हैं बोधराज खोलवाल, कृतिका रानी, उत्तम नगर नई दिल्ली से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं अनिल अंसारी, आसमान अंसारी डुमराव से, और सुनने चाहते हैं राज अंसारी, फातिमा अंसारी बक्सर से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं डॉक्टर रियाज अंसारी, डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी दिल्ली से, और सुनना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस खत्री, साजिद खत्री, अयुब खत्री खंडवा से, और विजय महाविया, कविता महाविया सुनना चाहते हैं यशु बाबू के साथ खंडवा से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं नरेश मल्होत्रा नेटू कलमतरा, नानक चंद मल्होत्रा पानीपत से, और मदली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी अस्तुपुरा जिला मऊ से सुनना चाहते हैं, प्रमोद कुमार डूडी, राजकुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी हिसार से सुनना चाहते हैं, गुलनाज बेगम हाशमी, सैयद आलम हाशमी और मोहम्मद अलाम हाशमी राजस्थान से सुनना चाहते हैं, और सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, सरोज चौधरी कलकत्ता सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और नूर आयशा अहमद बागबान, इकबाल अहमद बागबान बलिया से सुनना चाहते हैं, जयराजपुर राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, प्रयागराज भट्ट सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और मुजीब शेख, जैना अनाबिया शेख, मोहम्मद अमीरा शेख मुंबई से सुनना चाहते हैं, शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुजुबाबा बुल्डाना से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा जलालाबाद वेस्ट से सुनना चाहते हैं, और दीपेश शर्वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ से।

अभी वो आप सुन रहे थे ये नवाब बाबुल फिल्म से तलत महमूद की आवाज में। हाजिर इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश ये कव्वाली पाल की फिल्म से, जिसको सुना चाह है प्रमोद बगाड़े, वरदा बगाड़े और प्रतीक बगाड़े ने नांदूरा से, और सुनना चाहते हैं इंदौर से अनिल कावचाने, मोतीलाल यादव, बसंत बेगू, बशकमल भाटापारा सुनना चाहते हैं, प्रियंका कुमारी शर्मा, वंदना कुमारी शर्मा नेपाल से सुनने की ख्वाहिशमंद हैं, सुनना चाहते हैं दारा पंडित, संजय शर्मा हरियाणा से, और मईन अंसारी, शकील अहमद अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी बरेली से सुनना चाहते हैं, और सैमन आवाज नांदेड़ से, नारायण गायकवाड़, दयान गायकवाड़ सुनने की ख्वाहिशमंद हैं, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप उत्तर प्रदेश से सुनना चाहते हैं, ताज अहमद अंसारी, गुलाम सागर राय, मिराज लक्सर से सुनने की ख्वाहिशमंद हैं, और गोल कांगड़ा, आशिका बोथ, तवन्ना कांगड़ा, चौबीसी से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर सुनना चाहते हैं कंडलवाड़ी से, और जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह हरियाणा से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं राशिद अंसारी, नसीर अंसारी कुरावली से, विनोद वंडालकर, मीना वंडालकर, विदा वंडालकर छत्तीसगढ़ से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम तमिल इरशाद, आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जन भागीदारी से नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी में उप महानिदेशक आनंद प्रकाश तिवारी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशीत कुमार।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद प्रकाश तिवारी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। तिवारी सर, आपका स्वागत है।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: जैसा कि हमने सुना प्रधानमंत्री जी को, आज के एक नशा मुक्त अभियान उन्होंने शुरू किया है और ये एक बहुत बड़ा संदेश आज के युवाओं को, खास करके जेन जी को उन्होंने दिया है। कैसे देखते हैं इसे आप?
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नशा मुक्त भारत का संकल्प लगातार दिया जाता रहा है, आज भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है और हम सभी लोग इस लक्ष्य के लिए समर्पित हैं। वस्तुतः भारत के लिए सबसे बड़ा कार्य और कार्यक्रम यदि हम कहें तो नशा मुक्त भारत बनाने के संकल्प को सजोना, जीना और पूरा करना है। तो वजह यह है कि अगर हमारा भारत नशा मुक्त नहीं होगा तो स्वस्थ नहीं होगा, और अगर स्वस्थ नहीं होगा तो ऐसे

0: विकसित भारत को भी लेकर हम सभी भारतवासी क्या करेंगे, तो पूरे भारतवासी इस संकल्प को जिए और हम लोग चूंकि सरकार के कार्य को कर रहे हैं तो हम सभी लोग इसे पूरी तन्मयता से जन भागीदारी के साथ लगातार करें। मेरा तो यही विचार है और मेरा यही विश्वास है और हम लोग इसी के लिए कार्य भी कर रहे हैं।
1: तिवारी जी, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है और प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं के बारे में बताया है, खास करके अलग अलग हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी एक है कि 100 हफ्ते तक हर रविवार को सुबह में एक शॉर्ट टर्म अवेयरनेस ड्राइव जो पहले चलता था उससे हटकर ये एक हर हफ्ते एक सतत रूप से एक अभियान चलाया गया है, जहां पर युवाओं का आह्वान किया गया है कि वो कुछ न कुछ एक्टिविटी ऐसी करें जिससे कि उनका जो नशा के प्रति अगर किसी भी प्रकार का अगर उनका झुकाव हो रहा है तो उससे वो हट सके। इससे पहले कि आप बताएं इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स।
0: ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया एक बड़ा आह्वान है और मुझे लगता है कि जो हमारी रचना धर्मिता है, जो हमारी सृजनशीलता है, जो हमारी कलात्मक प्रतिभाएं हैं, वो एक सकारात्मकता समाज को, मन को, व्यक्ति को, सबको जो है प्रदान करती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने व्यक्ति की सकारात्मक प्रतिभा को बाहर ला करके और एक सकारात्मक विचार और सकारात्मक समाज बनाने के लिए आह्वान किया है। जो भी शिक्षण संस्थान हैं, जो हमारे युवक हैं, हम सभी लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, हम सभी लोग जरूर इस आह्वान को जीवंत करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम इस अभियान को ज्यादा बड़ा बना सके, इसे जीवंत कर सके, इसे इसके वास्तविक मूर्त रूप तक ले जा सके, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा है।
1: जी तारी जी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम इस आह्वान में देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने एक मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन की बात की है जो कि इस अभियान को और भी ज्यादा बल और गति देगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, सिविल सोसाइटी है, इंडस्ट्री बॉडीज हैं और 125 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन वो साथ में आएंगे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे देखते हैं इसे?
0: माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अलोंग विद कंप्लीट सोसाइटी का सपना सामने रखा है और अभी नशा मुक्त भारत के लिए आपने देखा होगा कि 26 जून को माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट भी जो है रिलीज किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो लक्ष्य और उद्देश्य है नशा मुक्त भारत, उसे प्राप्त करने के लिए जितने भी संबंधित विभाग हैं, हमारा समाज, शिक्षण संस्थान, युवा, अलग अलग मंत्रालय और स्वयंसेवी संस्थाएं, साथ में जो सांस्कृतिक सामाजिक संगठन हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हैं और ऐसे सभी लोग जिनका समाज में किसी न किसी रूप में, क्षेत्र में, किसी कार्य में प्रभाव है, उन सभी को जोड़ करके एक सामूहिक भागीदारी के साथ हम लोगों ने एक संकल्प पत्र, एक रोड मैप लक्ष्यों के साथ जारी किया जिसमें बड़े स्पष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको लेकर के, सबको जोड़ करके चलने के लिए आह्वान किया और अगर हम देखें तो लगातार पिछले कुछ समय में तमाम ऐसी आवश्यकताएं सामने दृष्टिगोचर हुई हैं जिसको दृष्टिगत करते हुए समाज में हमारा यह संकल्प और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम सभी लोगों के लिए एक उद्देश्य बड़ा समीचीन है और इसे न केवल हम स्वस्थ युवा के रूप में देखें, स्वस्थ भारत के रूप में देखें, इसके बड़े दीर्घकालिक जो है आयाम है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी है, सांस्कृतिक रूप से राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, इसमें सभी लोगों को जोड़कर सामूहिक भागीदारी का भी भाव है और इसमें एक संकल्पित सक्षम और स्वस्थ युवा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य निहित है। तो तो मुझे लगता है कि ये सभी लोग मिलकर करेंगे और ऑलरेडी अगर हम देखें तो हम लोगों ने इस पर कार्य प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप प्रारंभ भी किया है और आगे हम इसे और उनके सपनों और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने और पूछने का प्रयास करेंगे।
1: हमें सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इस मौके पर क्या कहा।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में आप राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: तिवारी जी, हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने युवाओं का बड़ा आह्वान किया है कि कैसे ड्रग्स से, नशीले पदार्थों से अलग रहना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस दिशा में क्या काम कर रहा है?
0: हम लोग राष्ट्र में सभी को जोड़ करके नशा मुक्त भारत को बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। और अभी जैसे कि हमने आपको बोला कि नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 अभी हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी के हाथों से उसका विमोचन देखा है और उसमें जो लक्ष्य है सभी लोगों को जोड़ना है, सभी राज्यों को जोड़ना है, समाज के हर अंग को जोड़ना है। हम सभी विद्यालय को लेकर, सभी समूहों को लेकर, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, शिक्षा मंत्रालय के साथ, अगर आप देखेंगे तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड अन्य सभी मंत्रालयों के साथ करके एक नोडल एजेंसी के रूप में राज्यों के साथ हम सहभागिता और उनके द्वारा एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ हम लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। एनसीबी एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है और एनसीबी के लक्ष्य स्पष्ट है कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करना है और हम गृह मंत्रालय की एजेंसी के रूप में राज्यों से कोऑर्डिनेट करते हुए, सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए हम लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमने 3 वर्ष में एक स्पष्ट योजना और रूपरेखा सामने रखी है और इस योजना को प्राप्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संदेश है उसके साथ हमारा जो काम करने का प्रयास है उसमें और गति आएगी।
1: जी तिवारी जी, प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, कल्चरल आर्ट्स, स्ट्रीट प्ले जिसे नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं, ये सारी चीजों को उन्होंने समावेशित किया अपने भाषण में ताकि युवाओं को नशे से अलग रखा जा सके। हम यहाँ ये समझना चाहेंगे तिवारी जी कि जो युवा इस नशे के लत में पड़ चुके हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए और इसके अलावा क्या किया जा सकता है और आपकी एजेंसी क्या कर रही है इस दिशा में?
0: सरकार ने एक नए दृष्टिकोण से कार्य किया है और विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच आप इसे कह सकते हैं। कानून में बदलाव पर भी कार्य किया जा रहा है, साथ में पूरे भारत में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना अगर देखेंगे तो उसका जो स्टैंडर्ड है उसको बेहतर से बेहतर बनाना, जो लोग नशे के आदि हो चुके हैं वो जाएं, इसके लिए एक सशक्त अभियान को आगे बढ़ाना, राज्यों की और केंद्र की सामूहिक भागीदारी से इसे पूरा करना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस दोनों इस पर कार्य कर रहे हैं। हम यह भी तय कर रहे हैं कि वहां पर जो लोग जाएं उनका सुधार हो और हमारा कानून का ढांचा कुछ इस प्रकार का बने जिससे कि उस सुधार को गति दी जा सके। तो न केवल आधारभूत संरचना में बदलाव बल्कि उसके नियामक प्रक्रियाओं में बदलाव, समाज की धारणा में बदलाव और शिक्षण संस्था और सभी जगहों पर मांग में कमी के लिए लगातार प्रचार प्रसार अभियान के द्वारा आमूलचूल परिवर्तन के लिए सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और इस दिशा में नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट के चारों जो स्तंभ हैं, इन चारों स्तंभों में सभी चीजों को संपूर्ण रूप से परिभाषित किया गया है और इस पर हम स्पष्ट लक्ष्य के साथ एक सुस्पष्ट समय सीमा के साथ कार्य कर रहे हैं जिससे यह एक निश्चित समय सीमा में हम लक्ष्यों को प्राप्त कर पूरा कर सकें।
1: अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर का अगर कोई बच्चा नशे का शिकार बन गया है तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में उसके घर वाले इस चीज को छुपाते हैं और ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि परिवार वाले या उसके आसपास के जो लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, वो आगे बढ़कर इस चीज के लिए नहीं आते हैं। तो इसका प्रचार प्रसार रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात करें या और भी कुछ ऐसे जो कार्यक्रम जो चला रहे हैं सरकार, इसके बारे में प्रचार प्रसार के लिए और हम क्या कर सकते हैं?
0: इसके प्रचार प्रसार के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि लगातार हमारे प्रचार प्रसार के माध्यमों में इस विषय की चर्चा करना और इस विषय से संबंधित विज्ञापन जारी करवाया जाना। दूसरा, शैक्षणिक संस्थाओं में इस पर लगातार चर्चा किया जाना। तीसरा, गांव पंचायत के स्तर पर और नगर पंचायत के स्तर पर भी जो हमारी संस्थाएं हैं उनको जोड़ना। पुरस्कार नीति को भी सामने ले आना, जैसे शिक्षा मित्र और जैसे इस प्रकार के तमाम जो है स्वास्थ्य मित्र हैं, इसी तरह से जो हमारे आशा कर्मी हैं और जो हमारे ग्राम पंचायत के स्तर पर हमारे कर्मी हैं उनको जोड़ना इस अभियान से। इसके अलावा परिवारों को जोड़ना, एक आंदोलन के रूप में एनएसएस, एनसीसी, आशा कर्मी और इस प्रकार के सभी लोगों को जोड़ते हुए एक सुस्पष्ट योजना के तहत इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी के मन में कोई विभ्रम की स्थिति ना रहे और लोग आए। नशा मुक्ति मित्र, हमारे माई भारत स्वयं सेवक, आशा कर्मी, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यानी कि पूरी तरह से ग्रास रूट लेवल तक जा करके लोगों को सजग करना, परिवारों को उसके लिए तैयार करना और मन के दुर्भाव को हटा करके हम उन्हें अपने स्वास्थ्य केंद्रों तक ले आए यह सुनिश्चित करना, यह हमने लक्ष्य रखा है। लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हम अपने जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके आधारभूत संरचना में उन्नयन का भी कार्य किया गया है और वो निरंतर जारी है, जिससे वहां पर उनको उचित और उन्नत सुविधा और चिकित्सा दी जा सके। मेरा एक पूरा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें न केवल सुधार है बल्कि सुधार के बाद मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, परिवर्तन, खेल और एक पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ डिजाइन किया हुआ एक ऐसा हमारा इकोसिस्टम है, जिसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति, बच्चा, युवा जो अगर नशे का शिकार होता है तो वह 1930 पर कॉल करे, हमारे जो सामाजिक न्याय मंत्रालय की साइट है उस पर अप्रोच करे, एनसीबी की मानस हेल्पलाइन पर अप्रोच करे और वहां से वह तुरंत सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है।
1: जी जी तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे जन भागीदारी से नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी में उप महानिदेशक आनंद प्रकाश तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशीत कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।
4: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए सुनते हैं यूसुफ अली खान कव्वाल और साथियों की आवाज में कव्वालियां।

अपना बर्बाद जाए बसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना बदे मस्ते गुबारे

Oh, my God.

करने का अमल सेल्फ इम्यूनेशन कल शुरू हो गया। शहरी अब इसके लिए बने पोर्टल se.census.gov.in पर कुंभों और जाति मालूमात ऑनलाइन तरीके से दर्ज कर सकते हैं। खुद ही जाति मालूमात का इंतराज करने के अमल सेल्फ एनुमरेशन का मकसद लोगों को उनके घरों से ही मालूमात फराहम करने का मौका देते हुए मर्दमशुमारी को ज्यादा शमूलियाती आसान और शहरियों पर मरकूज बनाना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती आज किए जाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मुंजालपुर और मध्य प्रदेश में दातिया में पिछले महीने की 30 तारीख को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। इंतखाबी कमीशन ने तीनों रियासतों में खुश असलूबी से गिनती कराए जाने के लिए बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए हैं। इंडोनेशिया में कल मादुरा जजीरे के करीब समंदर में एक छोटे जहाज में आग लगने से 5 अफराद हलाक हो गए और 41 अभी तक लापता हैं। इस जहाज में 271 मुसाफिर और अमले के लोग सवार थे। तलाश और बचाव के महकमे ने बताया कि इन मुसाफिरों में से अब तक 225 को बचाया जा चुका है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव की कार्रवाई अब भी जारी है। अमेरिका में वॉशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने रियासत गैर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने तेज हवाओं की वजह से तेजी से फैलने वाली जंगल की आग की वजह से आग जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जंगल की आग की वजह से 3000 एकड़ का रकबा जलकर खाक हो गया और हजारों लोगों को इनखला पर मजबूर होना पड़ा। मौसमियात से मुतालिक कौमी सर्विस ने आग और शदीद मौसमी हालात के पस मंजर में वॉशिंगटन के वस्ती और मशरकी हिस्से के लिए वॉशिंगटन की अपनी नौइयत की पहली वार्निंग रेड फ्लैग जारी की। सोपाकाने काउंटी में तेजी से फैल रही आग की वजह से तकरीबन 4000 इमारतों को खतरा लायक हो गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। चीन में भारत के सफीर विक्रम दुराईस्वामी ने कहा है कि अगले हफ्ते से भारतीय वीजे के लिए दरख्वास्त देने वाले चीन के शहरियों के दस्तावेजी अमल को मजीद आसान बनाया जाएगा ताकि उनके लिए भारत का सफर आसान हो सके। बीजिंग में भारतीय सिफारतखाने के पहले ओपन हाउस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सिफारतखाना सकाफती सरगर्मियों में तौसी, काम से मुतालिक मसाइल का सामना करने वाले भारतीय शहरियों के लिए कानून मदद करने और कौंसल खाने की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए ओपन हाउस प्रोग्राम का बाकायदगी से इनकाद करेगा। भारत मुखालिफ ऑनलाइन मवाद से मुतालिक खदशात जाहिर किए जाने के जवाब में विक्रम दुराईस्वामी ने कहा कि चीन की हुकूमत को भी इससे मुतालिक तश्वीश है और इससे निमटने के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि सिफारतखाना हकायक पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम के जरिए गलत मालूमात का मौसर जवाब दे रहा है। रूस में एक इटालियन रेस्टोरेंट में घरेलू साख्त का धमाका खेज हरबा फटने से 3 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए। ये धमाका गुज़िश्ता रात वस्ती मॉस्को के कुद्रिंस्किया स्क्वायर में हुआ। रूस की कौमी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी के मुताबिक धमाका खेज मादा ले जाने वाली एक खातून को सिक्योरिटी गार्ड ने उस वक्त रोका जब उसके रेस्तरां में दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान धमाका हो गया जिससे खातून, गार्ड और वहां आने वाला एक शख्स हलाक हो गया। स्टालिन दौर की बुलंदोबाला इमारत के अतराफ के इलाके को, जहां ये रेस्तरां वाके है, कुछ वक्त के लिए सील कर दिया गया था। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने अक्वामी मुत्तहिदा और बैनुल अक्वामी बिरादरी से जोर देकर कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के जेर कब्जे इलाके में इंसानी हकूक की अब तक होती हुई सूरत हाल के बारे में फौरी इकदाम करें। UKPNP के चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी की क्यादत में एक वफ्द ने न्यूयॉर्क में अक्वामी मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में कई मीटिंग्स का इनेकाद किया। वफ्द ने पाकिस्तान से कहा कि वह अपने यहां बैनुल अक्वामी इंसानी हकूक की जिम्मेदारियां पूरी करे और शहरियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बंद करे। वफ्द ने उन लोगों की रिहाई का भी मुतालबा किया।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। साहिल, अभी आप समाप्त कर रहे थे पंडित राम नारायण का सारंगी पर बजाया हुआ राग प्रिया कल्याण। इसी के साथ इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप हमारी नशा समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 1031 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए और DD फ्री डिश पर। पेश है प्रोग्राम आखिर शब। लीजिए इस प्रोग्राम के तहत सुनिए सदाबहार फिल्मी नगमे।

भारत, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती आज किए जाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मुंजालपुर और मध्य प्रदेश में दातिया में पिछले महीने की 30 तारीख को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। इंतखाबी कमीशन ने तीनों रियासतों में खुश असलूबी से गिनती कराए जाने के लिए बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए हैं। भारत में कोयले की पैदावार की शरह तरक्की पिछले साल जुलाई के मुकाबले इस साल 7.51% रही। कोयले की वजारत ने बताया कि मुल्क में इस साल जुलाई के दौरान कोयले की मजमूई पैदावार आरजी आदादशुमार के मुताबिक 6,57,50,000 टन तक पहुंच गई। वजारत ने यह भी बताया कि पिछले महीने जो कोयला भेजा गया है उससे जुलाई में 17.34% की साल ब साल शरह तरक्की का अंदाजा होता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पौत्र सावन महीने के पहले पीर के मौके पर आज भगवान महाकालेश्वर की श्रवण यात्रा निकाली जाएगी। चंद्रा माओलेश्वर के रूप में भगवान महाकाल की रिवायती पालकी निकाली जाएगी, जिससे अकीदतमंदों को उनके दर्शन का मौका मिलेगा। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। अकीदतमंदों की सलामती और सहूलत को यकीनी बनाने के लिए मेडिकल टीमें और 24 घंटे एम्बुलेंस खिदमत तैनात की गई है। उम्मीद है कि भारतीय मईशत में रवा माली साल की पहली सहमाही में तकरीबन 7% का इजाफा होगा, जो पहले के अंदाजे से ज्यादा है। यह अंदाजा मजबूत तर इकतसादी अंधियों, बेहतर सनअती सरगर्मियों और बरामदात में बहाली से होता है। एफबीआई की एक रिसर्च के मुताबिक माली पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट से पहले जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि शरह तरक्की से मुतालिक इस तखमीने से भारतीय रिजर्व बैंक के इससे पहले के तखमीनों में बेहतरी जाहिर होती है, जो जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की वजह से कम सतह पर थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंडोनेशिया में कल मादुरा जजीरे के करीब समंदर में एक छोटे जहाज में आग लगने से 5 अफराद हलाक हो गए और 41 अभी तक लापता हैं। इस जहाज में 271 मुसाफिर और अमले के लोग सवार थे। तलाश और बचाव के महकमे ने बताया कि उन मुसाफिरों में से अब तक 225 को बचाया जा चुका है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव की कार्रवाई अब भी जारी है। अमेरिका में वाशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने रियासत गीर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने तेज हवाओं की वजह से तेजी से फैलने वाली जंगल की आग की वजह से आग जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जंगल की आग की वजह से 3,000 एकड़ का रकबा जलकर खाक हो गया और हजारों लोगों को इनखला पर मजबूर होना पड़ा। मौसमियात से मुतालिक कौमी सर्विसेज ने आग और शदीद मौसमी हालात के पस मंजर में वाशिंगटन के वस्ती और मशरक हिस्से के लिए वाशिंगटन की अपनी यूनाइट की पहली वार्निंग रेड फ्लैग जारी की है। चीन में भारत के सफीर विक्रम दोराईस्वामी ने कहा है कि अगले हफ्ते से भारतीय वीजे के लिए दरखास्त देने वाले चीन के शहरियों के दस्तावेजी अमल को मजीद आसान बनाया जाएगा ताकि उनके लिए भारत का सफर आसान हो सके। बीजिंग में भारतीय सफारतखाने के पहले ओपन हाउस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सफारतखाना सकाफती सरगर्मियों में तौसी, काम से मुतालिक मसाइल का सामना करने वाले भारतीय शहरियों के लिए कानूनी मदद फराहम करने और कौंसल खाने की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए ओपन हाउस प्रोग्राम का बाकायदगी से इनकार करेगा। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने अकवामी मुत्तहिदा और बैन अकवामी बिरादरी से जोर देकर कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के जेर कब्जा इलाके में इंसानी हकूक की अबतर होती हुई सूरतहाल के बारे में फौरी इकदाम करें। UKPNP के चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी की क्यादत में एक वफद ने न्यूयॉर्क में अकवामी मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में कई मीटिंग्स का इनेकाद किया। वफद ने पाकिस्तान से कहा कि वो अपने यहां बैन अकवामी इंसानी हकूक की जिम्मेदारियां पूरी और शहरियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बंद करे। वक्त ने उन लोगों की रिहाई का भी मुतालबा किया जिन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। 2026 के दौलत मुश्तरका के मुकाबले आज रात ग्लासगो में मशहूर हाइड्रो एरिना में शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। ये तकरीब भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे शुरू होगी, जिसमें 11 दिन तक जारी खेल कूद की महारत, दोस्ती और सकाफती तनवो का जश्न मनाया जाएगा। इस मौके पर अहमदाबाद को दौलत मुश्तरका खेलों का परचम और मेजबानी की छड़ी होस्ट पैटर्न सौंपी जाएगी, जो 2030 के खेल मुकाबलों की भारत की मेजबानी की अलामत होगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर।

0: नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में आप राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जलस्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतदान आज सवेरे 8 बजे शुरू होगा। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 14 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन की तुलना बांग्लादेश में 2024 के उस आंदोलन से की, जिसने शेख हसीना की आवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्होंने कहा कि ढाका में हुए छात्र आंदोलन ने हमें धोखा दिया। कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में प्रख्यात लेखिका ने कहा कि जंतर मंतर की घटनाओं पर उन्होंने नजर नहीं रखी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के एक छोटे से वीडियो क्लिप ने उन्हें बांग्लादेश में जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन की याद दिला दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: adoption and sustainability. The meeting aims to further strengthen cooperation in the areas of dissemination of statistics, BRICS joint statistical publication, innovation in statistical systems, and the exchange of knowledge and best practices. The 2026 Commonwealth Games will come to a close with a spectacular closing ceremony at the iconic Hydro Arena in Glasgow tonight. This ceremony will begin at 1:30 a.m. Indian Standard Time and will celebrate 11 days of sporting excellence, friendship and cultural diversity. On the occasion, Ahmedabad will receive the Commonwealth Games flag and the host baton in a ceremonial handover during the closing ceremony marking India as the host for the centenary 2030 edition. India's impressive campaign at the Games, highlighted by record-breaking performance, propelled the country to fourth place. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR Live News 24/7 चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है 1:10 और 10 सेकंड। ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम। जी हाँ, गीत सुनहरे। गीत सुनहरे के अंतर्गत आज शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार खूबसूरत गीत के साथ। तो आइए सुनते हैं ये प्यारी सी रचना, और ये गीत है बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत गीत। तो आइए सुनते हैं बहार के दिन। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत है, क्योंकि बहार का मौसम है तो डेफिनेटली कोई ना कोई गीत तो ऐसा होता ही है जो दिल में छा जाता है, रूह में बस जाती है। बहार के दिन फिल्म हमराही से शानदार फिल्म है, और विनोटा बोस की आवाज में सुंदर रचना है ये रचना। फिल्म हमराही 1945 प्रदर्शित फिल्म रही है, और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को R.C. बोरल ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली शानदार रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। जी हाँ दोस्तों, और बढ़ते हैं एक और शानदार रचना के साथ। जन्म जन्म के फेरे फिल्म और टाइटल सॉन्ग है जन्म जन्म के फेरे ही। मोहम्मद रफी साहब और कोरस की आवाज में सुंदर बेहतरीन रचना है ये जन्म जन्म के फेरे फिल्म। 1957 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत मुक्ति फिल्म्स आर्ट्स के हैं और संगीत से सजाया है एस एन त्रिपाठी ने। तो आइए सुनते हैं एक सुंदर खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचना अभी आप सुन रहे थे जन्म जन्म के फेरे फिल्म से टाइटल सॉन्ग। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत रचना की ओर। ये रचना है बहुत ही खूबसूरत, ये बरखा बहार, जी हाँ टाइटल सॉन्ग है और मयूर पंख फिल्म का नाम है। लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज में और साथ दे रही हैं आशा भोसले। 1954 प्रदर्शित फिल्म है और गीत आशा भोसले के और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना।

बहुत ही सुंदर अभी गीत सुन रहे थे, बहुत ही प्यारा गीत। और एक और गीत आ रहा है दोस्तों, सावन में बरखा सताए, बीबी और मकान से सुंदर रचना, आवाज हेमंत कुमार की है। आइए सुनते हैं ये सुंदर खूबसूरत गीत।

बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, तेरे बगैर। बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही शानदार अनमोल रचना। और ये गीत आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की अंतिम प्रस्तुति आ रही है बहुत ही सुंदर गीत के साथ, फिल्म नूर महल से। टाइटल सॉन्ग है मेरे महबूब। सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज में शानदार रचना। नूर महल फिल्म सन 1965 रिलीज फिल्म रही है। गीत रतन प्रोडक्शन के हैं और संगीत से सजाया है जानी बाबू कव्वाल ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे के अंतिम शानदार रचना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं की ओर संकेत देती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 14 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में कल बड़ी संख्या में लोगों ने धरना दिया और मुजफ्फराबाद की ओर शांति मार्च निकालने की तैयारी की। संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि सुरक्षा बल रुक रुक कर भारी गोलाबारी कर रहे हैं। कमेटी ने कहा कि ट्रेक में महिलाएं और बच्चे धरने में शामिल हैं और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि रावलकोट चौक पर लोग धरना दे रहे हैं और मुजफ्फराबाद की ओर शांतिपूर्ण मार्च कभी भी शुरू हो सकता है। एक्शन कमेटी ने बताया कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पिछले 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना के दमन कार्रवाई में 50 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi yesterday, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो मन से स्वस्थ हो आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो यही इस अभियान का उद्देश्य है
2: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event, including My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia, said the dream of a drug-free India can be realized only through active public participation and the leadership of the youth. He was addressing a program at Amrita Hospital in Faridabad after the national launch of the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. Dr. Mandavia described the 100-week campaign as a nationwide people's movement aimed at mobilizing the youth for nation building. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations supported by stronger economic indicators, improved industrial activity and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee report released on Saturday, the growth estimate marked an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainties. The Delhi government has notified a scheme to provide compensation to the next of kin or legal heirs of prisoners who die an unnatural death while in custody within the prisons of the National Capital Region. Under the scheme, compensation of up to 7.5 lakh rupees will be awarded, depending on the specific circumstances. Compensation of 5 lakh rupees has been fixed for cases involving negligence in the discharge of duties by prison officials or staff, negligence by medical or paramedical personnel, and cases of prisoner suicide. All arrangements are in place for the counting of votes for the by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat, and Madhya Pradesh today. Polling for the Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh were held on the 30th of last month. Counting of votes will begin at 8 a.m. In Madhya Pradesh, the first Shravan procession of Lord Mahakaleshwar will be taken out on Ujjain today, marking the first Monday of the holy Shravan month. Lord Mahakal in the Chandramaleshwar form will be taken out in a traditional palanquin procession, offering devotees an opportunity for darshan. A special puja will be performed at the Mahakaleshwar temple before the procession begins at 4 p.m. The two-day meetings of heads of national statistical officers, NSO or BRICS countries, will begin today in Lucknow, Uttar Pradesh. The meeting to be held under India's chairship is guided by the overarching theme of building for resilience, innovation, cooperation and sustainability.

0: Edition. India's impressive campaign at the Games, highlighted by a record-breaking performance in boxing, historic success in judo, milestone achievements in para sports, and multiple medals in athletics, propelled the country to a fourth place. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है 2:10 ये समय होता है कार्यक्रम गीत बहार का, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक। तो आज सबसे पहले एक सुंदर खूबसूरत गीत से शुरुआत कर रहे हैं और आइए सुनते हैं ये आज के कार्यक्रम गीत बहार की पहली खूबसूरत रचना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIRNI न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत बहार। गीत बहार की अंतिम खूबसूरत रचना आ रही है, तो आइए सुनते हैं गीत बहार कार्यक्रम की अंतिम खूबसूरत रचना।

जी साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। गीत बहार अब संपन्न हुआ और समय हुआ है 3 बजने को है। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में आप राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश के धार जिले का रूपखेड़ा गांव बागवानी विभाग के सहयोग और किसानों की मेहनत से आधुनिक कृषि का एक नया मॉडल बन गया है। फूलों की खेती के कारण यह गांव अब मध्य प्रदेश के मिनी हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। पहले यहां के किसान गेहूं, चना, मक्का और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसल पर निर्भर थे, पर अब संरक्षित कृषि से पॉली हाउसेज और शेड नेट हाउस में गुलाब, जरबेरा, लिली और अन्य फूलों के साथ ही उत्तम किस्मों की सब्जियां उगाते हैं। 11 दिनों की कड़ी खेल प्रतिस्पर्धा के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आज ग्लासगो में एक भव्य समारोह में समापन हो गया। समारोह में शताब्दी संस्करण की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2023 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। स्कॉटलैंड के अधिकारियों ने राष्ट्रमंडल खेल का ध्वज और कमान भारतीय प्रतिनिधियों, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संगठन के अध्यक्ष पीटी ऊषा और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी को सौंपी।

लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मेहदी हसन की आवाज में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुजल, आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि का ये समय है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं सीर गाजी एस गोविंद राजन का गायन। आपने प्रस्तुत किया है रागम कल्याणी जो आदिताल में निबद्ध है। संगीत दिया है श्री रंगम रंगा स्वामी पिल्लई ने। वल्लन प्रसाद दिया है थिरुपर काडुल एस वीरा राग रावण ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त 2026। और हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आओ योग करें। का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। 5:30 सुनिएगा स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शहनाई वादन। कलाकार होंगे अशोक कुमार चौरसिया। 6:10 का समय रहेगा वंदना का। 6:40 पर सुनिएगा चिंतन। आज आप सुनेंगे मैथिली शरण गुप्त के विचार। 6:45 का समय रहेगा रामचरित मानस से पाठ का। 7:10 पर सुनिएगा संगीतिका। आज आप सुनेंगे अलीश मोहन के गाए शिव भजन। 7:30 का समय रहेगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। 8:45 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन। कलाकार होंगे शुभम कुमार। आप प्रस्तुत करेंगे राग नटभैरव। 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम आवर गेस्ट। 9:30 का समय रहेगा मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम।

10:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां का, फिर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सबरस, और 11:30 बजे सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। आज आप सुनेंगे राजपाल सिंह का गायन। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। और लीजिए आप सुनिए समाचार।